0: वंदे मातरम।
1: मातरम सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम शस्य शाम।

आकाशवाणी जैसलमेर का ये गोल्डन सिटी चैनल है, एफएम बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज़ पर। आज शुक्रवार है, शक संवत 1948, आषाढ़ माह की 26वीं तिथि, तदनुसार दिनांक 17 जुलाई सन 2026। दोपहर के 12 बजने को है हमारी आज की ये प्रसारण सभा। अब आरंभ होती है।

108 MHz पर प्रस्तुत है कार्यक्रम फिल्म संगीत। फिल्म संगीत के कार्यक्रम में सबसे पहला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं कुमार शानू के स्वर में। फिल्म है 1942 अ लव स्टोरी।

0: वीडियो लाइक करने के पैसे मिलेंगे। सो इजी।
1: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। RBI कहता है,
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: कार्यक्रम की अगली कड़ी में हम आपको सुनवा रहे हैं गीत कुमार शानू और अनुराधा पौडवाल के स्वर में, फिल्म है आशिकी।

दिल है कि मानता नहीं। जी हाँ श्रोताओं, इस फिल्म का गीत अभी आपने सुना कुमार शानू और अनुराधा पौडवाल के स्वर में। आइए अब हम आपको सुनवाते हैं गीत फिल्म अग्नि साक्षी से। स्वर दिया है कविता कृष्णमूर्ति ने।

साधना सरगम और कुमार शानू की आवाजों में अभी आपने सुना ये गीत फिल्म थी दीवाना। इसी के साथ फिल्म संगीत का हमारा ये कार्यक्रम समाप्त होता है। हम आकाशवाणी जैसलमेर के गोल्डन सिटी चैनल से बोल रहे हैं। हमारे प्रसारण उपलब्ध है FM बैंड 101.8।

0: पढ़े तो हो जाए सब दंग।
1: CIET प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: नमस्कार श्रोताओं, मैं हूँ विमलेश।
1: और मैं हूँ अजीत। नमस्कार, आइए सुनते हैं आज का सुंदर विचार जिसे हमें भेजा है कस्बा बराड़ा जिला अंबाला हरियाणा से रवि कुमार राहुल, रंजीत कौर, जयप्रकाश राहुल, प्रियंका मन्नत, गुरकीरत राहुल और गुरशब्द सिंह राहुल जी ने। लिखते हैं,
2: जीवन में हमेशा ऐसी संगति चुननी चाहिए जो हमें ऊंचाइयों की ओर ले जाए और हमारी सोच को सकारात्मक बनाए। अच्छे लोग वही हैं जिनकी उपस्थिति से हमारे भीतर का श्रेष्ठ गुण प्रकट हो सकता है और जो हमें हर दिन और बेहतर इंसान बनने की प्रेरणा देते हैं।
1: बहुत बहुत धन्यवाद आपको इतने सुंदर विचार के लिए। और आइए अब सुनते हैं संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। तो सबसे पहला संदेश हमें मिला है भदोही उत्तर प्रदेश से राजेश कुमार विद्यार्थी और उनकी छोटी बहन कोमल का।
2: शंकर प्रसाद खूंटे जी लिखते हैं, मैं दृष्टिबाधित हूँ और बीएड स्पेशल एजुकेशन की पढ़ाई कर रहा हूँ। मुझे आपका उमंग कार्यक्रम बहुत पसंद है।
1: आपका बहुत बहुत धन्यवाद शंकर प्रसाद खूंटे जी। और अगला संदेश हमें मिला है गांव फरासी जिला हिसार से राजकुमार डूडी जी का।
2: गांव खिंदासा तहसील कोलायत जिला बीकानेर राजस्थान से कानाराम चौहान जी।
1: और शोभा राणे जी लिखते हैं ठाणे महाराष्ट्र से।
2: गांव ढोडरी घोटिया जिला मोहला मानपुर छत्तीसगढ़ से महेश कुमार निषाद, रम्मा रानी निषाद, निखिल कुमार निषाद और नैतिक कुमार निषाद।
1: आप सभी श्रोताओं को बहुत बहुत धन्यवाद सुंदर संदेशों के लिए। तो प्रस्तुत है श्रृंखला ये भी जानिए कि अगली कड़ी। श्रोताओं, एक बार फिर से हम प्रस्तुत हैं नई और रोचक जानकारियों के साथ।
2: श्रोताओं, हम चर्चा कर रहे हैं पुस्तकों के क्रमिक उद्भव और विकास की। आज हम चर्चा करेंगे मुद्रण से आधुनिक पुस्तकों तक की यात्रा पर। श्रोताओं, जिस आधुनिक पुस्तक को हम हाथ में लेकर आज पढ़ते हैं उसके पीछे लगभग 600 वर्षों का इतिहास है। हमने अब तक सुना कि मुद्रण कला के आने से पहले पुस्तकें हाथों से लिखी जाती थी। भारत में ताड़पत्र, भोजपत्र और बाद में कागज पर ग्रंथ और साहित्य लिखा जाता था।
1: जी हाँ श्रोताओं, यूरोप में चर्म पत्रों और कागज पर लिखा जाता था, लेकिन धीरे धीरे मानव सभ्यता मुद्रण की ओर बढ़ने लगी। चीन में लगभग 7वीं से 9वीं शताब्दी के बीच लकड़ी के ब्लॉक्स बनाए जा चुके थे जिन पर अक्षरों को उकेर कर और उसमें स्याही लगाकर पूरे पृष्ठ की छपाई की जाती थी।
2: ये तकनीक हस्तलिखित तकनीक से कहीं अधिक तेज और सुविधापूर्ण थी। 11वीं शताब्दी में चीन में धातुओं या लकड़ी से अलग अलग अक्षरों को बनाया जाने लगा और उनसे शब्द और वाक्य बनाए जाने लगे। ये आधुनिक मुद्रण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम था।
1: जी श्रोताओं, 15वीं शताब्दी को मुद्रण की दिशा में एक मील का पत्थर माना जाता है जब जर्मनी के ग्यूटेनबर्ग ने 1450 में छापने की मशीन का आविष्कार किया।
2: जी,
1: इसके द्वारा एक ही पुस्तक की सैकड़ों प्रतियां तैयार हो सकती थी।
2: गुटेनबर्ग ने एक धातु का फार्मा बनाया जिसमें चल अक्षर थे। चल अक्षरों का अर्थ है उनके फार्मे में अक्षरों को वाक्यों के रूप में सजाया जाता था और उनमें स्याही पोतकर कागज पर छापा जाता था। छपाई के बाद उन्ही धातु के अक्षरों को फिर से नए वाक्यों के अनुसार संयोजित कर लिया जाता था।
1: जी श्रोताओं, गुटेनबर्ग की मशीन से छपने वाली पहली पुस्तक बाइबल थी जिसे गुटेनबर्ग बाइबल कहा जाता है। यही तकनीक आधुनिक मुद्रण कला की नींव बनी।
2: इसके बाद हम सभी जानते हैं कि मानव सभ्यता ने एक शानदार मुद्रण तकनीक को देखा। अब डिजिटल मुद्रण का युग है जिससे कुछ ही समय में हजारों लाखों पृष्ठ छापे जा सकते हैं। इसके बाद आया ई बुक का जमाना जिसमें हम रह रहे हैं। पहले पुस्तकों को रखने के लिए विशाल पुस्तकालय हुआ करते थे, लेकिन अब हजारों पुस्तकें एक छोटे से डिवाइस में ही रखी जा सकती हैं।
1: जी तो श्रोताओं, कहा जा सकता है कि मिट्टी की पुस्तकों से पेपिरस तक, भोज और ताड़ पत्रों से होते हुए चर्म पत्रों तक, वहां से गुटेनबर्ग के छापे खाने और फिर डिजिटल पुस्तकों तक की पुस्तकों की यात्रा सच में अनूठी है।
2: जी बिल्कुल, सच में अनूठी है। तो श्रोताओं, कैसी लगी आपको ये जानकारी जरूर बताइएगा। और अब सुनते हैं आज का प्रश्न। प्रश्न है,
1: गुटेनबर्ग ने छापने की मशीन का आविष्कार कब किया? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए,
2: गुटेनबर्ग ने छापने की मशीन का आविष्कार कब किया?
1: आप हमारे प्रश्न का उत्तर हमारे IVRS नंबर 8800440559 पर और हमारे ईमेल यानी audio@ciet.nic.in पर भेज सकते हैं।
2: फेसबुक, इंस्टा, एक्स और लिंक्डइन पर भी आप CIET NCERT को फॉलो कर सकते हैं।
1: और अब बारी है हमारे शैक्षिक कार्यक्रमों की, तो आइए सुनते हैं सबसे पहले कार्यक्रम कैसे बना हिमालय।
2: कक्षा 7 की समाज का अध्ययन की पाठ्य पुस्तक के एक पाठ पर आधारित इस कार्यक्रम में रोचक ढंग से बताया गया है कि हिमालय पर्वत की उत्पत्ति किन भौगोलिक कारणों से हुई और इसे मूड़दार पर्वत श्रृंखला क्यों कहते हैं।
3: साथियों नमस्कार, आइए करते हैं शुरुआत हिंदी के प्रख्यात कवि
4: विनोद कुमार शुक्ल जी की सुंदर कविता से।
3: उच्च हिमालय पर्वतराज, खड़ा पहनकर हिम का ताज,
4: ऊंचा मस्तक रख दिन रात, आसमान से करता बात।
3: हिमालय हमारा गौरव है,

0: ऋषि मुनियों की तप भूमि होने के कारण इसे देव भूमि भी कहा जाता है। यहाँ अनेक मठों और मंदिरों का निर्माण हुआ है। हिमालय वास्तव में भारत की आत्मा और गौरव का प्रतीक है। लेकिन क्या आपके मन में कभी ये जिज्ञासा उठी कि आखिर कैसे बना हिमालय?
1: तो आइए सुनते हैं एक नाटक,
0: कैसे बना हिमालय।
1: आज रिद्धि,
0: नव्या
1: और रजित
0: सब बहुत खुश है
1: क्योंकि उनका परिवार
0: हिमालय क्षेत्र के भ्रमण पर दार्जिलिंग जो जा रहा है।
2: चलो चलो, दार्जिलिंग चलना है, बड़ा मजा आएगा, मैं तो खूब एंजॉय करूंगी।
3: मैंने सुना है बहुत सुंदर जगह है।
2: मुझे बहुत इच्छा थी इस टूर पर जाने की।
3: कितना अच्छा लगेगा जब हम हिमालय की गोद में कुछ दिन बिताएंगे,
2: पहाड़ों पर भी चढ़ेंगे, बड़ा मजा आएगा। अरे अरे जल्दी से चलो, पैकिंग भी तो करनी है।
3: बहुत मजा आएगा।
1: जहाँ वे रुके हुए थे वहाँ से दुनिया की सबसे ऊंची चोटी
0: माउंट एवरेस्ट साफ साफ दिखाई पड़ रही थी।
1: वे सुंदर दृश्य का आनंद उठा ही रहे थे
0: कि उनके कमरे के बगल में ठहरे हुए
1: डॉक्टर आदित्य भी वहाँ गए।
0: बातचीत होने लगी। जब सबने अपने परिचय दे ही दिया तो उन्हें पता चला कि डॉक्टर आदित्य जाने माने भूगर्भ शास्त्री है और अपने शोध कार्य के लिए यहाँ आए हुए हैं। चर्चा होने लगी। बस तो रिद्धि ने प्रश्न पूछ ही लिया।
2: सर, हमें कक्षा में टीचर बता रही थी कि हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ है, क्या पर्वतों का भी निर्माण होता है?
1: भाई बहुत अच्छा सवाल पूछा है तुमने। भाई ये सच है कि पर्वतों का भी निर्माण होता है। तो सुनो, बहुत समय पहले की बात है, करीब 20 करोड़ साल पहले की बात है।
2: क्या 20 करोड़ साल?
1: तब हमारी धरती नई नई थी। तब हमारे महाद्वीप आज की तरह अलग अलग नहीं थे। सारी धरती एक साथ जुड़ी हुई थी।
2: सारी धरती एक साथ जुड़ी हुई थी मतलब?
1: नव्या, अब भाई थोड़ा सा धीरज तो रखो। अब बताता हूँ, लेकिन इससे पहले ये बताओ कि हमारी पृथ्वी पर कितने महादेश हैं? विदित, तुम बताओ।
3: ये तो बहुत आसान है। एशिया, यूरोप, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका।
2: रुको रुको, मैं बताती हूँ।
1: तुम बताओ।
2: अफ्रीका, अंटार्कटिका और ऑस्ट्रेलिया भी तो है। ऑस्ट्रेलिया को ओशेनिया भी तो कहते हैं।
1: बिल्कुल सही रिद्धि। उस समय हमारी पृथ्वी पर एक शांत और विशाल महासागर था और महासागर का नाम था टैथिस महासागर। क्या नाम था?
2: टैथिस महासागर।
1: वाह,
2: ये जानना तो बहुत ही रोचक है। फिर क्या हुआ सर?
1: फिर हुआ ये कि पृथ्वी की आंतरिक गतिविधियों के कारण ये जुड़े हुए भूखंड धीरे धीरे एक दूसरे से अलग होकर खिसकने लगे।
2: अलग होकर खिसकने लगे?
1: अरे एक दूसरे से दूर होने लगे, कुछ एक दूसरे के पास भी आने लगे।
2: सर फिर तो वे बहुत तेज गति से खिसक रहे होंगे।
1: अरे नहीं नव्या, हर साल लगभग 3-4 सेंटीमीटर बस।
3: लेकिन सर हम तो बात कर रहे थे कि हिमालय कैसे बना।
2: सर ये बताइए ना, हिमालय कैसे बना?
1: बेटा मैं उसी विषय पर आ रहा हूँ। अच्छा अब आगे सुनो। उन दिनों हमारा भारत गोंडवाना नामक एक बहुत बड़े भूभाग का हिस्सा था, जहाँ उसका पड़ोसी अफ्रीका था। हजारों साल इसी तरह से निकल गए। समय के साथ साथ भूमि दो हिस्सों में बट गई। दोनों हिस्से एक दूसरे से दूर हो गए। वे दो हिस्से थे, लॉरेशिया यानी यूरेशियन प्लेट और गोंडवाना यानी इंडियन प्लेट।
3: यूरेशियन प्लेट और इंडियन प्लेट?
2: सर आप तो टैथिस सागर के बारे में भी तो बता रहे थे।
1: अरे वाह, तुमने तो मुझे बहुत अच्छा याद दिलाया
2: जी।
1: देखो, विशाल और शांत महासागर ये एक प्राचीन महासागर था जो आज के भूमध्य सागर, अरब सागर और हिमालयी क्षेत्र के बीच फैला हुआ माना जाता है। इसी सागर की तलहटी भूमि की आंतरिक चाल के कारण गोंडवाना और यूरेशियन टेक्टोनिक प्लेट

0: प्लेट्स एक दूसरे की ओर बढ़ने लगी।
1: फिर क्या हुआ सर, जब प्लेट्स एक दूसरे की ओर बढ़ने लगी?
0: बेटा उसके बाद गोंडवाना लैंड यानी भारतीय हिस्सा टैथित सागर एक दिन यूरेशियन प्लेट के करीब पहुंच गया। इस यात्रा में उसे लाखों साल लगे, लेकिन एक दिन अचानक एक जोरदार आवाज आई। गोंडवाना यानी इंडियन और यूरेशियन टेक्टोनिक प्लेट्स आपस में टकरा गए।
2: अच्छा?
0: हाँ बच्चों, टक्कर इतनी जोरदार थी कि बीच की धरती की परतें मुड़कर ऊंची हो गई।
2: सर मैं कुछ बताऊँ इसके बारे में?
0: हाँ बेटा क्यों नहीं।
2: ठीक वैसे ही जैसे यदि किसी कालीन या चटाई को दोनों तरफ से धक्का दिया जाए तो बीच का हिस्सा उठ जाता है।
0: बहुत अच्छे। और इसी प्रक्रिया में तुम जानते हो आगे क्या हुआ? इसी प्रक्रिया में जन्मा हिमालय। तुम्हें पता है आज भी हिमालय की ऊंचाई लगातार बढ़ रही है, क्योंकि इंडियन या गोंडवाना प्लेट लगातार यूरेशियन प्लेट की ओर बहुत धीमी गति से खिसकती जा रही है। दोनों ओर से दबाव बढ़ने के कारण इस हिस्से यानी हिमालयी क्षेत्र की ऊंचाई बढ़ती जा रही है, इसीलिए तो हिमालय को मोड़दार पर्वत कहते हैं।
1: अब समझ आया सर, इसकी ऊंचाई कितनी बढ़ जाती होगी?
0: भाई बहुत अच्छा सवाल। हिमालय में अब भी प्रतिदिन बढ़ने की क्षमता है, इसके अलग अलग अनुमान हैं। आमतौर पर कह सकते हैं कि साल भर में लगभग 5 मिलीमीटर और एक सहस्राब्दी यानी 1000 वर्षों में लगभग 5 मीटर।
2: सर एक खास बात तो हम भूल ही गए, टैथिस सागर का क्या हुआ?
0: भाई यही तो सबसे रोचक बात है। सच ये है कि टैथिस सागर का क्षेत्र ही हिमालय पर्वत बन गया।
2: यानी क्या हम कह सकते हैं कि जहाँ कभी महासागर था वहाँ आज हमारा हिमालय है?
0: हाँ हाँ क्यों नहीं, बिल्कुल कह सकते हैं।
1: लेकिन इसके क्या प्रमाण हैं?
0: भाई बहुत अच्छा सवाल पूछा है बेटी आपने। भूविज्ञानियों को हिमालय की ऊंचाइयों में आज भी समुद्री जीवों के जीवाश्म, शंख, सीप, समुद्री घोंघे और कोरल की चट्टाने मिली है। ये सभी जीव समुद्र में ही पाए जाते हैं। इन खोजों से सिद्ध हो जाता है कि कभी न कभी वहाँ समुद्र रहा जरूर होगा। वहाँ की बहुत सी चट्टानें भी ऐसी हैं जो समुद्र में ही पाई जाती हैं, जैसे चूना पत्थर और शेल आदि। ऐसी चट्टानें समुद्र की तलहटी में ही मिलती हैं।
1: अच्छा तो ये बात है।
0: बिल्कुल। एक और खास बात तुम्हें बता दूं, हिमालय कोई एक पर्वत नहीं है, ये बहुत विस्तृत और विशाल पर्वत श्रेणी है। इसकी लगभग 10 चोटियां हैं जो 8000 मीटर से भी अधिक ऊंची हैं। वैसे यदि सभी चोटियों की बात करें तो अलग अलग ऊंचाइयों की कुल 15000 चोटियां हैं, जिनमें सबसे ऊंचा है
3: माउंट एवरेस्ट।
0: सही जवाब। अच्छा बच्चों एक चीज और बताता हूँ, तिब्बती लोग इसे चोमोलुंगमा कहते हैं, जिसका अर्थ है जगत जननी, और पर्वत की उसी रूप में पूजा भी करते हैं। अच्छा बच्चों नेपाल के निवासी इसे सागर माथा कहते हैं, जिसका अर्थ है आकाश की देवी।
1: सर मुझे आज की बातचीत से एक बात और समझ में आई।
0: भला वो क्या?
1: वो ये कि दबाव कितना भी पड़े हिमालय की तरह ऊंचा उठना मत छोड़ो।
0: बिल्कुल सही बात।
4: तो साथियों अभी आपने सुनी हिमालय के निर्माण की रोचक कहानी, कैसी लगी हमें जरूर बताइएगा। और अब आपके लिए कुछ प्रश्न, पता लगाइए कि हिमालय किस प्रकार का पर्वत है। दूसरा प्रश्न है, हिमालय किन दो प्लेटों के टकराने से बना। कार्यक्रम में आपने सुना कि हिमालय की ऊंचाई प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, इस तथ्य से आपको क्या शिक्षा मिलती है, इस पर एक लघु निबंध या कविता लिखिए।
5: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम कैसे बना हिमालय। कार्यक्रम समन्वय प्रोफेसर राजेंद्र पाल, ध्वनियांकन मंजू कुमारी, बाल कलाकार रिद्धि नव्या और रिदित, कलाकार दलजीत सचदेवा और प्रीति मोहन, नाट्य आलेख अजीत होरो, निर्देशन विमलेश चौधरी तथा ध्वनि संपादन एवं निर्माण सुरेंद्र कुमार। यह कार्यक्रम CIET NCERT नई दिल्ली भारत द्वारा प्रस्तुत किया गया। अभी आपने सुना कार्यक्रम कैसे बना हिमालय।

0: और आइए अब सुनते हैं अगला कार्यक्रम। शीर्षक है स्वामी की दादी।
1: इस कार्यक्रम में स्वामीनाथन नामक एक बच्चे की सुंदर कहानी है, जिसमें उसके और उसकी दादी के बीच प्रेम और स्नेह के संबंध को बताते हुए संदेश दिया गया है कि बच्चों को अपने बड़ों और बुजुर्गों का सम्मान करना चाहिए। कार्यक्रम मुख्य रूप से पारिवारिक मूल्यों के महत्व पर बल देता है।
2: बैठक और भोजन कक्ष के बीच कम हवादार अंधेरे गलियारे की बंद सी कोठरी में स्वामीनाथन की दादी अपने सारे सामान के साथ रहती थी। उनका सामान था 5 दरियों, 3 चादरों, 5 तकियों वाला भारी भरकम बिस्तर, पटसन के रेशे का बना एक वर्गाकार बक्सा और लकड़ी का एक छोटा बक्सा जिसमें तांबे के सिक्के, इलायची, लौंग और सुपारी पड़े रहते थे। रात के भोजन के बाद स्वामीनाथन दादी के पास उनकी गोद में सिर रखे लौंग इलायची की गंध भरे वातावरण में अपने को बहुत प्रसन्न और सुरक्षित महसूस कर रहा था।
3: आजा, आजा, आजा, आजा।
2: बड़ी प्रसन्नता से भरकर वो बोला,
4: ओ दादी, तुम नहीं जानती राजम कितनी ऊंची चीज है।
3: अच्छा?
2: उसने दादी को राजम और मणि की पहले दुश्मनी और फिर दोस्ती की कहानी कह सुनाई।
4: तुम्हें पता है उसके पास सचमुच की पुलिस की वर्दी है,
2: स्वामीनाथन बोला।
3: सच? उसे पुलिस की वर्दी क्यों चाहिए,
2: दादी ने पूछा।
4: उसके पिता पुलिस अधीक्षक है, वो यहाँ की पुलिस के सबसे बड़े अफसर है।
3: अच्छा?
2: दादी काफी प्रभावित हुई।
3: उनका सच में काफी बड़ा दफ्तर होगा,
2: उन्होंने कहा। फिर उन्होंने उन दिनों की कहानी सुनानी शुरू की जब स्वामीनाथन के दादा रौबदार सब मजिस्ट्रेट थे, जिनके दफ्तर में पुलिस वाले कांपते हुए खड़े रहते थे। उनसे डरकर खूंखार से खूंखार डाकू तक भाग खड़े होते थे। स्वामीनाथन अधीर होकर उनकी कहानी खत्म होने का इंतजार करने लगा, लेकिन दादी बोलती ही गई, इधर उधर भटकती हुई और अलग अलग समय पर घटी घटनाओं को गडमड करती हुई।
4: बस काफी है दादी,
2: उसने रूखे स्वर में कहा।
4: मैं तुम्हें राजम के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। जानती हो उसे गणित में कितने नंबर मिलते हैं?
3: सारे नंबर मिलते होंगे, है ना,
2: दादी ने पूछा।
4: अरे नहीं, उसे 100 में से 90 मिलते हैं।
3: चलो अच्छा है, लेकिन तुम्हें भी मेहनत करके उसकी तरह नंबर लेने चाहिए। तुम्हें पता है तुम्हारे दादा कभी कभी ऐसे उत्तर लिखते थे कि परीक्षकों को भी चकित कर देते थे। किसी सवाल का जवाब देने में वे दूसरों के मुकाबले 10वां हिस्सा वक्त लेते थे, और फिर उनके जवाब इतने शानदार होते थे कि कभी कभी उनके अध्यापक उन्हें 200 नंबर तक दे देते थे। जब उन्होंने MA किया तो उन्हें इतना बड़ा मेडल मिला था। मैं कई सालों तक उसे गले में पहनती रही। पता नहीं मैंने कब उसे उतारा। हाँ, जब तुम्हारी बुआ पैदा हुई। नहीं, तुम्हारी बुआ नहीं, तुम्हारे पिता। याद आया, तब बच्चा 10 दिन का था। अरे नहीं, मैंने पहले ठीक कहा था, तुम्हारी बुआ ही पैदा हुई थी। पता है वो मेडल अब कहाँ है? मैंने वो तुम्हारी बुआ को दिया और उस बेवकूफ ने उसे गलवा कर चार चूड़ियां बनवा ली, और वो भी इतनी मामूली सी चूड़ियां कि मैं हमेशा कहती रही हूँ कि हमारे परिवार में उस जैसा महामूर्ख कोई नहीं। और
4: अब बस भी करो दादी, तुम बेकार की पुरानी कहानियां सुनाती रहती हो। क्या तुम राजम के बारे में नहीं सुनना चाहती?
3: बोलो
4: दादी। जब राजम छोटा सा लड़का था तो उसने शेर मारा था।
3: सच? बड़ा बहादुर लड़का है।
4: तुम ये बात मुझे खुश करने के लिए कह रही हो?
3: अरे नहीं नहीं,
4: तुम्हें यकीन नहीं हुआ होगा।
0: स्वामीनाथन ने बड़े उत्साह से कहानी शुरू की।
4: राजम के पिता एक जंगल में डेरा डाले हुए थे।
3: अच्छा।
4: राजम उनके साथ था। अचानक दो शेर उन पर झपटे और एक ने पीछे से हमला करके पिता को गिरा दिया। दूसरे ने राजम का पीछा किया। राजम एक झाड़ी के पीछे छुप गया और वहीं

0: से गोली चलाकर शेर को मार डाला। दादी, क्या तुम सो गई?
1: उसने कहानी खत्म होने पर पूछा।
2: नहीं बेटा, सुन रही हूँ।
0: अच्छा बताओ, कितने शेर आए थे?
2: दो शेर राजम पर झपटे थे।
1: दादी ने जवाब दिया। स्वामीनाथन दादी के गलत जवाब से चिढ़ गया।
0: मैं तुम्हें इतनी जरूरी बातें बता रहा हूँ और तुम नींद में ना जाने क्या क्या उल जलूल कल्पना किए जा रही हो। अब मैं तुम्हें कुछ नहीं बताऊंगा। मैं जानता हूँ तुम क्यों ऐसा कर रही हो। तुम राजम को पसंद नहीं करती।
2: अरे नहीं नहीं, वो तो बहुत प्यारा लड़का है।
1: दादी ने बड़े विश्वास से कहा। उन्होंने राजम को देखा तक नहीं था। स्वामीनाथन खुश हो गया। दूसरे ही क्षण उसके मन में एक नया संदेह पैदा हुआ।
0: दादी, शायद तुम्हें शेर की कहानी पर विश्वास नहीं हो रहा है।
2: मैं एक एक शब्द पर विश्वास करती हूँ।
1: दादी ने स्वर में मिठास भरकर कहा। स्वामीनाथन को इससे खुशी हुई, लेकिन उसने चेतावनी के तौर पर जोड़ा,
0: जो भी उसे झूठा कहेगा वो उसे गोली मार देगा।
2: अच्छा।
1: दादी ने इसका समर्थन किया और हरिश्चंद्र की कहानी सुनाने की बात कही, जिसने वचन का पालन करने के लिए सिंहासन, पत्नी और बच्चे को खो दिया और अंत में उसे सब कुछ वापस मिल गया। उसने कहानी आधी ही सुनाई थी कि स्वामीनाथन खर्राटे लेने लगा।
2: तो हरिश्चंद्र ने अपनी पत्नी और बच्चे को इस तरह से खो दिया, लेकिन बाद में
1: दादी भी रुक रुक कर बोलने लगी, फिर वो भी सो गई।

0: अभी आपने सुना कार्यक्रम स्वामी की दादी, और अब इसी के साथ हम आज के कार्यक्रम को विराम देने की आपसे आज्ञा चाहेंगे। तो अपने मित्र अजीत को
1: और उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम यानी कुसुमलता, जगबंधु, चेतना और मंजू कुमारी जी के साथ विमलेश को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
2: उमंग उमंग उमंग उमंग।
3: अभी आप NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग सुन रहे थे। यह है रेडियो गोल्डन सिटी FM बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज़ पर। दोपहर के 1 बजे हैं। अब से कुछ ही देर में आकाशवाणी के जयपुर अजमेर केंद्र से आप हिंदी में प्रादेशिक समाचार सुनेंगे।

नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। समाचारों के साथ मैं माधुरी वशिष्ठ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज हरियाणा के जींद रेलवे स्टेशन से सोनीपत के बीच चलने वाली भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन को रवाना किया। हाइड्रोजन से चलने वाली इस रेलगाड़ी का शुभारंभ रेलवे क्षेत्र में स्वच्छ और टिकाऊ परिवहन को अपनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। भारत में ही डिजाइन की गई ये रेलगाड़ी स्वदेशी तकनीक का

0: उपयोग करके विकसित की गई है, जो उन्नत रेलवे इंजीनियरिंग में देश की बढ़ती क्षमताओं को दर्शाती है। प्रधानमंत्री श्री मोदी आज ही पंजाब के जालंधर कैंट रेलवे स्टेशन से देश भर के 75 पुनर्विकसित रेलवे स्टेशनों का वर्चुअल माध्यम से लोकार्पण करेंगे। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत इनका आधुनिकीकरण किया गया है। इसमें प्रदेश के 8 स्टेशन जैसलमेर, बाड़मेर, दौसा, डीग, गंगापुर सिटी, गोटन, खैरथल और सोमेसर शामिल हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा नागौर जिले के गोटन रेलवे स्टेशन पर आयोजित होने वाले कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। वहीं जैसलमेर रेलवे स्टेशन पर आयोजित होने वाले समारोह में केंद्रीय पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत मौजूद रहेंगे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज से 2 दिवसीय नागौर दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वे जिले में विभिन्न कार्यक्रमों में भाग लेंगे। मुख्यमंत्री आज तिलानोश गांव में आयोजित ग्राम विकास चौपाल में शामिल होकर ग्रामीणों से संवाद करेंगे और विकास कार्यों की समीक्षा करेंगे। उनका रात्रि विश्राम भी गाँव में ही रहेगा। कल प्रातः भ्रमण के बाद मुख्यमंत्री अगले कार्यक्रम के लिए प्रस्थान करेंगे। मुख्यमंत्री के दौरे को लेकर जिला प्रशासन ने सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं और कार्यक्रम स्थलों पर आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित की गई हैं। संसद के आगामी मॉनसून सत्र से पहले केंद्र सरकार ने रविवार को सर्वदलीय बैठक बुलाई है। बैठक में सरकार संसद के दोनों सदनों के सुचारू संचालन के लिए सभी राजनीतिक दलों के सहयोग का आग्रह करेगी। संसद का मॉनसून सत्र 20 जुलाई से शुरू होकर 13 अगस्त तक चलेगा। इस दौरान कई महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा और उन्हें पारित कराने का कार्यक्रम है। सरकार को उम्मीद है कि सर्वदलीय बैठक के माध्यम से विभिन्न दलों के बीच सहमति बनाकर संसद की कार्यवाही सुचारू रूप से संचालित की जा सकेगी। केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा है कि महिलाओं को विधायिका में पर्याप्त प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए परिसीमन आवश्यक है। ये बात उन्होंने आज जोधपुर में मीडिया से बातचीत में कही। श्री शेखावत ने कहा कि बढ़ती आबादी के कारण लोकसभा और विधानसभा क्षेत्रों का परिसीमन आवश्यक है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महिलाओं के सशक्त नेतृत्व को बढ़ावा देना चाहती हैं। श्री शेखावत ने आरोप लगाया कि जब पहले महिला आरक्षण विधेयक लाया गया था, तब विपक्ष का रुख महिलाओं के हित में नहीं था। संसद के आगामी मॉनसून सत्र में ये मुद्दा फिर से उठेगा। अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस आज विश्व भर में मनाया जा रहा है। इसका उद्देश्य न्याय का समर्थन करने, पीड़ितों के अधिकारों को बढ़ावा देने और विश्व की शांति, सुरक्षा और कल्याण को खतरे में डालने वाले अपराधों को रोकने में मदद करने के इच्छुक सभी लोगों को एकजुट करना है। ये दिन 17 जुलाई 1998 को रोम संधि को अपनाने की वर्षगांठ का प्रतीक है। केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने इस अवसर पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मेघवाल ने कहा कि एक न्यायपूर्ण, समान और करुणामय समाज का निर्माण करना सबकी साझा जिम्मेदारी है। उन्होंने लोगों से समान अवसरों, निष्पक्ष व्यवस्था और मानवीय गरिमा के सम्मान पर आधारित समाज के निर्माण का संकल्प लेने का आह्वान किया, जहां हर नागरिक को न्याय प्राप्त हो सके। राजस्थान लोक सेवा आयोग ने 3 भर्ती परीक्षाओं के लिए आवेदन पत्र में संशोधन का अवसर दिया है। ये सुविधा कल से 24 जुलाई तक उपलब्ध रहेगी। आयोग के अनुसार सहायक अभियोजन अधिकारी प्रारंभिक परीक्षा 2026, निरीक्षक कारखाना एवं बॉयलर्स परीक्षा 2025 तथा निरीक्षक कारखाना केमिकल परीक्षा 2025 के अभ्यर्थी नाम, पिता के नाम, फोटो, जन्म तिथि, जेंडर को छोड़कर अन्य विवरणों में ऑनलाइन संशोधन कर सकेंगे। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन शाम 6:30 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
1: आपने ट्यून किया है रेडियो गोल्डन सिटी एफएम बैंड 106.8 मेगाहर्ट्ज़ पर। प्रस्तुत है बहनों का कार्यक्रम मूमल।

निर्मल कार्यक्रम सुनने वाली मेरी सभी प्यारी प्यारी सखियों को आपकी रेडियो सखी प्रीति का प्यार भरा नमस्कार। कैसी हैं बहनों? जी हाँ, अब थोड़े गर्मी के तेवर भी कम हो गए हैं तो अब थोड़ा सा रिलीफ है। बहनों, जिंदगी में उतार चढ़ाव आते रहते हैं और चलते रहते हैं, लेकिन खास तब है जब वो उतार चढ़ाव पर साक्षात सही उतरे। वो तभी उतरा जाता है जब हम अपने पर कुछ नियम कुछ कायदे लागू करें। सबसे बड़ी चीज़ होती है हमारी बोली। जी हाँ बहनों, बोली एक ऐसा कहते नेचुरल या यूँ कहते भगवान का सबसे बड़ा वरदान है जो इंसान के रिश्ते बना भी देता है और बिगाड़ भी देता है। तभी तो कहा है कबीरदास जी ने कि ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपू शीतल होए। कि हमें हमेशा ऐसी वाणी बोलनी चाहिए जो हमें तो अच्छी लगे लेकिन सामने वाले को भी अच्छी लगनी चाहिए। कई बार हम ऐसे वक्त सब बोल देते हैं जो हमें सुनने में तो बहुत गंदे लगते हैं लेकिन सामने वाले को हम बोल देते हैं, ये बहुत गलत बात है। जब हम सुन नहीं सकते तो हमें बोलने का भी कोई अधिकार नहीं है। वाणी एक ऐसी चीज़ होती है जिसमें मधुरता होनी चाहिए। कई बार बोली ऐसी चीज़ है ना कि बिगड़े हुए रिश्ते भी सुधार देती है जो सालों से बिगड़े होते हैं। कई ऐसा होता है रिश्तों में या परिवार में हमने नहीं गलती करी है लेकिन फिर भी हमें दो बात सुनने को मिल जाती है तो हमें थोड़ा सा गुस्सा आ जाता है, हम भी कुछ बोल देते। अगर कुछ बोलने की बजाय हमने गलती नहीं करी, हमें सुनने को भी मिल गया तो अगर थोड़ा सा ये बोल दो सॉरी हाँ मेरी गलती थी, सारी बात वहीं ख़त्म हो जाती है, रिश्ते फिर से तरोताज़ा हो जाते हैं। लेकिन हम उन चीज़ों को क्या करते हैं, गांठ बांध लेते हैं और ज़्यादा उनमें अति की नौबत लाके कर देते हैं। इसलिए सिर्फ इस बोली की वजह से, ये तो कुदरत की सबसे अच्छी देन है हमें कि हमें बोली मिली है। आज हम अपने भाव दूसरों तक पहुँचा सकते हैं, दूसरों के भाव सुन सकते हैं, तो ये कितनी अच्छी बात है। तो ये एक ऐसी चीज़ है जिससे हम अपने मन के विचारों को या अपने जीवन में जो उतार चढ़ाव आते हैं हम दूसरे के साथ शेयर कर सकते हैं। कई बार दुख होती है, तकलीफ होती है तो हम दूसरों को कह सकते हैं, लेकिन तब जब हमने अपने रिश्तों को मजबूत बनाया हुआ हो। ऐसे नहीं कि हम किसी के साथ भी कोई बात शेयर कर लेते हैं, वो तो हो नहीं सकता। इसलिए अपनी बोली में एक मधुरता रखिए जो सकारात्मकता लाती है, एक मिठास लाती है। एक होता है अगर हमें किसी को कोई बात करनी है या हमें अपना कोई काम करवाना है या हम किसी से काम करवाना चाहते हैं तो रोक से मत बोलिए। कई बार हम अपना ही काम करा रहे लेकिन सामने वाले को ऐसे बोलते हैं जैसे कोई हम उस पर हक जता रहे हैं। आजकल कोई किसी के मोहताज नहीं है, किसी को किसी की जरूरत नहीं। आज हम देख रहे हैं इतनी दूर भाग वाली दुनिया में आज किसी को किसी की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी हमें एक दूसरे की जरूरत होती है। कब समय पलटता है, क्या क्या नहीं पलटता। इसलिए जब भी आप किसी से कोई काम करवा रहे हैं, आपका अपना काम है, तो धीमी बोली और मिठास वाली बोलिए। देखिए सामने वाला फटाफट कैसे काम कर देता है। और अपने शब्दों में सकारात्मकता रखिए, कहीं भी झूठ या नकारात्मकता मत लाइए। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि सामने वाले को सच्चाई मालूम होती है लेकिन फिर भी हम वो झूठ बोले जा रहे हैं तो कितनी गलत बात होती है। एक तो वो कोई हमारा काम कर रहा हो और फिर हम उस बात को झूठ से बना रहे हैं तो ये शायद गलत होगा। जब भी किसी से बात करें चेहरे पर हल्की सी मुस्कान लाकर बात करिए, एकदम आंखें दिखा के चिल्ला कर वो मत करिए। क्योंकि हमारा बोलना हमारी नज़रों पर डिपेंड होता है कि हम जब वर्ड बोलते हैं तो हमारी नज़रें हमें उस वक्त बताती हैं कि हम गुस्से में बोल रहे हैं डांट से बोल रहे हैं। इसलिए जब भी आप किसी से बात करें तो एक मधुरता लाइए, एक अपनापन होना चाहिए बोली में। हम इस संसार में कहते हैं कि संसार में इंसान खाली आता है था और खाली आ जाता है, ये बिल्कुल सही है। लेकिन हाँ ये है कि खाली आता है था लेकिन जाता है ना जब बहुत सारी दुआएं बहुत सारा प्यार लेकर जाता है, वो किस चीज़ लिए होता है, सिर्फ इस बोली के चक्कर में। कोई ऐसा नहीं आज तक जो सोना चांदी रुपया पैसा घर बार लेकर गया हो, नहीं सब यही रह जाता है। सिर्फ साथ में जाती है इस मिठास वाली बोली कि जब जाते हैं ना संसार में, हमने देखा है सुना है कि जब कोई बहुत अजीज हमारा

कोई तकलीफ है या किसी चीज़ से अपन शेयर कर पाते हैं, और शेयर जब कर पाएंगे जब हमने किसी से अपने रिश्ते अच्छे मजबूत बना रखे होंगे, और इससे जब मजबूत अच्छे बनते हैं, जब हमारी बोली में मिठास हो, प्यार हो, अपनापन हो, तभी वो रिश्ते चल पाते हैं, नहीं तो नहीं। हम मंदिरों में जाते हैं, भक्ति भाव करते हैं, भजन सुनते हैं, भजन गाते हैं, तो उस वक्त क्या होता है, उस वक्त हमारी लैंग्वेज अलग होती है बिल्कुल, एक उस बोली में धीमापन होता है, एक प्यार होता है, एक ऐसा लगता है जैसे भक्ति भाव होता है, और वही बहुत जरूरी है। हर टाइम चिल्ला कर बोलना, लड़ाई झगड़ा करना, किसी से काम करवाना तो तेज बोलना, ये सब साइड में कर देना चाहिए। अपनी बोली में एक मिठास लाइए और देखिए कैसे कोई आपका पराया भी अपना हो जाता है। बोली ऐसी चीज है जो पराये को भी अपना कर लेती है, क्योंकि एक इंसान के पास है क्या, कोई किसी की सुंदरता देखकर, कोई किसी का रुपया पैसा देखकर नहीं। बहुत आपके पास रुपया पैसा लेकिन आपको बोलने का तरीका नहीं है तो कोई आपका मित्र नहीं बनेगा, कोई आपका दोस्त नहीं होगा, घर में आपकी रिश्तेदारी खराब हो जाएगी। आपके पास कुछ नहीं है लेकिन बोलने को दो मीठे बोल है तो आपने सब जंग जीत ली, लोगों का दिल जीतना। तो बहनों आपके साथ हमारी चर्चा ऐसे ही जारी रहेगी, लेकिन उससे पहले सुनते हैं प्यारा सा गीत।

आई रुतु मस्तानी कब आएगी तू, बीती जाए जिंदगानी कब आएगी तू, चलिया तू चलिया मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, आई रुतु मस्तानी कब आएगी तू, बीती जाए जिंदगानी।

प्यार की गलियां, बाहों की चलियां, सब रंग रलियां पूछ रही है, गीत पनघट पे किस दिन गाएगी तू, मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, आई रुक मस्तानी कब आएगी।

न आए और कब तक मुझे तड़पाएगी तू, मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, आए रुक मस्तानी कब आएगी तू, बीती जाए जिंदगी।

अधिक दिल का और किसी के ये आ जाए, क्या है भरोसा आशिक दिल का और किसी से ये आ जाए। आ गया तो बहुत पछताएगी तू, मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, आई रुक मस्तानी कब आएगी तू, जीती जाए जिंदगानी कब आएगी तू। चलिया तू चलिया, मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, आई रुक मस्तानी कब आएगी तू, जीती जाए जिंदगानी कब आएगी।

0: बहनों, अभी आप आराधना फिल्म का गीत सुन रहे थे। गीत को आवाज दी थी किशोर कुमार ने। अब सुनते हैं कुछ जरूरी संदेश।
1: कम समय में ज्यादा मुनाफा, बस एक क्लिक में, कमाल है।
2: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। आरबीआई कहता है,
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
4: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: बहनों, हम बात कर रहे थे वाणी में मधुरता। एक चीज और भी है, हम कई बार ऐसा होता है कि किसी को गलत सब बोल कर भी ये सोचते हैं कि हमने तो कुछ बोला ही नहीं है, और सामने वाले के सामने ये जारी करते हैं, आदत है, बोल दिया होगा तो मतलब बिल्कुल मन में कोई दुख, कोई पछतावा किसी चीज़ का नहीं करते। कई बार होता है कि हम किसी को गलत बोल देते, अगर हमने वो अपनी गलती को एक्सेप्ट कर लिया, मान लिया, तो सामने वाले को इतनी तकलीफ नहीं होगी, बल्कि हम और उसके ऊपर चार चीज लगाते हैं और उससे तेज आवाज में बात करते हैं, तो इस तरह क्या होता है कि यारी दोस्ती रिश्तेदारी सब खत्म हो जाती है। अगर हमने गलत बोल दिया तो उस चीज को मानकर आगे ये सोचकर चलें कि हम अब उसको ऐसा शब्द नहीं बोलेंगे, अपने मुंह से ऐसे वर्ड नहीं बोलेंगे जिससे सामने वाले को तकलीफ हो। अपनी भूलों से एक सीख लेनी चाहिए कि ये चीज बोला है, अब आइंदा इसको नहीं बोलेंगे, ये तो कहीं दूर गया, बल्कि और चार चीजें जोड़कर उसमें बोल देते हैं। अपनी बात को हमेशा आगे रखते हैं। वो एक बार कहते हैं ना कि अपनी टांग ऊंची रखना, मतलब गलत बोल कर भी अपनी बात को ऊंचा रखना, सामने वाले की नहीं सुनना, ये गलत है। अगर हमसे कोई गलती हुई है, कोई भूली, तो उसको मान लेना चाहिए। तो इससे रिश्ते भी चलते रहते हैं, व्यवहार भी चलता रहता है, और आपकी एक समाज में एक कहते हैं ना कि स्थिति बन जाती है कि आपको लोग मानते नहीं। तो ठीक है, आप अगर रस्ते में किसी से मिल गए हैं, बोल गए हैं, तो ये कहेंगे इसकी तो आदत ही है, तो ये बोलते रहते, ये तो बोलती रहती है, तो आपकी कोई एक इमेज नहीं रहती है। अगर आपको अपनी एक इमेज बनानी है, आपको एक अपनी पहचान बनानी है, तो ठीक है, हाँ, हमारे काम से बनती है, लेकिन काम के साथ साथ हमारे व्यवहार से भी एक इमेज बनती है, हमारी बोली से भी एक इमेज बनती है। हमने किसी को भी कुछ भी बोल दिया, कुछ भी कह दिया, और फिर इसको नकार दिया कि नहीं, ऐसा बोला ही नहीं था, तो हमने अपनी भूल से एक सीख नहीं ली है, अपनी उस भूल को और आगे बढ़ावा दिया है। भूलों से सीख लेना एक इंसान की सबसे बड़ी खूबी होती है, उसको आगे तक ले जाने के लिए। अगर आपको आगे बढ़ना है तो अपनी भूलों को ये सोचिए, ये गलती जब मैंने की थी, अब मैं इस गलती को दोबारा नहीं करूँगा, नहीं करूँगी, तो आप आगे बढ़ेंगे। लेकिन अगर आपने अपनी भूलों को वहीं नहीं रोका और भूल करते गए तो आप कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे, क्योंकि हमारी भूलें, हमारी गलतियाँ कभी हमारा पीछा नहीं।

छोड़ती है, पीछा जब छोड़ती है जब हमने उससे एक नई सीख लियो कि ये गलती जब करी थी बाकी ऐसा नहीं करी। जैसे कोई व्यापार है, हमने व्यापार शुरू करा है, हमें अगर उसमें फायदा नहीं हुआ और फिर भी हम वो काम छोड़ के दूसरा कर रहे हैं, हमें पता है कि हमें उस व्यापार की नॉलेज नहीं है फिर भी हम वो काम कर रहे थे, गलत है ना। एक गलती कर भी हम दोबारा गलती कर रहे तो हम आगे कैसे बढ़ेंगे, हम तो वहीं की वहीं हैं। हमने किसी के साथ अपने रिश्ते बनाए, हमें पता है कि हमें वहाँ से कोई मतलब नहीं निकलेगा, वो हमारे दोस्ती के लायक नहीं है, हमारे घर में है तो वो भाई हमारी कोई इमेज नहीं रखता, हमारे से कोई लगाव नहीं है, फिर भी हम सोचते नहीं उससे हमें लाभ होगा। एक लाभ के चक्कर में हम कई बार गलत उसमें फंस जाते हैं। ये हमारी सबसे बड़ी भूल, इंसान की पहचान कर ही यारी दोस्ती बनानी चाहिए। हमें उसके बारे में सब कुछ पता है लेकिन ये सोच के नहीं ये काम आएगा कभी नहीं, ऐसा गलत है। कई बार काम आने की वजह ये होता है कि हमें एक धोखा मिल जाता है। इसलिए अपनी भूलों को हमेशा याद रखकर जिंदगी में आगे बढ़े और ये कोशिश करें कि फिर वो भूल कभी नहीं करेंगे, तब तो है मजेदारी। और भूल कर चलते जा रहे हैं जीवन तो ठीक है, फिर तो इंसान और जानवर में कोई फर्क ही नहीं रहा कि भूलों से इंसान एक नई सीख लेता है तब तो वो इंसान है, नहीं तो फिर जानवर भी वही करते हैं। इसलिए अपनी भूल से सीख लो और एक नई रोशनी का दर्शन करो, एक नई रोशनी दिखाओ, तब तो मजेदारी है, नहीं तो सब बेकार है। तो इसी बात के साथ लीजिए चलते हैं संगीत की दुनिया में और सुनते हैं ये प्यारा सा।

बहनों, अभी आपने प्यारा सा जो गीत सुना फिल्म थी बॉम्बे, जिसको आवाजी थी चित्रा ने। हमने बात की वाणी में मधुरता, अपनी भूलों से सीख लें, लेकिन एक चीज़ और है जो हमें शायद उसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और उसका ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। जी हाँ, जो जीवन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, हम शायद खाना खाए बिना रह सकते हैं लेकिन पिए बिना नहीं, मीन्स पानी पिए बिना। जी हाँ, तो जल, जल हमारे लिए बहुत कीमती है, बहुत ज़्यादा कीमती। तो उसका संरक्षण करना, उसका ध्यान रखना, ये हमारा सबसे बड़ा कर्तव्य बनता है। जल सिर्फ मानव के लिए नहीं, जीवों के लिए भी बहुत ज़रूरी है, लेकिन जीवों के लिए हम सुरक्षित बना सकते हैं, हमें ध्यान रखना पड़ता है। और हमारा ये पहला कर्तव्य है कि जल का संरक्षण करें और उसकी साफ़ सफाई का भी पूरा ध्यान रखें। जल हमारे जीवन का अनमोल स्रोत है, का महत्व हर जीव के लिए अत्यंत आवश्यक है। बहनों, जल ना केवल पीने के लिए जरूरी है बल्कि यह हमारी खेती, उद्योग, दैनिक जीवन, अनेक कामों में उपयोग किया जाता है। इससे जल को बचाना और उसकी साफ सफाई रखना हमारा पहला कर्तव्य है और हमारी जिम्मेदारी बनती है। और हमें अपनी जिम्मेदारी को निभाना आता है, बखूबी आता है, लेकिन बस कई बार होता है कि थोड़ा सा यूँ कह सकते हैं कि काम में व्यस्त होना, या ऐसे कह सकते हैं कि थोड़ा सा मन में लालच आ जाना कि अपना तो पानी भर गया, अब पानी गिरे तो गिरे, क्या करना। जब कभी पानी आता है तो जब हम क्या सोचते हैं, तो अपना सारा पानी भर गया, फिर वही दीवारों पे पानी डालना, धोवा धाई। ये अगर हमें लग रहा है जरूरत है तो कीजिए, नहीं तो पानी को बंद कर दीजिए। हम बच्चों को भी सिखाते हैं, जब आप ब्रश कर रहे हो तो बच्चे क्या करते हैं, ब्रश करते समय पूरा वॉश बेसिन का नल खुला रखते हैं, ब्रश करते रहते हैं। उन्हें बताना चाहिए जब आप ब्रश कर रहे हैं तो नल को बंद रखिए, जब आप मुंह को वॉश करना है तो आप नल को खोल दीजिए। ये पूरे टाइम नल को खोल के रखने का क्या मतलब है? बच्चों को शुरू से ही अगर हम बताएंगे ना कि जल की महत्वता, तो बच्चे जल्दी सीखेंगे, जैसा वो देखेंगे वैसा करेंगे। जब हम ही नहीं केयर कर पाएंगे तो बच्चे कैसे करेंगे? इसलिए जल का संरक्षण और जल का ध्यान रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि जीवन में सबसे ज़्यादा अहमियत है तो जल की है, उसके बिना तो कुछ भी नहीं है। हम कह रहे हैं कि खाने के लिए जो चीज़ें, खाने के लिए चीज़ें कहाँ से, जब खेती नहीं होगी और खेती कब होगी, जब जल होगा। तो सभी चीज़ें एक तरह से जुड़ी हुई हैं, इसलिए हमारा पहला कर्तव्य है जल का संरक्षण करना, उसे बचाना, पानी का वेस्टेज ना करना। जल, वर्षा जल संरक्षण, जल संचय, प्रदूषण नियंत्रण उपाय अपना कर हम जल संकट से बच सकते हैं। हमें स्वच्छ जल उपलब्ध करना सभी का अधिकार है, जिससे स्वस्थ जीवन संभव हो सके। बहनों, जल संरक्षण के लिए हमें जागरूकता होना जरूरी है, क्योंकि जल की बर्बादी सीधे हमारे भविष्य को प्रभावित करती है। जी हाँ, हम अगर आज जल की बचत नहीं करेंगे तो कल हमारा भविष्य संकट में पड़ सकता है। जल ही जीवन का आधार है और इसे बचाना हमारा कर्तव्य है। हमें जल संसाधनों की रक्षा कर उन्हें सतत बनाए रखने का प्रयास करना चाहिए, ताकि आने वाली पीढ़ियों में भी इसका लाभ उठा सके। जल के बिना जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। हमारे जो बहनों, आप जानते हैं, ग्रहों पर जल की मात्रा सीमित है, लेकिन आबादी बढ़ने से जल की मांग की लगातार बढ़ रही है। जल की कमी से ना केवल मानव बल्कि सभी जीवों का जीवन संकट में पड़ जाता है। इसीलिए जब बारिश का जो जल आता है ना, हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम उसका भी संरक्षण कर सकें, उसे भी इकट्ठा कर सकें। और ऐसी प्रतिक्रिया है कि आप जल, बरसात का जल सीधे अपने जैसे हो दे टाके में उसमें डाल सकते हैं, लेकिन इसके लिए थोड़ा सा आपको प्रयत्न करना होगा। अगर अपने को, आपको अपना जीवन सुरक्षित करना है तो, अपना भविष्य बचाना है तो, अगर आपको ऐसा लगता है कि मेरा भविष्य अच्छा बीते या मेरा आने वाला समय अच्छा बीते, तो हमें उस जल की पूरी देख रेख करनी होगी, उसका संरक्षण करना होगा और साफ सफाई का भी पूरा ध्यान रखना होगा। घर में हम जब जल भर के रखते हैं तो उसको ढक के रखें, पानी की टंकियों को समय समय पर साफ करें, घर में अगर हमारे होद बने हुए, टैंक बने हुए, तो उन्हें समय समय पर साफ करें, दवाई डलवाएं, मतलब पूरी तरह से जल का संरक्षण कर उसके साफ सफाई का भी नित्य ध्यान रखा जाए। जैविक आवश्यकता, पानी के बिना शरीर में खून का संचार रुक सकता है और पाचन तंत्र काम नहीं करता। यह शरीर के लिए सभी अंगों को सुचारू रूप से चलाने में मदद करता है। और सबसे बड़ी बात है कि पीने के लिए कम से कम आपको दिन में 2 बोतल पानी पीना ही चाहिए। जी हाँ,
वैसे तो ज्यादा मात्रा पीना चाहिए, लेकिन अगर इतना नहीं है तो 2 बोतलें तो आपको खाली करनी ही चाहिए। खेती और भोजन, अनाज फल सब्जियां उगाने के लिए पानी सबसे बड़ी जरूरत है। इसके बिना कृषि का खाद्य उत्पादन संभव नहीं है। पर्यावरण संतुलन, पानी पृथ्वी पर जलवायु को नियंत्रित करता है और जीवित रखता है। तो मतलब हर तरह से हम कह सकते हैं कि पृथ्वी पर जल का सबसे बड़ा महत्व है, और उस महत्व को वो तभी रह सकता है जब हम जल का संरक्षण करें, जल की सुरक्षा करें, उसकी साफ सफाई रखें और उसका बचाव करें। जहाँ जिसकी जरूरत हो तो उतना काम में ले, अगर जरूरत नहीं है तो नल को बंद कर दें। अगर लग रहा है कि यहाँ पे पानी की जरूरत है तो नहीं ऐसा ना सोचिए कि पानी तो आ रहा है तो चला के रखो, नहीं, वेस्टेज पानी की अपना जीवन संकट में डालना है। ये सोच लीजिए कि अगर हम आज जल का संकट में, आज जल को इकट्ठा नहीं करें तो कल अपना जीवन हम संकट में डाल रहे हैं। पृथ्वी पर 71% पानी है, लेकिन पीने योग्य मीठा पानी केवल 3% ही है। इसलिए जल की हर एक बूंद कीमती है और इसका संरक्षण आवश्यक है। सॉल्टी नमक वाला पानी तो आपको मिल जाएगा, लेकिन पीने योग्य पानी बहुत कम है, इसलिए इसको बचाइए और अपना जीवन सुरक्षित कीजिए। तो आपके साथ हमारी चर्चा जल को लेकर ऐसे ही जारी रहेगी, लेकिन उससे पहले सुनते हैं प्यारा सा गीत।

बहनों, अभी आपने जो प्यारा सा गीत सुना, फिल्म थी खामोशी, गीत को आवाज थी लता मंगेशकर, एसपी बाला सुब्रमण्यम, उदित नारायण, कुमार सानू ने। हम आज अपनी चर्चा में ज्यादातर यही बात कर रही है हमने कि हमें अपने रिश्तों को कैसे बचाना चाहिए, कैसे बोलकर, कैसे करके अपनी भूलों को याद करके कि आगे हम वो भूल नहीं करेंगे, अपनी बोली में मधुरता लाकर। लेकिन एक सबसे जरूरी चीज तो है बहनों कि रिश्ते तब बन सकते हैं जब हम अपने अंदर पक्षपात की भावना ना रखें। आज रिश्ते इसीलिए टूटते जा रहे हैं कि हम सिर्फ अपना सोचते हैं, बाकी परिवार से हमें कोई लेना देना नहीं है। अगर हम एक माँ हैं तो सिर्फ हम अपने बच्चों का सोचेंगे, अपने पति का सोचेंगे, बस यहीं तक सीमित रह गए हैं। अगर हम अपने मम्मी के यहाँ रह रहे हैं, अनमैरिड हैं, तो सिर्फ अपने भाई बहनों का, मम्मी पापा का। हालांकि ये एक नेचुरल क्रिया है, सभी ऐसा करते हैं, तभी आज हम देखेंगे कि रिश्ते किस तरह टूटते जा रहे हैं। एक मन में आ जाता है ना पक्षपात, जो शायद हम कई बार नहीं चाहकर भी कर देते हैं, और ये सबसे अनुचित बात होती है। शादी से पहले अपने भाई बहनों को ज्यादा अहमियत देना, ये हर कोई करता है, लेकिन जब कोई आप सामाजिक कार्य में मिल रहे हैं, कहीं और मिल रहे हैं, तो आप पक्षपात ना करें। तब हमारा पहला फर्ज या पहला कर्तव्य ये बनता है कि हम सबको बराबर लें। कहीं हम गए हैं, हमें कोई चीज मिल रही है, तो हम पक्षपात की भावना ऐसी रखते हैं कि पहले अपनों अपनों को बुला के वो चीजें दे देते हैं, जबकि वो बांटने वाला देने वाला सामान कहेगा कि सबको सामान दीजिए, लेकिन वो मन में एक विचार आ जाता है, नहीं, अपनों को ज्यादा दी, बाकियों को छोड़ दी। ये सबसे बड़ा पक्षपात होता है। तो पक्षपात ऐसी चीज होती है जो रिश्तों को तोड़ देती है। जहां हम सिर्फ अपना अपना सोचते हैं, वहां रिश्ते कभी नहीं बच पाते। वहां एक सेल्फिनेस बात आ जाती है, हम सेल्फिश हैं, सिर्फ अपना सोच रहे हैं, अपने परिवार का बात। हालांकि ये प्रतिक्रिया, ये क्रिया सब में होती है कि सिर्फ अपना सोचे, बाकी जाए भाड़ में, लेकिन ये नहीं होना चाहिए। रिश्ते तभी चल सकते हैं, जब भी बच सकते हैं, जब हम अपनेपन की भावना रखें, अपनत्व की भावना रखें, ये सोचकर नहीं कि सिर्फ अपना लेना है। अपनत्व तब आता है जब हम सबका सोचेंगे, और तभी रिश्ते चल पाएंगे। पक्षपात का अर्थ है बहनों किसी एक व्यक्ति, समूह या विचार का अनुचित तरीके से समर्थन करना और दूसरों के साथ भेदभाव करना। यह निष्पक्षता के बिल्कुल विपरीत है, जहां व्यक्तिगत राय, पूर्व ग्रह या लगाव के कारण सही और गलत का फैसला नहीं हो पाता है। पक्षपात के मुख्य प्रकार होते हैं। व्यक्तिगत पक्षपात, किसी परिचित या रिश्तेदार का पक्ष लेना, चाहे वो गलत है, फिर भी कहीं कोई बात हो गई है, लड़ाई झगड़ा हो गया, हमें पता है कि हमारा जो रिश्तेदार है वो गलत है, लेकिन फिर भी उसका पक्ष लेना और उसको सही साबित करना, ये बहुत बड़ी गलती होती है। बच्चों का भी अपन यही करते हैं। कई बार बच्चे बाहर खेल रहे होते हैं, हमें मालूम है कि हमारे बच्चे की गलती होती है, लड़ाई हो गई है, तो और हम उसका समर्थन कर रहे हैं, तो ये क्या होगा, आज तो कोई बात नहीं, लेकिन कल हमारा ही बच्चा गलत दिशा में चला जाएगा, क्योंकि आज हम उसका समर्थन कर रहे हैं गलत बात पर, तो कल वो इसी का फायदा उठाएगा और ज्यादा गलती करेगा। बच्चों की गलती को रोकने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि आप सही के वक्त सही बोलें और गलत के साथ दें, तभी ये हो सकता है। लेकिन हम क्या करते हैं, गलत को सही करके, सही को गलत करके सब उल्टा कर देते हैं, और अपने ही बच्चों के साथ, अपने परिवार के साथ एक खिलवाड़ कर देते हैं। तो हमें ये नहीं करना है, हमें सही को सही, गलत को गलत साबित करना है, तभी हम अपने बच्चों को नई रोशनी दे पाएंगे, नया जीवन दे पाएंगे, नहीं तो हम तो उसको अंधकार में डाल रहे हैं। एक बच्चा आज स्कूल जाता है या कहीं गया है, उसने गलती से, भूल से किसी की पेन पेंसिल स्कूल गया, किसी की पेन पेंसिल, किसी का पेन, किसी की कॉपी अगर वो बैग में रख के आ गया है और घर आकर हमें बताता है, तो हम उस वक्त उसे डांटें और कल वापस उसको ये कहें कि ये चीज़ जिसकी लेके उसको रिटर्न करें, तब तो सही। और बाई चांस अगर उसके पेरेंट्स का हमारे पास कोई फोन आता है, वो हमसे मिलने आते हैं इसकी बात का, तो हम साफ इनकार करें, नहीं हमारा बच्चा तो लेकर ही नहीं आया, हमारा बच्चा तो ऐसा है नहीं, जबकि वो चीज़ उस बच्चे के पास मौजूद है। तो ये सबसे बड़ी गलती होगी कि हम अपने बच्चे का पक्ष ले रहे हैं, उससे बचा रहे हैं। हम एक सीधी

बात का कह सकते हैं कि बच्चों में समझ कम होती है, उन्हें चोरी या चकारी का मतलब नहीं, लेकिन हम उसको एक सीधी भाषा में कहते गलती से आ गई थी, ये आपकी बच्चे की चीज वापस, तो कल हमारा बच्चा वो गलती नहीं करेगा। लेकिन आज हम उसका अगर पक्ष ले रहे हैं तो कल आज वो कॉपी लाया कल कुछ और लेके आएगा, क्योंकि उसे पता है कि पीछे पेरेंट्स हैं हमारा सपोर्ट करने के लिए। गलत चीज़ों के साथ बच्चों के साथ सपोर्ट मत कीजिए, उन्हें गलती का एहसास दिलाइए, वहाँ उनका पक्ष मत लीजिए। अगर हमें लग रहा है चाहे वो हमारा फैमिली मेम्बर ही क्यों ना, अगर वो गलत है तो हमें उसका पक्ष ना लेकर उसे सही राह दिखानी है। पक्ष लेकर हम क्या करते हैं, बच्चों को गलत राह, परिवारों को गलत राह पर डाल देते हैं। अगर हम पक्षपात करेंगे किसी के साथ, आज हमारे रिश्तेदार कोई बैठे हैं, हमारे बच्चे बैठे हैं, सम्मान कोई चीज़ देनी है तो हमें उसको सम्मान देनी चाहिए, ना कि ये सोचकर मैं इसको ज़्यादा दे दूँ क्योंकि मेरे अपने हैं। थोड़ी ही या कम में कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर सामने वालों को पता चल जाता है तो हमारी नज़रें झुक जाती हैं। अपनी नज़रों को झुकाने से अच्छा है कि आप सही निर्णय लें और सही काम करें, तब तो है मज़ेदारी, नहीं तो ठीक है दुनियादारी चलता रहेगा। इसलिए ये सबसे ज़्यादा जरूरी है कि सही का साथ दें, गलत को गलत साबित करें और पक्ष उसी का लें जो सही है। अगर गलत को सही कर दिया तो हमने तो पक्षपात कर दिया, हमने तो वही किया है जो हमें नहीं करना चाहिए था वो हमने कर दिया, इसलिए इस चीज का पूरा ध्यान रखें। विचारधारा का पक्षपात, अपनी राजनीति या व्यक्तिगत सोच में असहमत लोगों की बातों को महत्व देना। जी हाँ, कई बार ऐसा होता है कि हमें मालूम है कि कौन सही है कोई गलत है, लेकिन फिर भी हम अपनी एक जगह बनाने के लिए गलत निर्णय ले लेते हैं। आज जैसे कोई कॉलेज स्कूल में कहीं पर भी कोई चुनाव हुआ है, कोई निर्णय लिया गया बच्चों के जरिए, या बच्चों ने कोई पार्टिसिपेट किया है, अच्छा किया है, और लेकिन हमें लग रहा है कि एक टीम में हमारा रिश्तेदार है और हमें निर्णायक बनाया गया है, तो हमें निर्णय लेना चाहिए निर्णायक बनकर, ना कि घर वाले बनकर। अगर हमने अपनी टीम को जिता दिया, सामने वाली टीम जो सही थी उसने बहुत अच्छा परफॉर्म किया लेकिन उसको हरा दिया और अपने घर वालों का पक्ष कर लिया, ये पक्षपात होगा जो सही नहीं होगा। आज हम जिस कुर्सी पर बैठे हैं हमें उसका सम्मान करना चाहिए, तो आज यहाँ हमें बुलाया कल हमें और बुलाएंगे, नहीं तो नहीं। आज हमने सही निर्णय लिया तो कल हमारा सम्मान होगा, नहीं तो कह देंगे वो तो पक्षपात करके चले गए, उनको बुलाने से कोई मतलब नहीं। इसलिए हमें भी अगर अपने सम्मान में जगह बनानी तो सबसे ज़्यादा जरूरी है हमें पक्षपात छोड़कर सभी का बराबर निर्णय लेना चाहिए, एक अच्छा नागरिक बनकर सुझाव देना चाहिए, एक अच्छे नागरिक बनकर सबका सहयोग करना चाहिए, तब तो अच्छी बात। तो बहनों, जाते जाते एक लास्ट गीत आपको और सुना देती हूँ, लीजिए सुनिए बरसात का ये प्यारा सा गीत।

बात कर रहे थे पक्षपात, बोली, जल ही जीवन है, इन सब को लेकर। लेकिन इन सब के बीच में थोड़ा सा अगर हम अपने पे ध्यान दें, अपने सौंदर्य पे ध्यान दें, तो फिर बाकी क्या। वो कहते सोने पे सुहागे, काम कर फिर अपने पर भी थोड़ा ध्यान दें। ये जीवन भाग दौड़ वाली है बहनों, इसमें कभी अपने लिए समय नहीं मिलता है, लेकिन समय निकालना पड़ता है और वो खुद को निकालना पड़ता है। कोई आपको ये नहीं कहेगा कि आप बैठ जाइए, आज अपना ध्यान रखिए, ये नहीं होगा। आपको अपने काम में थोड़ी सी स्पीड ला के थोड़ा सा ये रखना चाहिए कि एक समय मिल सके जिसमें आप अपनी केयर कर सकें। ये सोचना कि जैसे केयर करना, बालों में तेल लगाना, अगर हमारे को लग रहा है हमारी स्किन थोड़ी खराब होगी तो उसकी केयर करना, अपने नेल्स पर ध्यान देना, मैनीक्योर पेडीक्योर, आजकल तो हर चीज़ घर पर हो जाती है, कहीं जाने की जरूरत पर उस पर है कि हमारे त्वचा को थोड़ी सी केयरिंग की जरूरत होती है और वो केयरिंग हम घर पर आराम से कर सकते हैं। अभी जैसे हम देख रहे हैं मौसम थोड़ा सा गर्माहट वाला भी है तो थोड़ा नमी वाला भी है, तो इसमें हम अपनी त्वचा की केयर कैसे करें। अब जैसे चेहरा है थोड़ा सा बाहर निकलते हैं तो थोड़ा गर्म, या कहते हैं ना स्किन थोड़ी सी डार्क मिक्स आ जाती है, तो उसके लिए आप थोड़ा दही और बेसन लगाइए, नहाने से पहले थोड़ा सा उसका मसाज कीजिए, हफ्ते में एक बार ये कीजिए, मुल्तानी मिट्टी है उसका पेस्ट बनाकर लगाइए। ये क्या होती है, हमारी स्किन को थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग बनाती है, झुर्रियाँ नहीं आने देती हैं, कार आँखों के नीचे डार्कनेस आ जाते हैं, वहाँ पे आप रोज कर सकते हैं कच्चे दूध की मालिश कीजिए। अभी हम देख रहे हैं ये जो मौसम होता है शुष्क पड़ा, इससे बाल बहुत झड़ते हैं, तो बालों में ऑयल के साथ साथ आप दही की मसाज कीजिए। तो दही की मसाज में, दही में थोड़ा सा नींबू लगाकर चेहरे सिर पर लगाइए, इससे क्या बाल झड़ना बंद हो जाएंगे। तो ये छोटी छोटी चीज़ें होती है ना जिसे हमें अपने शरीर की केयर करनी चाहिए, ये बहुत ज़्यादा जरूरी है। ये भाग दौड़ी हुई लाइफ में आपको अपने लिए समय नहीं मिल पाता है, तो आप क्या सोचते हैं, वही जैसे सुबह उठे वही जूड़ा बांधा, वही बालों पे लगा लिया क्लिप लगा लिया, पूरे दिन काम किया, रात को जाके कहीं ऐसा लगता है कि बाल खुल जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। फिर हम रात को जब बाल झाड़ते हैं तो आप देख लीजिए कितने बाल, ज़्यादा बाल झड़ते हैं, क्योंकि वो पूरे दिन का ऑयल भी होता है, कुछ मिट्टी वगैरह होती है, तो बाल एकदम शुष्क हो जाते हैं और वो झड़ते ज़्यादा हैं। फिर हम सब ये सोचते हैं हमारे बाल आजकल बहुत झड़ते हैं, लेकिन हम ये कारण जानकर भी अनजान में रहते हैं। अपने बालों की केयर कीजिए, बालों में टाइम टू टाइम तेल लगाइए, दही की मालिश कीजिए, तो हमारे बाल भी बिल्कुल सेफ रहेंगे और हम भी, और अपनी त्वचा का भी पूरा ध्यान रखिए। बातें आपके साथ बहुत सारी करनी थी पर घड़ी की सुइयां हमें अपना प्रोग्राम यहीं रोकने के लिए कहेंगे। आपकी सखी प्रीति आपकी सेवन फिर से हाजिर होगी, तब तक लीजिए नमस्कार।

महिलाएं अभी सुन रही थी अपना कार्यक्रम वुमन। ये है रेडियो गोल्डन सिटी एफएम बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज़ पर। दोपहर के 2 बजने को है। अब से कुछ ही देर में आप आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से समाचार सुनेंगे। समाचारों का प्रसारण पहले अंग्रेजी में फिर हिंदी में होगा।

0: India's Rafale fighter aircraft and C-17 transport aircraft have reached Australia to participate in the Royal Australian Air Force's premier multinational air combat exercise, Pitch Black 2026. The exercise will be held from the 20th of July to the 7th of August at Royal Australian Air Force bases in Darwin, Tyndall and Amberley in Northern Australia. The Intermeteorological Department, IMD, has forecast heavy rainfall today over parts of Arunachal Pradesh, Assam, Meghalaya and Odisha. Parts of Bihar, Chhattisgarh, East Madhya Pradesh, East Uttar Pradesh, Jharkhand, Nagaland, Manipur, Mizoram and Tripura, Uttarakhand, Vidarbha, West Bengal and Sikkim are also expected to receive moderate to heavy rainfall during the day. A report.
1: The weather department also predicted thunderstorms and lightning today over Gangetic, West Bengal, Jammu and Kashmir, Ladakh, Muzaffarabad, Jharkhand, Madhya Pradesh, Maharashtra, Rayalaseema and Telangana. Similar weather conditions are also expected at places over parts of Northeast India, Andaman and Nicobar Islands, Bihar and Tamil Nadu, Puducherry and Karaika. Meanwhile, heat wave conditions are likely to persist today over Tamil Nadu, Puducherry and Karaika. The Met Department said that Andhra Pradesh, Haryana, Chandigarh, Delhi, Punjab, Tamil Nadu, Puducherry and Karaika are expected to experience a hot and humid day today. With Priya, this is Anuja Kumar for Akashwani News, Delhi.
0: In badminton, two-time Olympic medalist PV Sindhu has advanced to the semi-finals of the Japan Open 2026. Sindhu progressed after Japan's former world champion Nozomi Okuhara withdrew from their women's singles quarterfinal, giving the Indian shuttler a walkover. World number 10 Sindhu will now face China's world number 4 Chen Yufei in the semi-finals tomorrow. And now before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi flags off India's first hydrogen train in Jind, Haryana, also lays foundation stone and dedicates various development projects worth over 14,000 crore rupees. DGMA directs ship owners to avoid deploying Indian seafarers undertaking voyages through Strait of Hormuz. European Union expresses serious concern over human rights situation in Pakistan, asks Islamabad to comply with international commitments to access trade benefits. IMD forecasts heavy rainfall over parts of Arunachal Pradesh, Assam, Meghalaya and Odisha today, and in badminton, Indian ace shuttler PV Sindhu enters semi-finals of Japan Open in Tokyo. With that, we end the midday news.
2: Namaskar, Akashwani se dopahar samachar ke saath main Kanak Lata. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरियाणा के जींद में भारत की पहली हाइड्रोजन रेलगाड़ी को रवाना किया। 14,000 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। समुद्री प्रशासन महानिदेशालय ने जहाज मालिकों को हॉर्मुज जलडमरु मध्य से गुजरने वाले जहाजों पर भारतीय नाविकों की तैनाती न करने के निर्देश दिए। यूरोपीय संघ ने पाकिस्तान में मानवाधिकारों की स्थिति पर गंभीर चिंता व्यक्त करते हुए कहा, व्यापारिक लाभ पाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबद्धताओं का पालन करें। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय और उड़ीसा के कुछ हिस्सों में आज तेज बारिश का अनुमान। और भारत की पीवी सिंधु जापान ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में पहुंची। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज हरियाणा के जींद रेलवे स्टेशन से सोनीपत के बीच चलने वाली भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन को रवाना किया। इस रेलगाड़ी का शुभारंभ रेलवे क्षेत्र में स्वच्छ और टिकाऊ परिवहन को अपनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने हरियाणा में 14,000 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखी। श्री मोदी ने 157 किलोमीटर लंबे दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे को राष्ट्र को समर्पित किया। ये ग्रीनफील्ड कॉरिडोर 667 किलोमीटर लंबे दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे का हिस्सा है। इस एक्सप्रेसवे से दिल्ली और कटरा के बीच यात्रा का समय 14 घंटे से घटकर लगभग 6 घंटे हो जाएगा, जबकि दिल्ली अमृतसर की यात्रा का समय लगभग 8 घंटे से घटकर 4 घंटे हो जाएगा। इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि पिछले 12 वर्ष में भारतीय रेलवे में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए हैं। उन्होंने कहा कि हरियाणा ने हाल के वर्षों में विकास के एक नए चरण को देखा है और प्रगति के पथ पर अग्रसर हुआ है।

0: नए मेडिकल कॉलेज भी हरियाणा की सेवा के लिए समर्पित है। भिवानी में पंडित नेकीराम शर्मा मेडिकल कॉलेज और नारनौल में महर्षि च्यवन मेडिकल कॉलेज और राव तुलाराम अस्पताल, इससे हरियाणा की स्वास्थ्य सेवा और सशक्त होगी। साथ ही इस यहाँ के नौजवानों के लिए डॉक्टर और अन्य मेडिकल प्रोफेशनल बनने के नए रास्ते भी बनेंगे।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि जींद भाजपा और एनडीए के सुशासन मॉडल का प्रतीक बनकर उभर रहा है। श्री मोदी ने कहा कि देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन के शुभारंभ ने जींद को भारत के इतिहास में एक विशेष स्थान दिलाया है।
0: आज भारतीय रेल ने भी 21वीं सदी की इस टेक्नोलॉजी में एक बड़ा स्टेप लिया है। आज जींद से सोनीपत के बीच हाइड्रोजन ट्रेन चली है। अभी ये सफर 90 किलोमीटर का है। हम इस पर रिसर्च करते रहेंगे, लागत कम कैसे हो इसका तरीका ढूंढते रहेंगे, एफिशिएंसी कैसे बढ़े इस पर काम करते रहेंगे और बड़ी जांच पड़ताल करते करते एक के बाद एक कदम उठाते जाएंगे।
1: रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भारत की पहली हाइड्रोजन चालित ट्रेन के शुभारंभ को देश की तकनीकी प्रगति में एक ऐतिहासिक उपलब्धि बताया। श्री वैष्णव ने कहा कि ये उपलब्धि नरेंद्र मोदी सरकार के व्यापक रेलवे आधुनिकीकरण अभियान का हिस्सा है। उन्होंने कहा कि ये उपलब्धि स्वदेशी हाइड्रोजन प्रौद्योगिकी के विकास के लिए दृढ़ राष्ट्रीय संकल्प का परिणाम है।
2: जींद में हाइड्रोजन बनाने का प्लांट लगाया गया है। उस हाइड्रोजन से बिजली बनती है और उस बिजली से ट्रेन चलती है। कोई धुआं नहीं, कोई पेट्रोल या डीजल की रिक्वायरमेंट नहीं, एकदम साफ स्वच्छ और सिर्फ निकलता है पानी की बूंदे। मैं इस बड़ी उपलब्धि के लिए भारत के नेतृत्व को, माननीय प्रधानमंत्री जी को और भारत के इंजीनियर्स की टेक्निकल क्षमता को सल्यूट करता हूँ।
1: भारत में डिजाइन और एकीकृत की गई इस ट्रेन को स्वदेशी तकनीक का उपयोग करके विकसित किया गया है। ये उन्नत रेलवे इंजीनियरिंग में देश की बढ़ती क्षमताओं को दर्शाती है। जींद सोनीपत खंड पर 75 किलोमीटर प्रति घंटे की परिचालन गति और 110 किलोमीटर प्रति घंटे की डिजाइन गति के साथ ये ट्रेन न केवल सुरक्षित है बल्कि 89 किलोमीटर के इस खंड पर तेज भी है। एक रिपोर्ट।
3: हाइड्रोजन से चलने वाली इस ट्रेन की शुरुआत होने के साथ ही भारत अब जर्मनी, जापान, चीन और अमेरिका जैसे उन चुनिंदा देशों की सूची में शामिल हो गया है जहां हाइड्रोजन ट्रेनें चल रही हैं। इस समय दुनिया में अभी ज्यादातर हाइड्रोजन ट्रेनें सिर्फ 2 या 3 डिब्बों की होती है और इन्हें छोटी दूरी की क्षेत्रीय मार्गों पर चलाया जाता है। इसके विपरीत भारतीय रेलवे ने हाइड्रोजन से चलने वाली इस 10 डिब्बों की ट्रेन तैयार की है जिसमें करीब 2600 यात्रियों के सफर करने की क्षमता है। यह रेलगाड़ी हाइड्रोजन फ्यूल सेल तकनीक से चलती है जो ट्रेनों को चलाने के लिए हाइड्रोजन को विद्युत में परिवर्तित करती है। ग्रीन हाइड्रोजन के उपयोग से कोयला आधारित ताप विद्युत संयंत्रों से बनने वाली बिजली पर निर्भरता कम होगी। इससे भारत को स्वच्छ और टिकाऊ परिवहन व्यवस्था विकसित करने में मदद मिलेगी। यात्रियों की सुरक्षा के लिए ट्रेन में आधुनिक बहुस्तरीय सुरक्षा प्रणाली लगाई गई है जो हाइड्रोजन रिसाव, आग की लपटों और धुएं का तुरंत पता लगा सकती है। जींद से आनंद कुमार की रिपोर्ट के साथ आकाशवाणी समाचार के लिए दीपेंद्र कुमार।
1: संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के पूर्व कार्यकारी निदेशक और नॉर्वे के पूर्व पर्यावरण मंत्री एरिक सोलहिम ने भारत की पहली हाइड्रोजन चालित रेलगाड़ी के शुभारंभ का स्वागत किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सोलहिम ने इसे भारत के लिए बड़ी उपलब्धि बताया। प्रधानमंत्री आज पंजाब के जालंधर से 5,470 करोड़ रुपए से अधिक लागत वाली रेल और सड़क बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। इन परियोजनाओं का उद्देश्य क्षेत्र में संपर्क व्यवस्था को मजबूत करना, यात्रियों की सुविधाएं बढ़ाना और आर्थिक विकास को गति देना है। प्रधानमंत्री आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से देश भर के 75 पुनर्विकसित अमृत रेलवे स्टेशनों का भी उद्घाटन करेंगे। इनमें केरलम के 6 रेलवे स्टेशन भी शामिल हैं। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsoneair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। समुद्री प्रशासन महानिदेशालय डीजीएमए ने निर्देश दिया है कि अगले आदेश तक होर्मुज जलडमरु मध्य से होकर गुजरने वाले जहाजों पर भारतीय नाविकों की तैनाती न की जाए। इस संबंध में जहाज मालिकों, जहाज प्रबंधकों और भर्ती तथा नियुक्ति सेवा लाइसेंस प्राप्त

0: कंपनियों के लिए नया परामर्श जारी किया गया है।
1: यह परामर्श खाड़ी क्षेत्र में बिगड़ती सुरक्षा स्थिति और हाल के दिनों में व्यापारिक जहाजों पर हुए हमलों को देखते हुए जारी किया गया है। महानिदेशालय का कहना है कि इन घटनाओं से संघर्ष प्रभावित क्षेत्र में कार्यरत नाविकों और व्यापारिक जहाजों के लिए जोखिम काफी बढ़ गया है। समुद्री प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि भारतीय नाविकों की सुरक्षा, संरक्षा और कल्याण के साथ साथ भारतीय जहाजों की सुरक्षा उसकी सर्वोच्च प्राथमिकता है। आपातकालीन स्थिति में महानिदेशालय ने सभी नाविकों और जहाजों से महानिदेशालय संचार केंद्र या भारतीय नौसेना के सूचना संलयन केंद्र हिंद महासागर क्षेत्र से तत्काल संपर्क करने की सलाह दी है। दीपेंद्र की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से जागृति शर्मा।
0: गृह मंत्री अमित शाह आज रात 3 दिन के दौरे पर पश्चिम बंगाल पहुंचेंगे। श्री शाह कल राज्य के जुमागाज के सीमा चौक स्थित सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ की 18वीं बटालियन से मिलेंगे और प्रहरी सम्मेलन को संबोधित करेंगे। वे वृक्षारोपण अभियान में भाग लेंगे तथा कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। एक रिपोर्ट।
2: केंद्रीय गृह मंत्री सिलीगुड़ी स्थित उत्तर कन्या में कई उच्च स्तरीय बैठकों का अध्यक्षता करेंगे। इन बैठकों में विभिन्न प्रशासनिक विषय, पश्चिम बंगाल में नए आपराधिक कानूनों का कार्यान्वयन तथा जन्म मृत्यु पंजीकरण की स्थिति की समीक्षा की जाएगी। शाम को वह कलकत्ता के लिए रवाना होंगे। रविवार श्री शाह पश्चिम बंगाल के कानून व्यवस्था की स्थिति की समीक्षा के लिए उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करेंगे। इसके अलावा वह कलकत्ता में राष्ट्रीय पुस्तकालय में नवनिर्मित वर्ल्ड म्यूजियम का उद्घाटन करेंगे। बाद में वह अमूल बंगाल डायरी का आधारशिला रखेंगे। संदीप दास गुप्ता, आकाशवाणी न्यूज, कोलकाता।
0: संसद के मानसून सत्र से पहले सरकार ने इस रविवार को सर्वदलीय बैठक बुलाई है। बैठक के दौरान सरकार संसद के दोनों सदनों को सुचारू रूप से चलाने के लिए सभी राजनीतिक दलों से सहयोग मांगेगी। मॉनसून सत्र 20 जुलाई से 13 अगस्त तक चलेगा। सत्र के दौरान कई महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा और उन्हें पारित करने का कार्यक्रम है। भारत का सबसे बड़ा वैश्विक वस्त्र सम्मेलन भारत टेक्स 2026 आज नई दिल्ली में संपन्न हुआ। इस सम्मेलन में वस्त्र निर्माण, उनकी आदान प्रदान, नवाचार और निवेश के लिए एक प्रमुख वैश्विक गंतव्य के रूप में देश की स्थिति को और मजबूत किया गया है। 4 दिवसीय सम्मेलन का उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय साझेदारियों को मजबूत करना, व्यापार और निवेश को बढ़ावा देना तथा संपूर्ण वस्त्र मूल्य श्रृंखला को एक मंच पर प्रदर्शित करना था। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 19 जुलाई से मोल्दोवा, उत्तरी मैसेडोनिया और रोमानिया की राजकीय यात्रा पर जाएंगी। ये किसी भी भारतीय राष्ट्रपति की इन देशों की पहली यात्रा होगी। विदेश मंत्रालय के अनुसार ये यात्रा इन देशों के साथ द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने और पूर्वी यूरोप क्षेत्र के साथ सहयोग को नई गति देने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। एक रिपोर्ट।
3: राष्ट्रपति मुर्मू 20 जुलाई को मोल्दोवा पहुंचेंगी, जहां वे राष्ट्रपति माया सैंडू से द्विपक्षीय वार्ता के अलावा संसद के अध्यक्ष इगोर ग्रोसू से मुलाकात कर व्यापार मंच को संबोधित करेंगी। राष्ट्रपति 21 जुलाई को उत्तरी मैसेडोनिया जाएंगी, जहां वे राष्ट्रपति गोर्डोना सिल्जनवोस्का दावकोवा, क्रिस्टिजन मिकोस्की और विधानसभा अध्यक्ष से मुलाकात करेंगी। राष्ट्रपति उत्तरी मैसेडोनिया की संसद और भारत उत्तरी मैसेडोनिया व्यापार मंच को भी संबोधित करेंगी। राष्ट्रपति मुर्मू 23 जुलाई से 2 दिवसीय रोमानिया यात्रा पर रहेंगी। इस दौरान वे राष्ट्रपति निकोसोर डैंस सहित वहां के शीर्ष नेताओं से मुलाकात करेंगी। प्रिया की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से शक्ति सिंह।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। यूरोपीय संघ ने पाकिस्तान में मानवाधिकारों की स्थिति पर गंभीर चिंता व्यक्त की है। संघ ने पाकिस्तान से कहा है कि व्यापारिक लाभ पाने के लिए उसे अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबद्धताओं का पालन करना होगा। संघ ने कहा है कि जनरलाइज्ड स्कीम ऑफ प्रेफरेंसेस प्लस के अंतर्गत पाकिस्तान को व्यापार लाभ 2027 से संशोधित GSP ढांचे के तहत अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबद्धताओं के अनुपालन पर निर्भर करेगी। ये टिप्पणियां यूरोपीय आयोग और विदेश मामलों तथा सुरक्षा नीति के लिए यूरोपीय संघ के उच्च प्रतिनिधि द्वारा तैयार की गई 2023-2025 अवधि की नवीनतम संयुक्त निगरानी रिपोर्ट में की गई है। रिपोर्ट में कहा गया है कि अल्पसंख्यकों को अब भी भेदभाव, व्यक्तिगत हमलों, भीड़ हिंसा और पूजा स्थलों को नुकसान जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। गिलगित बाल्टिस्तान विधानसभा ने सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव पारित किया है। इसमें पाकिस्तान की संघीय सरकार से पहाड़ी क्षेत्र के लोगों को अस्थायी प्रांतीय दर्जा और संवैधानिक तथा राजनीतिक अधिकार प्रदान करने का अनुरोध किया गया है।
1: दोनों

0: पक्षों के समर्थन से पारित ये प्रस्ताव कल सत्र के दौरान सांसद जलाल अली शाह ने पेश किया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चीन पर अमेरिकी चुनावों में हस्तक्षेप करने के लिए एक व्यापक अभियान चलाने का आरोप लगाया है। राष्ट्रपति ट्रंप ने व्हाइट हाउस से राष्ट्रीय टेलीविजन पर अपने संबोधन में चुनाव सुरक्षा से संबंधित खुफिया रिकॉर्ड को तत्काल सार्वजनिक करने की घोषणा की। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज 1% की वृद्धि दर्ज की गई। ताजा समाचार मिलने तक सेंसेक्स 771 अंक बढ़कर 77,957 पर, जबकि निफ्टी 195 अंक की बढ़त के साथ 24,268 पर कारोबार कर रहा था। मौसम विभाग ने आज अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय और ओडिशा के कुछ भागों में तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। बिहार, छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश, झारखंड, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा, उत्तराखंड, विदर्भ, पश्चिम बंगाल और सिक्किम के कुछ हिस्सों में भी आज मध्यम से तेज बारिश की संभावना है। दो बार के ओलंपिक पदक विजेता पीवी सिंधु जापान ओपन बैडमिंटन के सेमीफाइनल में पहुंच गई हैं। सिंधु को जापान की पूर्व विश्व चैंपियन नोजोमी ओकुहारा के क्वार्टर फाइनल से हटने के बाद वॉकओवर मिला। क्वार्टर फाइनल मैच शुरू होने से पहले ही रद्द कर दिया गया। सेमीफाइनल में सिंधु का मुकाबला चीन की विश्व नंबर 4 चेन युफेई से होगा। ओडिशा के पुरी में भगवान जगन्नाथ की विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा आज एक महत्वपूर्ण आध्यात्मिक पड़ाव पर पहुंच गई। भगवान बलभद्र, देवी सुभद्रा और भगवान जगन्नाथ के भव्य रथ ग्रैंड रोड पर अपनी औपचारिक यात्रा पूरी करते हुए श्री गुंडीचा मंदिर के निकट स्थित पवित्र स्थल शारदाबली पहुंच गए हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरियाणा के जींद में भारत की पहली हाइड्रोजन रेलगाड़ी को रवाना किया। 14,000 करोड़ रुपए से अधिक के विभिन्न विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। समुद्री प्रशासन महानिदेशालय ने जहाज मालिकों को हुर्मुज जलडमरू मध्य से गुजरने वाले जहाजों पर भारतीय नाविकों की तैनाती न करने के निर्देश दिए। यूरोपीय संघ ने पाकिस्तान में मानवाधिकारों की स्थिति पर गंभीर चिंता व्यक्त करते हुए कहा, व्यापारिक लाभ पाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबद्धताओं का पालन करें। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय और उड़ीसा के कुछ हिस्सों में आज तेज बारिश का अनुमान और भारत की पीवी सिंधु जापान ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में पहुंची। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: ये विविध भारती है, राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। प्रस्तुत है कार्यक्रम सदाबहार नगमे। इस कार्यक्रम में आप सभी सुनने वालों का तहे दिल से स्वागत है।

0: ஜகுமக காட்டவேரே ஜூம்லையோ மனமேரே டிக டிக டிக சச்சே டிக டிக டிக சச்சே டிக டிக டிக சச்சே டிக டிக டிக फिल्म काला बाजार का गीत था ये, आवाज आशा भोसले की थी, शब्दकार शैलेंद्र थे और धुन सचिन देव बर्मन की थी। ये आवाजें लता मंगेशकर और साथियों की फिल्म का नाम है जिस देश में गंगा बहती है। गीतकार हसरत जयपुरी हैं, संगीतकार शंकर जयकिशन हैं।
1: ओ मैंने प्यार किया, ओए होए क्या जुर्म किया, ओ मैंने प्यार किया, ओए होए क्या जुर्म किया। सुनख का रंग हो गया गुलाबी गुलाबी, हाय हाय हाय दिल की हालत शराबी शराबी। सुनख का रंग हो गया गुलाबी गुलाबी।

0: हिंदी सिनेमा की कुछ कल्ट फिल्में उनके नाम पर हैं, स्पर्श, कथा, दिशा और चश्मे पर दूर।
1: नूरा ने कहा कि देखो, अब सिर्फ हम नौजवान तीनों दिखा रहे हैं, सिर्फ कॉलेज के युवक नहीं, उनके माँ बाप भी आए, उनके चाचा चाची आए, एक दादी माँ डाली, बाप डाला, एक भाई डाला, वगैरह वगैरह, एक पान वाला डाला। सईद को पकड़ा लिया और उसने कहा फिर मुझे, वी हैव टू गो टू जामा मस्जिद, पुरानी दिल्ली जाना पड़ेगा। मैंने कहा पुरानी दिल्ली क्या करोगे जाके, पान वाले का अगर मुझे करना है रोल तो मुझे देखना नहीं चाहिए पान वाले वगैरह। तो मैंने कहा ये नसीर के बाद ये एक
2: और आ गया।
3: जल्दी है बुलबुल, कोई और कर्जेदार लग गया तेरे पीछे क्या?
4: अरे ललन मियां आप काट देना रास्ता, अब मेरा काम नहीं होगा।
0: दास्तान सई परांजपे की, उजाले उनकी यादों के, 19 जुलाई से 9 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: वैसा ही करेंगे हम जैसा तुझे चाहिए पैसा हमें चाहिए
1: वैसा ही करेंगे हम जैसा तुझे चाहिए पैसा हमें चाहिए
2: फल तेरे जो देंगे
1: खेत तेरे खोएंगे
2: और तेरे हाँकेंगे
1: बोझ तेरा ढोएंगे
2: पैसा हमें चाहिए
1: पैसा ही करेंगे हम कैसा तुझे चाहिए पैसा हमें चाहिए
3: पैसा हमें दे दे राजा धन तेरे

0: जिस तरह इंसान का नसीब मोहब्बत से संवरता है, ऐसे ही फिल्मी गीतों की किस्मत चमकती है चाहने वालों के प्यार से।
1: नसीब इंसान का।
0: मगर कुछ गीत बेहतरीन होकर भी गुम हो जाते हैं समय के अंधेरी गलियारों में।

0: ऐसे ही नायाब गीतों का कार्यक्रम
1: अनमोल यादें,
0: जाने माने फिल्म पत्रकार राजीव विजयकर के साथ
1: अनमोल यादें।
0: सुनना न भूलिए हर शुक्रवार शाम 7:45 पर अनमोल यादें, देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर। श्रोताओं, इससे पहले आप सुन रहे थे लता मंगेशकर की आवाज में फिल्म गर्लफ्रेंड का गीत। गीतकार साहिर लुधियानवी थे और संगीत दिया था हेमंत कुमार ने। और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम का ये अगला गीत।

फिल्म का नाम है चांद मेरे आजा, आवाजी लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की, गीतकार आई एस कपूर हैं और संगीत चित्रगुप्त का है।

0: ये आवाज थी लता मंगेशकर की और फिल्म का नाम था चांद मेरे आजा। जिस तरह इंसान का नसीब मोहब्बत से संवरता है, ऐसे ही फिल्मी गीतों की किस्मत चमकती है चाहने वालों के प्यार से।
1: नसीब इंसान का,
0: मगर कुछ गीत बेहतरीन होकर भी गुम हो जाते हैं समय के अंधेरी गलियारों में।

0: ऐसे ही नायाब गीतों का कार्यक्रम
1: अनमोल यादें,
0: जाने माने फिल्म पत्रकार राजीव विजयकर के साथ
1: अनमोल यादें
0: सुनना न भूलिए हर शुक्रवार शाम 7:45 पर अनमोल यादें, देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर। कार्यक्रम की अगली पेशकश इकबाल कुरैशी का संगीत, राजेंद्र कृष्ण के बोल, स्वर लता मंगेशकर का और फिल्म बिंदिया।

एक पल जुदा रहे तो मेरा प्यार एक है। गुजर गए जमाने इतना ना सता के कोई जाने। ओ दीवाने आ

है दिल को तेरी जुस्त जुस्त तू आ किसी बहाने इतना नाचता कि कोई जाने ओ दीवानी।

0: जानी मानी लेखिका और निर्देशिका सीमा कपूर से एक मुलाकात।
1: क्या होता है जब राइटर एक चीज लिखता है तो उसका एक ख्वाब होता है कि इसको मैं जीवंत कैसे करूं। अब इसको कलाकारों के साथ पीछे के पेड़, जंगल, पहाड़, झरने, इनको जीवंत करना है आपको, तो फिर आप निर्देशक बनना चाहते हैं और सारी लिमिटेशंस के साथ आप उन चीजों को सेलुलॉइड पे उकेरते हैं पेंटिंग की तरह।
0: जरूर सुनिएगा ये दिलचस्प बातचीत बॉम्बे टॉकीज में 18 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर। अपने देश में बढ़ रही है यूरिन की समस्या, लोग परेशान हैं प्रोस्टेट की बीमारी से, जरूरी है सजगता और सचेत रहना।
2: यंग लोगों में जो होती है प्रॉब्लम, वो ज्यादा करके अर्ज इनकॉन्टिनेंस है, जो कभी कभी स्ट्रेस के कारण, कभी कभी कैफीन वगैरह ज्यादा पदार्थ लेने के कारण, ये सब चीजों से वो कंट्रोल नहीं कर सकते, जो काफी हद तक दवाई से कंट्रोल में आ सकता है, जिसे हम अर्ज इनकॉन्टिनेंस कहते हैं।
0: यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर उमेश ओझा चर्चा करेंगे प्रोस्टेट और यूरिन से जुड़ी तमाम बीमारियों पर। तो सुनिए सेहतनामा 20 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: सदाबहार नगमे कार्यक्रम की आखिरी पेशकश, रोशन का संगीत, प्रेम धवन की रचना, आवाज आशु भोसले की, और फिल्म का नाम वल्लाह क्या बात है।

अभी आप सुन रहे थे आशा भोसले की आवाज में फिल्म वल्लाह क्या बात है का ये गीत। और इस गीत के साथ ही आज का सदाबहार नगमे कार्यक्रम अब संपन्न होता है।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन कार्यक्रम हेलो सहेली के लिए कीजिए बस थोड़ा सा इंतजार।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती।
1: सखियों की दिल की जुबान। हेलो सहेली।

0: हेलो सहेली कार्यक्रम सुनने वाली सभी सखियों और श्रोताओं को आरती श्रीवास्तव का प्यार भरा नमस्कार। जब हो अपनों का साथ तो मजबूत रहते हैं हाथ, जीवन की हर कठिन राह आसान लगने लगती है जब परिवार, मित्र और शुभ चिंतकों का साथ मिलता है। अपने केवल सुख के साथी नहीं होते, बल्कि कठिन समय में हमारा सबसे बड़ा संबल बनते हैं। उनका विश्वास, स्नेह और प्रोत्साहन हमें हर चुनौती का सामना करने का साहस देता है। जब मन निराश होता है, तब अपनों का एक भरोसेमंद हाथ हमें फिर से आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। यही अपनापन रिश्तों को मजबूत बनाता है और जीवन में आत्मविश्वास का संचार करता है। इसलिए हमें अपने रिश्तों को प्रेम, सम्मान और विश्वास से सजो कर रखना चाहिए, क्योंकि अपनों का साथ ही जीवन की सबसे बड़ी शक्ति और सबसे बड़ी पूंजी है। चलिए देखें आज कौन से शहर से कौन सी हमारी सखी हमसे अपनी बातें करने वाली है। तो खत्म हुआ इंतजार, देखते हैं कौन और कहां से है आज की हमारी पहली कॉलर। हेलो सहेली।
1: हाँ जी, हेलो सहेली से बोल रहे हैं। मैं मनीतू बोल रही हूँ जोधपुर से मैडम।
0: अच्छा, आप जोधपुर से बोल रही हैं, यानी कि राजस्थान से, है ना?
1: हाँ जी मैडम जी।
0: आपने बताया जोधपुर से रहती हैं, तो वहाँ पे क्या बहुत ही प्रसिद्ध चीज है, पहले तो ये बताइए। हम
1: जोधपुर का तो मिर्ची बड़ा बहुत फेमस है।
0: मिर्ची बड़ा यानी बहुत अच्छी चीज, मुझे बहुत पसंद है।
1: और मैडम बारिश के मौसम में आप खाओगे ना, जब वहाँ पे खड़े खड़े, तो आप सोचोगे एक नहीं मैं चार खाऊंगी। हमारे
0: ये तो होता है, ये तो होता है। तो और ये तो चलिए खाने की चीज हो गई, वहाँ पे देखने लायक कौन सी चीज है?
1: मैम आप आइए मंडोर उद्यान देखिए, यहाँ का हमारे देखिए उम्मेद भवन जिसको बोलते हैं।
0: अच्छा हाँ, उम्मेद भवन बहुत सुना है इसके बारे में।
1: बहुत से सेलिब्रिटीज की यहाँ पे शादियां ऑर्गेनाइज होती है।
0: तब तो आपके जोधपुर में खूब चहल पहल होती रहती होगी सेलिब्रिटीज की, तो अच्छा लगता होगा।
1: बिल्कुल बिल्कुल, अभी हमारा नया एयरपोर्ट बनवाया गया है, रिनोवेशन हुआ है।
0: अरे वाह, बहुत बढ़िया बात है। तो यानी आने वाली ऐसी जगह है जिसको देखना चाहिए जाके जरूर, है ना?
1: बिल्कुल
0: बिल्कुल। और बताइए आपके घर में कौन कौन है?
1: घर में मैम मेरे मम्मी है, मेरे पापा है, भाई है, भाभी है और मेरे दो भतीजियां हैं।
0: अरे वाह, तब तो भतीजियों के साथ खूब मस्ती चलती होगी, है ना?
1: बिल्कुल, उनका नाम ले।
0: हाँ, बिल्कुल बिल्कुल लीजिए।
1: एक बड़ी वाली हर्षिता और छोटी वाली पुलकिता।
0: अरे
1: पुलकिता का आज 7th मंथ का बर्थडे है।
0: अरे वाह, बहुत बहुत बधाइयां छोटी सी पुलकिता को, बहुत प्यारा नाम है, बहुत प्यारा नाम है, हर्षिता का भी और पुलकिता का भी। बहुत
1: दादा ने नाम रखे हैं, हर्षिता नाम रखा था।
0: हाँ जी,
1: तब सेकंड हुई है।
0: अच्छा,
1: तो पुलकिता रखेंगे
0: वही मतलब वही है, हर्ष उत्तर और पुलकित हो ना। अच्छा, बहुत अच्छा नाम रखा है। और बताइए आपको क्या करना अच्छा लगता है, ये बताइए मुझे, आपके शौक क्या है?
1: मैं तो घर का काम करती हूँ।
0: घर के काम तो हम सभी करते हैं, लेकिन कुछ एक शौक होता है ना कि हम ये करें, इसमें हमें बहुत मन लगता है करने में, वो कौन सा काम है? वो डांस भी हो सकता है।
1: जॉब करती हूँ।
0: अच्छा, सरकारी नौकर। अरे क्या बात है, आप सरकारी नौकरी
1: में? ऑफिसर हूँ मैं।
0: बहुत बहुत बढ़िया बात है। तो सरकारी नौकरी में भी हमारे कुछ अपने जो शौक होते हैं, जैसे कोई डांस किसी को पसंद होता है, किसी को गाना गाना पसंद होता है, किसी बहुत अलग अलग चीजें होती है, किसी को खेल पसंद होता है, स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा होता है। तो आपको क्या पसंद है?
1: मैम गाना तो मेरे को तो कोई आता नहीं, मैं रेडियो जरूर सुनती हूँ, साथ साथ वैसे गा लेते हैं, पर वो वाली सिंगिंग नहीं। लेकिन डांस का है तो वो शौक होता है, कभी कभी कर लेते हैं करके
0: जब थक के आते हैं आप, है ना, जॉब से। ये अच्छी चीज है, ये इस तरीके की जो चीजें होती है ना, वो हमें थोड़ा तरोताजा कर देती हैं थोड़ी देर के लिए, है ना?
1: हम जो
0: बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि थक के आते हैं वहां पे, जो जॉब की परेशानियां होती हैं वो सब चीजों से हम जब जूझ के आते हैं ना, तो एक कुछ थोड़े से जो पल होते हैं ना, वो हमें ऐसे होने चाहिए जो बिल्कुल हम उसमें अपने मन का काम करें, है ना?
1: बिल्कुल मैडम।
0: तो बताइए आज आप कौन सा गाना सुनना चाहती हैं?
1: बारिश का मौसम है, मॉनसून सीजन है, तो मेघा रे मेघा रे।
0: अरे वाह, गाना सुना है आपने, बहुत बढ़िया गाना है। तो सुनवाते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली।
0: तो बताइए आप कौन बोल रही हैं और कौन से शहर से बोल रही हैं?
1: मैं केकाशा शेख बोल रही हूँ, गुजरात सूरत से बात कर रही हूँ मैं।
0: अच्छा, सूरत से बोल रही हैं आप
1: जी।
0: तो बताइए आपको क्या करना अच्छा लगता है? पहले तो सूरत के बारे में बताइए कि वहाँ पे क्या ऐसी चीज है जो हम देखने आ सकते हैं वहाँ आपके पास।
1: सूरत में कपड़े बहुत अच्छे मिलते हैं।
0: अरे वाह,
1: बहुत अच्छे अच्छे मिलते हैं।
0: अच्छा, यहाँ वहाँ के कपड़े मशहूर हैं बहुत ज्यादा, है ना?
1: वहाँ के कपड़े बहुत मशहूर है।
0: अच्छा।
1: सब दूर दूर से हमारे एरिया में कपड़े खरीदने आते हैं।
0: अरे क्या बात बताई आपने, तो बहुत अच्छी चीज हमें पता चली है।
1: वो तो सलमा मैडम बेचते हैं ना, नए नए आए, उनकी आवाज मुझे बहुत अच्छी लगती है।
0: बहुत अच्छी बात है।
1: नेहा जी की, फिर पूजा जी की, फिर आपकी, ममता दीदी की, इन सबकी आवाज बहुत अच्छी लगती है मुझे। बस सब तक पहुँचा देगा।
0: बिल्कुल, आप पहुंच गई सब तक आपकी आवाज। तो आप ये बताइए कि आपको खाने में क्या अच्छा लगता है सबसे ज्यादा?
1: मैडम मैं तो खाने में बिरयानी है, किसी से खा लेती हूँ बिरयानी, दाल पुलाव, खिचड़ा। खिचड़ा हमारे में बहुत बनता है।
0: अच्छा अच्छा, तो चलिए और बताइए आपके घर में कौन कौन है?
1: मेरे घर में तो मैं हूँ, मेरी बहन है, मेरी मम्मी है, मेरा अब्बू है।
0: अरे वाह, तो सब लोग साथ में रहते हैं?
1: जी, मेरी तो शादी हुई है, मेरी दीदी की हो गई है।
0: अच्छा अच्छा, आपको कौन सा गीत सुनना है?
1: हेलो सहेली में मैं वो गाना पसंद करती हूँ, बॉडी गार्ड का।
0: अच्छा अच्छा, आपको बॉडी गार्ड का गाना सुनना
1: है? कहानी है मुश्किल।
0: अच्छा ठीक है, तो आपके पसंद का हम ये गीत सुनवाते हैं।

0: अंतराल के बाद आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने कार्यक्रम हेलो सहेली में। तो देखते हैं कौन और कहां से है हमारी सखी जिनका कॉल लगा है अभी अभी। हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली।
0: तो बताइए आप पहले तो अपना नाम और कौन से शहर से बोल रही हैं ये बताइए।
1: आरती जी, आप तो हमारे बेटी का नाम भी आरती ही है।
0: अच्छा।
1: और वो आपका प्रोग्राम बहुत ही सुनती रहती है।
0: तो अच्छा लगता है।
1: बहुत अच्छा लगता है, 4 बजे तक सुनती रहती है और बोलती है मेरा नाम आया से गाना आया। तो बहुत मजा आता है उसको। अच्छा। उसके लिए मुझे बोलती है कॉल लगा।
0: अच्छा, तो कितनी बड़ी है आपकी बेटी?
1: मेरी बेटी मन बुद्धि की है ना, इसके लिए वो चल नहीं पाती।
0: अच्छा।
1: थोड़ी मन बुद्धि की, अभी 30 साल की हुई, अभी इसकी बर्थडे हुई गई।
0: तो उसको बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं हमारी तरफ से। और हाँ। बताइए अब आपको मतलब क्या करना अच्छा लगता है अपनी बेटी के साथ? अब जब समय बिताती हैं तो किस तरह की दिनचर्या रहती है?
1: मेरा उसको तो क्या है कि नख जो है ना वो रंगों ना साइज भी उखड़ जाए ना तो नख पॉलिश रंगवा लेती। चूड़िया तो 40-50 चूड़िया पहनती है।
0: अच्छा, और तो अच्छा लगता है, तैयार होना अच्छा लगता है।
1: हाँ, उसको तैयार होना, कपड़ा 2 टाइम नहाना, खाना सब जो मांगे वो देना,
0: बहुत बहुत अच्छी बात है।
1: शरारत में हमारे पूरा दिन निकल जाता है।
0: नहीं, बहुत अच्छी बात है। बहुत अच्छी चीज है अपने अपने आप से प्यार करना, है ना? अपने आप से प्यार करना सबसे पहले जरूरी होता है। और बहुत अच्छी चीज है, वो सजती है, संवरती है, अपने आप को अच्छा महसूस करती है, बहुत जरूरी है ये।

0: है कि मेरा एक लड़का है बड़ा, और वो अभी शादी हुई, लड़की हुई, वो दूर रहता है, और अभी अभी एक मेरी लड़की की शादी हुई प्रियंका,
1: अच्छा,
0: आजीवा रोड पे, उससे
1: अच्छा, बहुत बहुत आपको
0: छोटी
1: बधाइयाँ।
0: थी।
1: और आपकी मतलब बेटी को ये तैयार होना अच्छा लगता है, उसे ड्राइंग करना अच्छा लगता है, कुछ ऐसी बनाना या कुछ इस तरीके की चीजें करना?
0: ये सब नहीं, उसको तो क्या है कि वो गाना रेडिया वो सब
1: अच्छा
0: बहुत पहले से सुनती रहती है, और सलमान खान बहुत अच्छा लगता
1: हाँ,
0: है, तो तेरे
1: अच्छा
0: नाम का गीत सुनती है, वो
1: अरे वाह,
0: रोती है ना, तो तेरे नाम का गीत सुना देती है ना, तो चुप हो जाती
1: अच्छा, यानी उसे
0: है।
1: संगीत पसंद है। संगीत पता है आपको, एक बहुत अच्छी थेरेपी भी है।
0: हाँ, और आपका जो प्रोग्राम आता है ना, वो सुनते हैं, उसमें से कुछ सीखना मिलता है, कोई खाना बनाना सीख लेते नए, कुछ बातें अच्छी सुनते तो किसी को बताते तो कोई खुश हो जाती।
1: बहुत अच्छी चीज है ये, बहुत ये समझ लीजिए बहुत अच्छी बात है हमारे लिए कि आप तक हम पहुंच पाए, आपको अच्छा लगा जो हमारा प्रयास है, बहुत बहुत धन्यवाद उसके लिए। अब बताइए आप कौन सा गीत सुनना चाहती हैं जो आरती को पसंद है?
0: आरती को पसंद है, अभी अच्छा कौन है,
1: आपकी पसंद का ये आरती को पसंद का ये गीत सुनाते हैं आपको, आंखें भरी भरी।

0: हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली
0: तो आप कौन बोल रही हैं और कौन से शहर से बोल रही हैं?
1: जी, मैं बोल रही हूँ कश्मीर से, डिस्ट्रिक्ट बारामूला से बोल रही हूँ।
0: अरे वाह,
1: सकीना है मेरा नाम। सकीना जी।
0: अच्छा, सकीना जी बोल रही हैं और बारामूला
1: जी
0: कश्मीर से बोल रही हैं। बहुत अच्छी बात है। तो बताइए, अब
1: मैं
0: अपने बारे में थोड़ा सा, आप क्या करती हैं और आपके घर में कौन कौन है?
1: जी मैं घर में काम कर रही हूँ, पश्मीना का काम कर रही हूँ।
0: अरे वाह, पश्मीना का बहुत मशहूर है कश्मीर का पश्मीना। एकदम नाम जुड़ा हुआ है कश्मीर के साथ में ना, पश्मीना का।
1: जी जी जी मैम
0: जी, तो आपके घर में कौन कौन है?
1: जी, मेरे घर में मेरी फैमिली है, मेरे 3 बेटे हैं, तो एक बेटा है, 3 बेटियां हैं।
0: अच्छा, बहुत अच्छी बात है। तो बताइए, बच्चे छोटे हैं आपके कि बड़े? छोटे
1: नहीं, अभी छोटे हैं
0: हैं, तो यानी आपको पूरा टाइम उनके साथ में लगना पड़ता होगा, है ना?
1: जी मैम।

0: आपको क्या करना अच्छा लगता है जब आपके बच्चे स्कूल गए होते हैं, मतलब आप जब अकेली होती हैं, आप कुछ कर नहीं रही होती हैं, तो आप क्या करती हैं अपने खाली समय में, जब कोई काम सब निपट जाता है घर का?
1: जब खाली में रहती हूँ ना, बस ये रेडियो सुनती हूँ और अपना काम करती हूँ। और क्या, ये पश्मीना से ज्यादा हम रखते हैं ना, घर का काम खत्म करके बस यही करते हैं।
0: नहीं, क्योंकि इसमें तो बहुत टाइम लगता होगा। अच्छा, अब इसे पश्मीना का क्या मतलब, शॉल बनाती हैं कि कोई ऊनी कपड़े?
1: शॉल बनाते हैं,
0: शॉल बनाती हैं। बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है ये पश्मीना का शॉल तो, और वहां तो खूब अच्छे अच्छे तरीके के मिलते होंगे। अच्छा, पश्मीना के बहुत किस्में होती हैं कि एक ही मतलब?
1: जी जी मैम, बहुत किस्में होती हैं पश्मीना की।
0: अच्छा, तो आप सब तरह का बना लेती हैं?
1: जी, दो
0: अच्छा,
1: तीन किस्म के बनाती हैं।
0: अच्छा, तो ये आप मतलब अपने घर से ही उसको सेल करती हैं या फिर आप कहीं देती हैं कि इसको?
1: नहीं, हम किसी और के जरिए ये काम करते हैं।
0: अच्छा, तो बहुत अच्छी चीज है, आप ये अपने अपने हुनर का इस्तेमाल कर रही हैं जो है ना,
1: जी मैम,
0: बहुत जरूरी है। अगर आपको कुछ काम आता है तो उसका इस्तेमाल करना चाहिए ना, उसको आप अपने जैसे कि हम अपने आप को थोड़ा सा और अच्छा कर सकें, है ना, थोड़ी सी मदद कर सकें, तो बहुत अच्छी चीज है आप जो कर रही हैं। घर में आप रह के इस तरीके से अपने हुनर का इस्तेमाल कर रही हैं। तो बताइए, आज आपको कौन सा गीत सुनना है?
1: जी, मैं दिल वाले फिल्म है ना, उस तक का कोई भी गीत मैं सुनना चाहती हूँ।
0: दिल वाले फिल्म का कोई भी गीत सुनवा दें आपको, है ना?
1: जी मैम।
0: चलिए, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा हमें, तो सुनाते हैं आपको आपकी पसंद का ये गीत।

0: हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली, नमस्ते।
0: नमस्ते। आप कौन बोल रही हैं और कौन से शहर से बोल रही हैं?
1: हम रेखा मुखर्जी, वेस्ट बंगाल, मुर्शिदाबाद खाटी से बोल रहे हैं।
0: तो बंगाल में सबसे ज्यादा देखने लायक क्या चीज है जो हम वहां पर आकर देख सकते हैं?
1: यहाँ पर बहुत कुछ मिल सकते हैं जी।
0: जी बताइए।
1: यहाँ पर नवाब पैलेस है,
0: हाँ
1: रसगुल्ला भी है, यहाँ का
0: हाँ
1: मुर्शिदाबाद सिल्क भी विख्यात है,
0: अच्छा।
1: फेमस है। यहाँ का आम भी फेमस है, फेमस
0: अरे हाँ, मुर्शिदाबाद का आम और सिल्क।
1: है।
0: बहुत बहुत ये बहुत अच्छी बात बताई आपने। और ये बताइए कि आपको क्या करना चाहते हैं आप?

0: हाउस वाइफ है या आप जॉब करती हैं?
1: हाँ जी, हम हाउस वाइफ है। हम लोग जो रेडियो में जो सुबह सकाल होता है ना, उसी में हम लोग मैसेज भेजते हैं। जब हम लोग को लाइव फोन में जब नहीं मिलते हैं तो हम लोग मैसेज भेजते हैं, स्टोरी पोएम लिख के भेजते हैं।
0: अरे वाह, आप लिखती भी हैं? आपको लिखने का शौक है?
1: लिखती भी है, इस बार भी हम भेजे।
0: अच्छा अच्छा।
1: घर में मेरा पेड़ पौधे लगी हुई है। मेरा घर में बहुत सारी चीजें है, जो पेड़ ओढ़ है फूल का, उसमें रात को रहते हैं, उन लोग को हम दाना देते हैं।
0: बहुत अच्छी बात है,
1: सबको दाना देते हैं हम।
0: अच्छा, तो आप इस चीज को बिल्कुल छोड़िएगा नहीं, आप लिखती रहिए, अच्छी अच्छी कहानियां लिखिए, पोएम लिखिए, कविताएं लिखिए, है ना। और बताइए, आज आप कौन सा गीत सुनना चाहती हैं?
1: संजम फिल्म का जू जू जू, जसोदा का नंदलाला, दीप की उजाला है।
0: ठीक है, तो सुनवाते हैं आपको आपकी पसंद का ये गीत।

जग झिलमिलाए, जू जू जू जू जू।

जब भी थी

अब कार्यक्रम हेलो सहेली में समय हो चला है एक अंतराल का, तो मिलते हैं इस अंतराल के बाद।

0: अंतराल के बाद एक बार फिर से आप सभी का प्यार भरा स्वागत करती हूँ मैं आरती श्रीवास्तव। जरा ध्यान से सुनिए, ये फोन आपके संदेशों को हम तक पहुँचाने के लिए मीठी सी धुन सुना रहा है। हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली।
0: तो बताइए पहले अपना नाम और फिर अपने शहर का।

0: सुंदर शहर बनाए, डगर डगर पर वृक्ष लगाए।
1: अरे वाह, क्या बात है, क्या शुरुआत करी है आपने, बहुत अच्छी बात कही है, एक मैसेज दिया आपने ना।
0: हसीना भी मंसूरी बोल रही, फालताना का इंदौर से।
1: इंदौर से बोल रही है आप, हसीना मंसूरी? हाँ
0: जी जी,
1: बहुत अच्छा लगा। बताइए कि आपको क्या पसंद है, मुझे लगता है ना आपको कई सारी चीजें पसंद होंगी करनी है ना। सबसे पहले तो आपको बातें करनी पसंद होंगी, जहाँ तक मुझे लगता है।
0: जी बातें बहुत अच्छे करते हैं मैडम, और गाना भी सुनने का बहुत शौक, रेडियो चलता रहता दिन भर, मतलब कम से कम 2002 से तो हम रेडियो रेगुलर सुनते हैं, कभी मिस नहीं करते मैडम।
1: अच्छा।
0: और रेडियो मतलब खाना खाना छोड़ देते हैं मगर फोन जरूर लगाते हैं।
1: तो आपको कौन से प्रोग्राम पसंद है सबसे ज्यादा?
0: सबसे ज्यादा तो ये हेलो सहेली है, और पहले तो सच्ची सहेली आता तो उसमें लेटर भी शामिल किया करते मैडम, अगर वो लिखते थे अगर शामिल हो जाए तो बहुत अच्छा, क्योंकि हम लोग हमेशा भी लिखते थे उसमें, रिसेप्शन भी लिखते थे पहले, तो आप लोग बहुत शामिल भी करते थे, अच्छी अच्छी बातें लिखते थे हम लोग, पता नहीं ऐसा हो जाए तो और अच्छी बात रहेगी, सोने भी सुहागा हो जाएगा।
1: बिल्कुल बिल्कुल, आपकी बात सब तक पहुंच रही है। तो बताइए और क्या क्या करती हैं, आपको क्या पसंद है करना ये बताइए।
0: सिलाई करती हूँ मैडम मैं अधिकतर, तो ज्यादातर, और घर में काम भी, छुट्टी होती है तो घर में काम करना भी अच्छा लगता है,
1: ये तो बहुत जरूरी है,
0: बहुत अच्छा लगता है।
1: हाँ तो ये बताइए आप क्या क्या सिल लेती हैं?
0: ये गहने का काम करते हैं मैडम, जूट का होता है।
1: अच्छा अच्छा, तो इसमें आप क्या मतलब क्या करना होता है, क्या बनाती हैं आप?
0: इसमें मशीन से रिपेयरिंग होता है, नहीं होता मशीन से नहीं चलता तो फिर हाथ से रिपेयरिंग करते हैं मैडम।
1: अच्छा, आप हाथ से भी कर लेती हैं?
0: हाँ, इससे रफो होता है।
1: अच्छा अच्छा, तो बहुत ही मतलब आपके अंदर बहुत सारी काबिलियत है। बताइए आपको और क्या करना अच्छा लगता है?
0: सुनना अच्छा लगता है मैडम, आप लोगों से बात करना बहुत ज्यादा अच्छा लगता है।
1: कुछ गाना गाना नहीं अच्छा लगता आपको, आवाज से लग रहा मुझे?
0: गाना गाना अच्छा लगता ना मैडम, बताते हूँ।
1: देखा ना, मैंने आपकी आवाज से पहचान लिया।
0: जी जी, फिल्म का नाम है खून और अंगार, और मेरी फरमाइश भी यही, और गाने के बोल है दिल तेरा चुराएंगे अपना तुझे हम बनाएंगे, धीरे धीरे पास तेरे आएंगे, आके दूर से न जाएंगे। ये सुना दीजिए।
1: बिल्कुल बिल्कुल, तो सुनाते हैं आपके पसंद का ये गीत।

0: हेलो सहेली, आप कौन बोल रही हैं और किस शहर से बोल रही हैं?
1: हेलो सहेली, आप बड़ागांव जिले में ना सेंट्रल आकर बोल रहे हैं।
0: आप क्या करती हैं?
1: मैं 10th क्लास पढ़ती हूँ।
0: अच्छा, 10th में आप पढ़ाई कर रही हैं, तो कौन से विषय से आप पढ़ाई कर रही हैं? आपको कौन सा विषय सबसे ज्यादा अच्छा लगता है?
1: हमको सबसे अच्छा विज्ञान लगता है, मतलब
0: विज्ञान। अरे वाह, ये तो बहुत ही अच्छा विषय है। और बताइए, आपको क्या करना अच्छा लगता है? आपके आपके शौक क्या है? जो आप पढ़ाई के बाद आपका जो समय बचता है, तो उसमें आप क्या करना पसंद करती हैं?
1: मुझको मतलब मेरा शौक ये है कि मैं आगे चलकर डॉक्टर बन जाऊं।
0: डॉक्टर बनना है आपको? अरे वाह, बहुत अच्छी बात है भाई। ये तो कि आप लोगों की सेवा करना चाहती हैं, डॉक्टरी करना चाहती हैं। बताइए, आज आप कौन सा गीत सुनना चाहती हैं?
1: हम सभी सॉन्ग सुनना चाहते हैं, सलमान खान का।
0: तो सुनाते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली मैम, नमस्कार।
0: नमस्कार, तो बताइए आप कौन बोल रही हैं और कौन से शहर से बोल रही हैं?
1: मैं ग्राम बरसी पोस्ट अकेडमी जिला चंदौली से इंद्रप्रिया यादव बोल रही हूँ। आप बोल रही हैं आरती श्रीवास्तव।
0: पहचान लिया आपने। तो सबसे पहले बताइए आपको क्या करना पसंद है?
1: मुझे, मैं घर में रहती हूँ, थोड़ा घर का काम करती हूँ। मैम रेडियो के प्रोग्राम में सुनती हूँ, मैं ब्लाइंड हूँ।
0: अच्छा, तो प्रोग्राम सुनती हैं, तो आपको कौन सा प्रोग्राम सबसे ज्यादा पसंद है?
1: सभी प्रोग्राम अच्छा लगता है, और खासकर हमें सभी सहेली सुनना बहुत अच्छा लगता है। जब आप लोग बातें करते हैं और हंसते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है।
0: आपको बहुत अच्छी बात है, आपको सखी सहेली अच्छा लगता है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और बताइए आप, जैसे कि आप गाने सुनती हैं, तो आपको कैसे क्लासिकल गाने ज्यादा पसंद है या फिर आज के समय के?
1: नहीं, हर तरह के गीत पसंद है, नए हो पुराने हो, भक्ति हो या हिंदी हो, मुझे हर तरह के गीत पसंद है। और रेडियो सुनना मैं कभी नहीं छोड़ती हूँ, रेडियो से जो हमें कहीं से खुशी नहीं मिलती वो रेडियो से मिलती है।
0: ये तो सही बात है, अगर संगीत जो होता है ना वो एक दूसरे से बांध देता है ना, और साथ ही हमारे सारी परेशानियों को थोड़ी समय के लिए सही लिखे दूर कर देता है। और आप जो ये प्रोग्राम्स होते हैं, जैसे संगीत पे बेस्ड बहुत सारे प्रोग्राम है जो रागों के ऊपर होते हैं, क्लासिकल संगीत के प्रोग्राम है, वो सब भी आप सुनती हैं?
1: जी, मैं हर तरह के गीत पसंद है और गाते भी हैं थोड़ा सा रेडियो के साथ में।
0: अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी चीज है। गाना जब हम गाते हैं ना, तो सोचिए अपने अंदर के एकदम ऐसा लगता है ना कि अपने अंदर का भी जो भी चीजें हैं, जो भी हमारे अंदर तनाव था, जो परेशानियां थी, वो खत्म हो रही है, धीरे धीरे खत्म हो रही है, रिलैक्स हो जाते हैं ना एकदम, ऐसा लगता है ना?
1: जी,
0: तो आपको जो गाना सुनना है ना, वो आप गा के सुना दीजिए। बता दीजिए हमें।

0: हेलो सहेली,
1: हेलो सहेली
0: आप कौन बोल रही हैं और कौन से शहर से बोल रही हैं?
1: जी, मैं मीनू अग्रवाल बोल रही हूँ, मथुरा से। मैं
0: अच्छा, तो बताइए मीनू जी, आप क्या करती हैं? आपको क्या करना पसंद है?
1: घर में भी रहती हूँ और मैं घर पे ट्यूशन लेती हूँ, बच्चों को पढ़ाती हूँ। और बाकी का मेरा मेरा जो इंटरेस्ट है ना, वो जैसे कि पेंटिंग है ना,
0: हाँ,
1: और सबसे ज्यादा कुकिंग में है मुझे इंटरेस्ट।
0: अरे वाह, बहुत
1: तो
0: अच्छी
1: मुझे,
0: बात है।
1: हाँ, तरह तरह का खाना बनाना अच्छा लगता है
0: कौन कौन से तरीके के खाना बना लेती हैं आप?
1: जी। मैं वैसे तो अपना यही इंडियन फूड ही ज्यादा बनाती हूँ, और बाकी का, हाँ, बाकी का ये है कि और भी चीजें मेरे पे आती हैं, जैसे साउथ इंडियन डोसा, इडली, सांभर वगैरह, ये सब
0: अरे
1: चीजें।
0: वाह, क्या बात कर रही हैं आप! इतनी तरीके की चीजें आप बना लेती हैं घर में? तब
1: हाँ जी, बिल्कुल।
0: तो आपके फैमिली, आपके जो परिवार है, सब लोग आपसे बहुत खुश रहते होंगे, है ना? आप बना बना के
1: हाँ
0: अच्छी अच्छी
1: जी,
0: चीजें
1: कहते
0: खिलाती होंगी।
1: हैं ना, हाँ जी, कहते हैं ना कि इंसान जी का पहली पसंद होती है ना, घर में जो मेंबर्स होते हैं उनकी पहली पसंद होती है खाना। अगर उनको खाना हमने अच्छा दे दिया ना बना के, तो बस। मैंने अभी बताया था पेंटिंग कुकिंग वगैरह है, तो मैं
0: हाँ
1: पेंटिंग्स वगैरह बनाती हूँ और सेल भी होती है, ऐसी बात नहीं है मेरी पेंटिंग्स वगैरह।
0: बहुत ही, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। आप ड्राइंग कर लेती हैं, आप पेंटिंग बनाती हैं, आप खाने तरह तरीके की बना लेती हैं, बहुत
1: हाँ
0: अच्छी
1: जी,
0: बात है ये तो। और आप ऐसे ही बढ़िया बढ़िया चीजें बनाइए और किसी दिन हमें भी यहाँ बुलाइए, ताकि हम भी आए और आपने जो बताई चीजें उनका हम भी कुछ लुत्फ उठा सके। क्योंकि
1: अरे
0: बहुत
1: बिल्कुल।
0: अच्छी चीज है, आपको तरह तरह की चीजें करनी आती हैं। तो बताइए मीनू जी, आप कौन सा गीत सुनना पसंद करेंगी?
1: जी, मैं दो कलिया मूवी का गाना सुनना पसंद करूंगी, तुम्हारी नजर क्यों खपा हो गई।
0: अरे वाह, बहुत प्यारा सा गीत है। तो चलिए सुनवाते हैं आपको, आपकी पसंद का ये गीत।

तुम्हारी नजर क्यों खफा हो गई, खता बख्श दो गर खता हो गई, तुम्हारी नजर क्यों खफा

आज के हेलो सहेली कार्यक्रम का समय जैसे पंख लगाकर तेजी से निकल गया। आपकी इतनी प्यारी प्यारी बातों और सुरीले गीतों की पसंद ने तो हमें बांध ही लिया और पता भी नहीं चला कि कार्यक्रम अपनी समाप्ति के मोड़ पर आ गया। तो आज की हमारी मुलाकात बस इतनी, चलते चलते आपको जरूरी जानकारी दे देते हैं। आपकी कॉल्स की रिकॉर्डिंग प्रत्येक मंगलवार सुबह 11 बजे से 12 बजे तक की जाती है और आप हेलो सहेली कार्यक्रम में इन नंबर्स पर कॉल कर सकती हैं, जो है 4002-4662 और मुंबई का STD कोड है 022, यानी 4002-4662 और STD कोड है 022। अब दूसरा फोन नंबर भी नोट कर लीजिए, जो है 2867-0288 और मुंबई का STD कोड है 022, यानी 2867-0288 और मुंबई का STD कोड है 022। तो इन नंबर्स पर कॉल लगाने के लिए कीजिए बस अगले मंगलवार तक का इंतजार। और हाँ, एक बात और याद दिला दे, हेलो सहेली कार्यक्रम हर शुक्रवार को 3 बजे से 4 बजे तक प्रसारित होता है, तो आपसे आग्रह है कि सुनना भूलिएगा नहीं। और हमारी जिन भी सखियों की कॉल आज नहीं लग पाई वो बिल्कुल भी निराश नहीं हो, आप अगले मंगलवार को एक बार फिर से प्रयास कीजिएगा। और ध्यान रहे, लगातार किए जाने वाले प्रयास कभी न कभी कामयाब जरूर होते हैं और जिन सखियों का प्रयास आज सफल हो गया था उनसे भी हमारा प्यार भरा आग्रह है कि आप अगले 2 महीनों तक कॉल ना लगाएं और अपनी सखियों को अवसर दें अपनी बात कहने का। तो आपको बता दें कि आज का हेलो सहेली का सफर तय किया आपने अपनी सखी आरती श्रीवास्तव के साथ। इस सफर में हमें सहयोग मिला रिकॉर्डिंग इंजीनियर HR पाटले जी का, साथ ही संपादन में सहयोगी बनी है नम्रता टिकोले और विविध भारती की ओर से हेलो सहेली की प्रस्तुतकर्ता हैं अनुश्री पाठक। तो अब आरती श्रीवास्तव को दीजिए अनुमति। नमस्कार सखियों के दिल की सुबह, हेलो सहेली।

0: देश की सुरीली धड़कन विविध भारती कार्यक्रम गीतों भरी कहानी, बस थोड़ी ही देर के बाद। गीतों भरी कहानी इस श्रृंखला में आज हम आपको सुनवा रहे हैं श्याम महेश्वरी की कहानी भाई हो तो ऐसा। वाचन स्वर श्याम महेश्वरी का।
1: अज्जू बिज्जू की जोड़ी हमेशा चर्चा में रहती। परिवार में कहीं भी कुछ भी काम हो, जन्म मरण, शादी ब्याह, दोनों भाई लगकर काम करते। अज्जू माने अजय बड़ा भाई और बिज्जू माने विजय छोटा भाई। 8 साल का अंतर था दोनों में, लेकिन दोनों की पट्टी बहुत। पटने का कारण था बड़े भैया अजय। बिज्जू का बड़ा ध्यान रखते और बिज्जू बड़े भैया को भगवान मानता। माने भी क्यों ना, पिक्चर जाना हो, वो भगत जी की रबड़ी जलेबी खाना हो या कुछ और, बड़े भैया अज्जू ही बंदोबस्त लगाते। विज्जू को पिताजी से बड़ा डर लगता, लेकिन अज्जू भैया में कुछ बात थी, पिताजी उनकी बात मान ही जाते। दोनों के बीच में दो बहनें, वो बड़ी वाली बड़े भैया की चमची और छोटी वाली विज्जू की सहेली। पूरा कुनबा बाहर से चाक चौबंद दिखता और अंदर से उससे भी ज्यादा मजबूत।

यार उठो मान जाओ मान जाओ ओ भाभी। एक दूसरे से शर्मसार।

उस दिन विज्जू ने बड़ा खेल कर दिया। स्कूल से एक पत्र मिला था चेतावनी वाला, यदि विजय 6 मासी परीक्षा के किसी भी विषय में फेल हुआ तो फाइनल एग्जाम्स में बैठने नहीं दिया जाएगा। विजय बाबू ने चतुराई से उस चेतावनी पत्र पर पिताजी के हस्ताक्षर खुद कर दिए। 6 मासी परीक्षा हुई और विजय बाबू फेल हो गए। पत्र के आधार पर पिताजी को तलब किया गया। अब पिताजी को कहां से और कैसे ले आए विजय? परीक्षा वरीक्षा तो बात की बात थी, पिताजी तो इस कृत्य पे विजय की पहले ही जान ले लेते। ये बात बड़े भैया अज्जू को बताई गई और वो पहुंचे स्कूल विज्जू के अभिभावक बन के। बड़े भैया के इशारे पर विज्जू प्रिंसिपल मैडम के पैर में लोट गया, लेकिन प्रिंसिपल मैडम टस से मस ना हो। फिर अचानक पता नहीं क्या सूझी भैया को, बड़े ड्रामाटिक अंदाज में खुद पैरों पर गिर पड़े प्रिंसिपल मैडम के और माफी मांगने लगे। प्रिंसिपल मैडम की तो हंसी छूट गई, वो फिर हिदायतें देकर माफ भी कर दिया विज्जू को। विज्जू परीक्षा में फिर पास भी हो गया, लेकिन उस वाक्य को याद करके आज भी आंखें गीली हो जाती है अपने भैया की उदारता।

विजय कुछ 18-19 साल का रहा होगा। बड़े भैया अब दुनिया की आपाधापी में उलझ गए थे, 4-5 तरीके के धंधों में हाथ आजमाया, लेकिन कहीं कुछ बात बनी नहीं। उम्र हो गई थी सो उनकी शादी की बात चल निकली थी, और ऐसे में काम का ना होना और बड़ी दिक्कत दे रहा था। भैया के किए सारे एहसानों का विजू को स्मरण हो आया। यही वजह रही होगी शायद, भैया जो बोलते विजू कर डालता। मतलब वो दादाजी के खेत संभालने की जिम्मेदारी आई विजू पे, तो भैया के कहने पर वो भी कर दिया। वो जो नहीं बोलते विजू वो भी कर देता। वो कचरे से बिजली बनाने का काम किया भैया ने, तो विजू फैक्ट्रियों में घूम घूम के कचरा भी लाद लाद के इकट्ठा करता रहा। बड़ी बहन हालांकि बड़े भैया से छोटी थी, लेकिन उनकी शादी बड़े भैया की शादी से पहले हो गई। विजू शादी में इतना काम कर चुका था कि बहन की विदाई का समय आते आते वो कहीं पसर के सो गया। बड़े भैया ने ही आकर जगाया, बोले दीदी विदा हो रही है, आ जा, उनको बाय बोलकर सो जाना। मम्मी और बड़े भैया खूब रोए दीदी के विदाई पे। विजू को दीदी के जाने का रोना तो नहीं आया, लेकिन भैया को इतना रोते देख वो भी रो दिया। बैंड वाले ने वो विदाई वाला गाना बजा के माहौल और भी गमगीन कर दिया था।

जिस घर से बंधे हैं भाग तेरे, उस घर में सदा तेरा राज रहे। होंठों पे हंसी की धूप खिले, माता

कांटा भी न चुभने पाए कभी मेरी लाडली तेरे पाँव में। उस द्वार से भी दुख दूर रहे जिस द्वार से तेरा द्वार मिले। मैं

0: जा जा तुझको सुखी संसार मिले, बाबुल की दुआएं लेती जा।
1: बड़ी बहन की शादी के बाद दादाजी चल बसे। अज्जू भैया का वो बिजली उत्पादन कारखाना भी बंद हो गया, मतलब वो चालू था लेकिन भैया वहां जाते नहीं थे। पता नहीं पार्टनर्स लोगों से कुछ झगड़ा हुआ था शायद, पता नहीं। बिज्जू कभी भैया से सवाल नहीं करता था, उसे लगता था भैया जो कर रहे हैं वो सही ही है। दादाजी के जाने के बाद पिताजी और बड़े भैया एक दिन बिज्जू के पास आए कुछ प्रॉपर्टी के कागजातों के साथ। उन्होंने बिज्जू से उन कागजातों पर 8-10 जगह साइन करवाए। बिज्जू को याद आया उसे नदी में तैरना सिखाया बड़े भैया ने। वो पानी में थोड़ा दूर जाकर खड़े हो जाते और बिज्जू से कहते, कूद जा मैं खड़ा हूं तुझे संभाल लूंगा। और बिज्जू कूद जाता। बिज्जू हाथ पैर मार के उन तक पहुंचता तो वो और पीछे चले जाते, और बस यही खेल कर करके तैरना सिखा दिया भैया ने उसे। अब तो भैया कहें इस कुएं में कूद जा तो वो कूद जाए। इन कागजातों पर हस्ताक्षर कौन सी बड़ी बात थी। भैया के भावों से बिज्जू को हमेशा यही लगता जैसे कह रहे हो तो चिंता मत कर मैं हूं ना।

0: बड़े भैया की शादी की बात चल निकली। उनके लिए लड़की ऐसे ढूंढी जा रही थी कि बस राजकुमारी मिल जाए। भैया ठहरे भी गोरे चिट्टे स्मार्ट, दुल्हन अच्छी मिली, मतलब भैया जितनी गोरी तो नहीं लेकिन शांत स्वभाव की दिखी। हंसने में थोड़ी कंजूस मालूम पड़ती थी लेकिन विजय अपनी हंसी में उनको शामिल कर ही लेगा। इतना जोर जोर से हंसता है, कहां तक बचेगी भाभी प्यारी। सबसे ज्यादा उछलना विजय को आया भाभी के आने का। अलग अलग पकवान तरकारी खिलाएगी, गप्पे लड़ाएगी, ताश खेलेंगे घंटों बैठकर, और वो नदी किनारे पानीपुरी खाने जाएंगे और पता नहीं क्या क्या नाच नाच के काम किया विज्जू ने शादी में। विज्जू से बड़ी बहन की शादी, मतलब वो जो तीसरे नंबर की बहन, उसकी शादी भी साथ ही में हो गई। सहेली जैसी बहन गई तो सहेली जैसी भाभी आ गई। विज्जू अलग अलग तरीकों से बार बार बोलता, मेरी भाभी। ये बोलने में उसे बड़ा मजा आता। कारण तो नहीं पता लेकिन बेवजह ही इस उद्बोधन को हर बात में ले आता। मेरी भाभी ये, मेरी भाभी वो, मेरी भाभी मेरी भाभी।
1: साची कहे तो दे आवन से हम दे, साची कहे तो दे आवन से हम दे, अंगना में आई बहार भौजी, अंगना में आई बहार भौजी।

में भूल जा। अब हमने जाना के फगुआ सिवा भी, अब हमने जाना के फगुआ सिवा भी, होते हैं कितने त्योहार बाजी, होते हैं कितने त्योहार बाजी। साची कहे तो दे आवन से हम दे, अंगना में आई

0: भर गई अंधन के लागे भंडार भौजी, अंधन के लागे भंडार भौजी। सच कहे तो दे आवन से हमरे अंगना में आई बहार भौजी।
1: विभिन्न पत्रिकाओं में अलग अलग तरह की व्यंजन विधियां आती और बिज्जू लाल आकर भाभी को देता। कभी मकई की टिक्की, कभी मखाने की खीर, कभी मेथी मटर के कोफ्ते मलाई वाली सब्जी। लेकिन एक के बाद एक भाभी ने कुछ नहीं बनाया शादी के बाद। बिज्जू उनके चेहरे पर हंसी तो नहीं ला पाया, उल्टा जो एक हल्की सी वो मोनालिसा मुस्कान दिखती थी कभी, वो भी गायब हो गई। उम्र कम थी बिज्जू की, लेकिन समझ में आ रहा था कि उसकी माँ और भाभी की पट्टी नहीं थी। वही वो सास बहू वाला एंगल कह सकते हैं। बिज्जू का दिल टूट गया। सुख बुगाहट ये भी थी कि भैया का कुछ काम जम नहीं रहा था। अब वो तेल का धंधा कर रहे थे कुछ, आसपास वाले बताते हैं कि शायद तेल का सट्टा कर रहे थे। बिज्जू के लिए ये सब कुछ समझ से परे था। आदतन कोई सवाल तो बिज्जू करता नहीं था भैया से, लेकिन कुछ शंकाएं जरूर आई उसके मन में। अब घर में चुप्पी सी रहने लगी थी, अशांति वाली चुप्पी। बिज्जू हंसमुख मिजाज का सरल लड़का रहा, ये सब कैसे भाता उसे। घर में टूटे तार बिखरे पसरे दिखने लगे। टिमटिमाती चमक लिए बिज्जू की आंखों में अब सूनापन दिखने लगा।
0: झूठा।

0: गीतों भरी कहानी में आज आप सुन रहे हैं श्याम माहेश्वरी की लिखी कहानी भाई हो तो ऐसा।
1: विज्जू बड़ा हो गया था, फिल्म लाइन में आने का मौका मिला तो बंबई आ गया। आज का मुंबई कल बंबई ही था। अच्छा काम जमा लिया उसने। कालचक्र का भैया भी अजीब है, बात कुछ ऐसी बैठी कि बड़े भैया का भी वहां काम जोरदार चल निकला और उससे भी बड़ी बात उन्हें हर सप्ताह मुंबई आना पड़ता अपने काम के सिलसिले में। मुंबई में आकर विज्जू के घर ही रहते हर हफ्ते 4-5 दिन। विज्जू को लगा तो यही था कि अपने गांव से दूर इस पराये शहर में भी भैया के आ जाने की वजह से वही अपनापन फिर लौट आएगा, पर ऐसा हुआ नहीं। भैया तनाव में ही दिखते हमेशा। पैसा आता है तो बरकत आ जाती है, लेकिन भैया के साथ उलट हुआ। भाभी का शांत स्वभाव सुना है अब ज्वालामुखी हो गया है। दोनों दीदियां बताती हैं अब वहां भाभी का ही राज चलता है। मम्मी पलंग पर आ लगी है और पिताजी को भगवान के सामने बैठने पर मजबूर कर दिया है।

सालों साल निकल गए इस आपाधापी में। यह शहर अब बंबई से मुंबई हो गया। कोरोना काल में स्वास्थ्य की दृष्टि से तो विजय सही सलामत रहा, लेकिन कोई पिक्चर बनाई उसने जिसमें कमर टूट गई उसकी। नौबत यहां तक आ गई कि बिज्जू का घर बिक गया। और उधर गांव में सुना बड़े भैया ने बहुत पैसा जमा कर लिया था। मुंबई आने की अब जरूरत भी खत्म हो गई थी, इसलिए वे नहीं के बराबर ही आते, और आते भी तो बिज्जू के घर नहीं रुकते, वो कहीं किसी होटल में रुकते थे। आजकल बिज्जू को उनके हाव भाव व्यवहार से समझ आ रहा था कि उन्होंने इसलिए मुंबई आना बंद नहीं किया था कि उनकी जरूरतें पूरी हो गई थी, बल्कि इसलिए बंद किया था कि भैया अब बिज्जू से मिलने से कतरा रहे थे। उन्हें शायद ये डर सता रहा हो कि बिज्जू इतने सालों मुंबई में रखने की कीमत न मांग बैठे। कठिन समय में अपने ही याद आते हैं, और वो अजय भैया जैसे अपने हों तो ज्यादा याद आते हैं।

0: अपने होते हैं, अपने तो अपने होते हैं।
1: विजय अभी भी अपने तो अपने होते हैं के भावों से निकल नहीं पाया था पूरी तरह, लेकिन भैया ने तयशुदा पूरी तरह भुला दिया था बिज्जू को। चलो उसे भुला देते तो भी ठीक था, लेकिन इस वक्त जरूरत में था वो। यही सोचकर मेहरबानी समझ ही मदद का हाथ बढ़ा देते उसकी तरफ, पर ऐसा हुआ नहीं। तब विजय को याद आई अपने दादाजी की जमीन, वही जो दादाजी ने अजय और विजय के नाम कर दी थी, और जिन कागजातों पर तब हस्ताक्षर करवाए थे विजय से, वो इसी जमीन को बेचने के कागजात थे। और उसी जमीन को बेच के भैया ने कपड़े की दुकान ली थी अपनी, जिसने आज यहां तक पहुंचा दिया उन्हें। सुना है कुछ लाखों में बेची वो जमीन आज करोड़ों की हो गई है। नंगे के नवग्रह बलवान विजय ने सोचा और तय किया कि उस जमीन का अपना हिस्सा भैया से अब मांग लेगा। उनके पास बहुत है ही और इसके पास सब खत्म हो गया है, तो ये सही समय है अपनी हक की गुहार लगाने का।

I'm not going to be able to do it.

बुढ़िया से बात की बिज्जू ने तो वे साफ मुकर गए। तर्क ये कि उस जमीन को बेचना तो छोटी सी बात थी, मेन बात तो यह थी कि उनकी मेहनत थी जिसकी वजह से आज ये मिल्कियत खड़ी हो पाई। तर्क नहीं कुतर्क था ये, विजय की तो सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। इतने सालों उन पैसों को भोगने के बाद वो अपने ही हो जाते हैं। बड़ा कठिन हो जाता है उन पैसों पर से अपना मोह जाने देना। पैसों का चरित्र कुछ ऐसा ही है, नकारात्मकता बहुत जल्दी आ जाती है। रुआब और रुतबा तो बढ़ता है लेकिन घमंड और लालच भी बढ़ जाता है। पैसों के शुद्धिकरण के लिए बड़ा दान धर्म करना पड़ता है, तब पछता है पैसा। भैया छोटे भाई को उसके हक का छोड़ो उसकी जरूरत का नहीं दे पा रहे थे तो दान धर्म कहां से करते? कहां से चले थे अज्जू भैया, कहां पहुंच गए? और कहां से चला था रिश्ता, कहां पहुंच गए?

0: विजय ने खूब गुहार लगाई अपने नाते रिश्तेदारों के पास जाकर। अपने हक का गान बखान किया, लेकिन भैया के खिलाफ कौन खड़ा होता। समरत को नहीं दोष गोसाई, पैसे वालों की कहां कभी कोई गलती होती है। विजय को अपना हक नहीं मिलना उतना नहीं चुभ रहा था जितना उस भरोसे का टूटना जो उसने भैया पे दिखाया था। जान लुटाता था वो बड़े भैया पे। कोई अभी भी कह दे कि ये सब झूठ है, अभी भी बड़े भैया आएंगे सांता बन के उसको सरप्राइज गिफ्ट देने, पर वो नहीं आए। विजय के इतने साल जीवन का अहम हिस्सा झूठा साबित हो गया। अब वो किसी पे भी भरोसा कैसे करेगा, और दूसरों पर तो जाने दीजिए खुद पर भी भरोसा कैसे करेगा।
1: सब कुछ सीखा हमने ना सीखी होशियारी, सब कुछ सीखा हमने ना सीखी होशियारी। सच है दुनिया वालों के

खुद ही मर मिटने की ये जिद है हमारी, खुद ही मर मिटने की ये जिद है हमारी। सच है दुनिया वालों के

0: दिल पे मरने वाले मरेंगे भिखारी, दिल पे मरने वाले मरेंगे भिखारी, सच है दुनिया वालों के हम हैं अनाड़ी।
1: आज विजय बेघर है, दिन भर बैठा रोता रहता है, रातों को सो नहीं पाता, इधर गरीबी की मार और उधर विश्वास का खंजर, शूल सी चुभन हिस्सा बन गई है जीवन का। कलयुग की ये घटना कितनों के ही साथ हुई है। संवेदनशील विजय कई तरीकों से अपने आप को संभालने का प्रयास करता है। प्रयास करते रहने की एक विशेषता है, मुश्किलों से जूझने के लिए हिम्मत मिलती रहती है। प्रयासों की खुराक सुबह दोपहर शाम देना शुरू कर दिया उसने दवाई की तरह, कहीं ज्ञान की बात सुनता तो कहीं ध्यान की कोई क्रिया करता। ऐसे ही एक ज्ञान में ये समझ आया कि पिछले जन्म का कोई हिसाब किताब बचा रहा होगा बड़े भैया से, जो इस जन्म में पूरा हो रहा है। इस ज्ञान ने उसे हौसला दिया और नतीजा भी तुरंत निकला। विजय का बेटा अंधेरे में रोशनी की किरण लेकर आया, अच्छी पढ़ाई करके अच्छी नौकरी पा गया और सबसे महत्वपूर्ण विजय के प्रति पूरा समर्पित। कलयुगी भाई गया तो सतयुगी बेटा आ गया, कुछ जाता है तो कुछ आता भी है, अभी रात है तो कल सवेरा होगा ही। जीवन के इस हिसाब किताब को समझने के बाद आज विजय शांत है। एक रिश्ते के सामने जीवन

का ज्ञान पा जाना उसे भगवान का दिया उत्तम न्याय लगा। आज विजय भैया के लिए नरम हो चुका है। कल तक ये सोचने वाला विजय कि भाई हो तो ऐसा ना हो कि जगह सोच रहा है, भाई हो

के रास्ता कट जाएगा मित्रा के बादल छट जाएगा मित्रा के दिल से रुकना ना मित्रा के पल रुकना ना मित्रा जीवन चलने का ना चलते रहो सुबह शाम जीवन चलने का ना चलते रहो सुबह शाम रास्ता कट जाएगा मित्रा के बादल कट जाएगा मित्रा के दुख से रुकना ना मित्रा के एक पल रुकना ना मित्रा जीवन चलने

जो जीवन से हार मानता उसकी हो गई छुट्टी, नाक चढ़ा कर कहे जिंदगी तेरी मेरी हो गई कुट्टी। जो जीवन से हार मानता उसका हो गया छुट्टी, नाक चढ़ा कर कहे जिंदगी तेरा मेरा हो गया कुट्टी। रूठा यार मना मित्रा, यार तो यार बना मित्रा, न खुद से रहो।

0: सुनाती तुतले तुतले बोल, उजली उजली भोर सुनाती तुतले तुतले बोल, अंधकार में सूरज बैठा अपनी गठड़ी खोल, समय से हाथ मिला मित्रा,
1: के हो जा किरण किरण मित्रा,
0: के चलता रहे।

0: भाई हो तो ऐसा ये की तो भरी कहानी अभी आपने सुनी। लेखक थे श्याम महेश्वरी, संपादक स्नेहल भिसे, वाचन स्वर श्याम महेश्वरी का, प्रस्तुतकर्ता राघवेंद्र सिंह नेगी।
1: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे विविध भारती से प्रसारित कार्यक्रम, जिसे हम आकाशवाणी मुंबई केंद्र से रिले कर रहे थे। FM बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी जैसलमेर का ये गोल्डन सिटी चैनल है। शाम के 5 बजे हैं, आइए सुनते हैं हमारे युवा साथियों के लिए कार्यक्रम युवाणी।

0: युवा सुनने वाले सभी युवा साथियों को युवा पुष्पेंद्र भोरा का युवा नमस्कार। साथियों, आज हम चर्चा कर रहे हैं स्टार्टअप पर आधारित मन में है विश्वास। दोस्तों, आज का युग नवाचार और उद्यमिता का युग है। यदि मन में विश्वास, मेहनत और कुछ नया करने का साहस हो तो कोई भी व्यक्ति अपनी पहचान बना सकता है। इसी सोच को साकार करने का माध्यम है स्टार्टअप। स्टार्टअप केवल एक नया व्यवसाय नहीं, बल्कि समस्याओं का नया समाधान और समाज में सकारात्मक परिवर्तन लाने का प्रयास है। मन में विश्वास का अर्थ है कि व्यक्ति अपनी क्षमता पर भरोसा रखे और कठिन परिस्थितियों में हार न माने। एक सफल स्टार्टअप की शुरुआत भी इसी विश्वास से होती है। हर बड़ा उद्योग कभी एक छोटा से शुरू होकर इस रूप में पहुंचा है। विश्वास, लगन और निरंतर प्रयास से हम वह सफलता की ऊंचाइयों तक पहुँच सकता है। भारत आज दुनिया के प्रमुख स्टार्टअप देशों में शामिल है। सरकार की स्टार्टअप इंडिया जैसी योजनाओं ने युवाओं को नए व्यवसाय शुरू करने के लिए प्रोत्साहित किया है। आज के युग में युवा रोजगार खोजने के बजाय रोजगार देने वाला बन रहे हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, तकनीक और ई कॉमर्स जैसे क्षेत्रों में अनेक स्टार्टअप समाज की समस्याओं का समाधान कर रहे हैं। स्टार्टअप केवल आर्थिक विकास नहीं, बल्कि आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये एक रोजगार उन्नत करते हैं, नई तकनीक का विकास करते हैं और देश की प्रकृति में योगदान देते हैं। हालांकि किसी भी स्टार्टअप की राह आसान नहीं होती। अधिक कठिनाइयों, प्रतिस्पर्धा और सफलता की चुनौतियां सामने आती है। इसके साथ ही मन में विश्वास होता है तो इन बाधाओं को पार किया जा सकता है। युवाओं को चाहिए कि अपने विचारों पर विश्वास रखे, नए अवसरों की तलाश करें और ईमानदारी व मेहनत के साथ अपने सपनों की साकार करें। सफलता रातों रात नहीं मिलती, बल्कि धैर्य, आत्मविश्वास और निरंतर प्रयास से प्राप्त होती है। कहा जाता है कि मन में है विश्वास केवल एक प्रेरक वाक्य नहीं, बल्कि सफलता का मूल मंत्र है। जब मन में विश्वास और लक्ष्य के प्रति समर्पण होता है, तब एक छोटा सा विचार भी सफल स्टार्टअप बनकर समाज और देश की प्रगति का आधार बन सकता है। इसलिए हमें अपने सपनों पर विश्वास रखना चाहिए और नवाचारों के माध्यम से राष्ट्र निर्माण में योगदान देना चाहिए। यही आत्मनिर्भर और विकसित भारत की सच्ची पहचान है। साथियों, अपनी चर्चा को हम इसी जगह देखेंगे, उससे पहले ही सुनते हैं यह संदेश।
1: प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाए। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: साथियों, हम चर्चा कर रहे हैं मन में विश्वास पर। दोस्तों, विश्वास शक्ति है जो व्यक्ति को कठिन परिस्थितियों में भी आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। जीवन में सफलता केवल प्रतिभा से नहीं बल्कि आत्मविश्वास और परिश्रम और निरंतर प्रयास से मिलती है। जब किसी युवा के मन में यह विश्वास होता है कि समाज किसी समस्या का समाधान खोज सकता है, तब वहीं से एक स्टार्टअप की शुरुआत होती है। आज भारत के सबसे बड़े स्टार्टअप देशों में शामिल है। आत्मनिर्भर भारत का अर्थ यह नहीं कि दुनिया से अलग हो जाए, बल्कि इसका अर्थ है अपनी क्षमता पर विश्वास करना, देश निर्माण करना, स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देना, नए उद्योग स्थापित करना, रोजगारों का अवसर पैदा करना, नवाचार को प्रोत्साहित करना, साथ ही नई तकनीक विकसित करना, रोजगार पैदा करना, ग्रामीण क्षेत्रों का विकास करना, महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना, किसानों की आय बढ़ाने में सहायता करना और डिजिटल भारत को मजबूत करना है। इसके साथ ही स्टार्टअप की सबसे बड़ी पूंजी पैसा नहीं बल्कि विचार होता है। एक अच्छा विचार लाखों लोगों का जीवन बदल सकता है। आज मोबाइल से भुगतान, ऑनलाइन शिक्षा, डिजिटल सेवाएं, किसानों की आधुनिक तकनीक और कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित समाधान, ये सभी नवाचार के उदाहरण हैं। इसके साथ ही महिलाएं भी एक सफल उद्यमी बन सकती है। शिक्षा, स्वास्थ्य, फैशन, खाद्य उद्योग, डिजिटल सेवाएं और सामाजिक उद्यमों के माध्यम से नए अवसर पैदा कर सकती हैं। महिलाओं की सफलता पर पूरे समाज की सफलता निर्भर करती है। साथियों, मन में विश्वास केवल नारा नहीं बल्कि जीवन का मूल मंत्र है। जब विश्वास, परिश्रम, नवाचार और देशभक्ति एक साथ मिलते हैं, तब एक साधारण विचार भी सफल स्टार्टअप बन जाता है। ऐसे ही स्टार्टअप आत्मनिर्भर भारत की मजबूत नींव रखते हैं। आइए हम भी यह संकल्प लें कि अपने ज्ञान, प्रतिभा और आत्मविश्वास का उपयोग करते हुए समाज और राष्ट्र के लिए कुछ करेंगे। यदि भारत का प्रत्येक युवा अपने भीतरी छिपी क्षमता पर विश्वास करें, तो वह दिन दूर नहीं जब हमारे देश की अग्रणी नवाचार और अधिकार शक्ति बन सकता है। साथियों, अपनी चर्चा को हम इसी तरह देखेंगे। उससे पहले आइए सुनते हैं डिजिटल इंडिया और महिला सशक्तिकरण पर ललिता गोपा की यह वार्ता।
2: नमस्कार, मेरा नाम ललिता गोपा है। आज मैं डिजिटल इंडिया एवं महिला सशक्तिकरण के ऊपर दो शब्द आपके समक्ष रखना चाहूंगी। 1 जुलाई 2015 को हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी द्वारा इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया, जिसका मुख्य उद्देश्य भारत को एक डिजिटल रूप से सशक्त समाज और ज्ञान की अर्थव्यवस्था में परिवर्तित करने की परिकल्पना था। आज भारत केवल बदल नहीं रहा बल्कि डिजिटल क्रांति के माध्यम से एक नए युग का निर्माण भी कर रहा है। यह परिवर्तन केवल तकनीकी का नहीं बल्कि सोच, अवसर और समानता का है। सभी नागरिकों को तेज और सुलभ इंटरनेट सुविधा उपलब्ध कराना, सरकारी सेवाओं का ऑनलाइन और पारदर्शी बनाना, साथ ही डिजिटल साक्षरता बढ़ाना ताकि हर नागरिक तकनीकी का उपयोग कर सके, शिक्षा, स्वास्थ्य, बैंकिंग के और अन्य सेवाओं को डिजिटल माध्यम से लोगों तक पहुंचाना। डिजिटल इंडिया कार्यक्रम ने निरंतर प्रगति का पथ प्रदर्शित किया है, कई महत्वपूर्ण उपलब्धियां और प्रमुख पहल हासिल की है। डिजिटल इंडिया का भविष्य उल्लेखनीय है, जो उभरती प्रौद्योगिकी का लाभ उठाकर नवाचार और विकास को और गति प्रदान करेगा। यह समावेशी विकास को बढ़ावा देगी और डिजिटल अर्थव्यवस्था में वैश्विक नेता के रूप में भारत की स्थिति को मजबूत करेगी। इसी के साथ आज डिजिटल प्लेटफॉर्म ने महिलाओं के लिए भी रोजगार एवं स्वरोजगार के नए अवसर खोले हैं। वे घर बैठे हस्तशिल्प, सिलाई, ब्यूटी प्रोडक्ट्स और अन्य उत्पादों की ऑनलाइन बिक्री कर रही है। इसी के साथ डिजिटल सशक्तिकरण के साथ साइबर सुरक्षा के प्रति जागरूकता भी आवश्यक है। महिलाओं को मजबूत पासवर्ड का उपयोग करना चाहिए, किसी भी अनजान लिंक पर क्लिक करने से बचना चाहिए, साथ ही अपनी व्यक्तिगत जानकारी किसी के साथ साझा नहीं करनी चाहिए। इस प्रकार महिलाएं स्मार्टफोन और इंटरनेट की सहायता से ऑनलाइन शिक्षा प्राप्त कर रही है, साथ ही कई सरकारी योजनाओं का घर बैठे लाभ ले रही है। इस मिशन का मुख्य उद्देश्य पावर टू एम्पावर है, यानी तकनीकी से हर नागरिक को ताकत देना। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था कि जिस देश में महिलाओं का सम्मान नहीं, वो देश कभी आगे बढ़ नहीं सकता। 2047 तक हमें विकसित भारत बनाना है, और विकसित भारत की तस्वीर तब तक अधूरी है जब तक उसकी आधी आबादी डिजिटल रूप से सशक्त न हो। जैसा कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के शब्द हैं कि जब नारी आगे बढ़ती है तो परिवार, समाज, देश भी आगे बढ़ता है, परंतु आज भी हमें विकास के साथ साथ कई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। शिक्षा की कमी के कारण अभी भी 50% महिलाएं स्मार्टफोन नहीं चला पाती। साइबर ठगी, अफवाह, गलत जानकारी का डर है, इसके लिए हमें महिलाओं को पढ़ने देना, उड़ान भरने देना और अपने फैसले स्वयं लेने देना होगा। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक

संबंध अनुसंधान परिषद द्वारा जारी की गई भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था रिपोर्ट 2024 के अनुसार अर्थव्यवस्था के डिजिटलीकरण में भारत विश्व में तीसरे स्थान पर है। विकसित भारत की परिकल्पना के तहत भारत को वैश्विक स्तर पर अग्रणी बनाने का लक्ष्य रखा गया है। इसके तहत कृत्रिम बुद्धिमत्ता, क्वांटम कंप्यूटिंग और अंतरिक्ष अन्वेषण के द्वारा वैश्विक स्तर पर भारत को अग्रणी बनाने का लक्ष्य रखा गया है। प्रौद्योगिकी और इंटरनेट के विस्तार ने महिलाओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करने, आर्थिक रूप से स्वतंत्र बनाने और सामाजिक बाधाओं को तोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। जैसे बात करें यदि आर्थिक क्षेत्र में, तो सतत विकास हेतु महिलाओं का आर्थिक रूप से सशक्त होना जरूरी है। विश्व कल्याण हेतु चलाए गए सहसाबादी विकास लक्ष्यों में एक लक्ष्य यह सुनिश्चित करना था कि वित्तीय संपत्तियों पर महिलाओं का अधिकार हो। इस हेतु देशों को महिलाओं को सम्मान दर्जा देने, आर्थिक संसाधनों पर उनके अधिकार, साथ ही राष्ट्रीय कानूनों के अनुसार भूमि और संपत्ति के अन्य रूपों, वित्तीय सेवाओं, विरासत और प्राकृतिक संसाधनों पर स्वामित्व और नियंत्रण तक पहुंच हेतु सुधार करने होंगे। महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण का अर्थ है महिलाओं के लिए रोजगार के अवसरों को बढ़ाना व संसाधनों तक पहुंच प्रदान करना, जिससे उन्हें निर्णय लेने की क्षमता व आत्मविश्वास जागृत होता है। महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने से वे अपने परिवार, समुदाय व समाज को लाभान्वित करती है। उनकी आय, जीवन स्तर व आर्थिक स्वतंत्रता में सुधार होता है। आज ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म और सोशल मीडिया ने महिलाओं के लिए उद्यमिता के द्वार खोले हैं। महिलाएं अब इंटरनेट के माध्यम से अपने व्यवसाय को ऑनलाइन चलाकर आर्थिक रूप से स्वतंत्रता प्राप्त करती है। डिजिटल भुगतान और नेट बैंकिंग सेवाओं के जरिए हुए वित्तीय लेन देन में भी आत्मनिर्भर हो गई है। ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर महिलाएं अपने उत्पाद बेचकर आत्मनिर्भर हो रही है। बात करें सामाजिक जागरूकता व नेटवर्किंग की, तो आज का युग सोशल मीडिया का युग है, जिसकी मौजूदगी और सक्रिय भागीदारी ने महिला सशक्तिकरण की विचारधारा को और तेजी से और व्यापक रूप में फैलाया है। सोशल मीडिया सामाजिक परिवर्तन का एक ऐसा माध्यम बन गया है जिसने महिला सशक्तिकरण के विभिन्न पहलुओं, जैसे कि वैश्विक समुदाय का ध्यान महिला अधिकारी की ओर आकर्षित करने व दुनिया भर में भेदभाव व रूढ़िवादिता को चुनौती देने में मदद की है। इसने ब्लॉग, चैट, ऑनलाइन अभियान, ऑनलाइन चर्चा मंचों और ऑनलाइन समुदाय के माध्यम से महिलाओं के मुद्दों और चुनौतियों पर चर्चा करने हेतु एक विशाल मंच दिया है, जिससे महिलाओं को अपने आत्म मूल्य का एहसास हुआ। उपलब्धियां हासिल करने में आसानी, अपनी पसंद का चुनाव करना और अपने क्षेत्र में सफल रुचि के साथ अन्य लोगों को प्रेरित करने में सक्षम बनाया है। बात करें स्वास्थ्य और कल्याण क्षेत्र में, तो स्वास्थ्य और कल्याण को बढ़ावा देना महिला सशक्तिकरण हेतु भी अनिवार्य है। जब महिलाएं शिक्षित होंगी तो वह स्वस्थ संपर्क जब महिलाएं शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा से संपर्क दी है, तो वे अपने और अपने परिवार की प्राथमिकताओं को और भी बेहतर रख सकती है। वे इंटरनेट का उपयोग कर जन्म स्वास्थ्य, मातृ स्वास्थ्य व समग्र कल्याण को बढ़ावा देने वाली जानकारियों, सेवाओं व पहलों से जागरूक हो सकती है। टेलीमेडिसिन सेवाओं और स्वास्थ्य ऐप्स ने महिलाओं के स्वास्थ्य देखभाल में क्रांति ला दी है। अब वह अपने और अपने परिवार के स्वास्थ्य के बारे में जागरूक रहती है। मासिक धर्म व प्रजनन स्वास्थ्य पर भी आज जागरूकता बढ़ी है। शिक्षा और कौशल विकास के जरिए महिलाओं को सशक्त बनाने से उनका आर्थिक और सामाजिक विकास होता है। शिक्षित व कुशल महिलाएं अपने परिवार व समुदाय में अहम भूमिका निभाती है। वे रोल मॉडल बनकर दूसरों को भी शिक्षा और प्रशिक्षण पाने हेतु प्रेरित करती है। शिक्षा महिला सशक्तिकरण हेतु प्रथम व मूलभूत साधन है। डिजिटल महिला शिक्षा के माध्यम से महिलाओं में आत्मविश्वास का संचार हुआ है, उनके व्यक्तित्व में निखार आया है। शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में महिला शिक्षा पर निवेश महिला सशक्तिकरण को बढ़ाने का सबसे बेहतरीन व प्रभावी तरीका है। भारत जैसे विकासशील देश में पुरुषों की तुलना में महिलाओं में डिजिटल साक्षरता दर कम है। यदि महिलाओं को डिजिटल शिक्षा का ज्ञान दिया जाए तो अर्थव्यवस्था में काफी सुधार होगा। यदि बात कौशल विकास की जाए, तो कौशल विकास का अर्थ महिलाओं को केवल रोजगार प्रदान करना नहीं, अपितु उनके द्वारा किए गए कार्यों में गुणात्मक सुधार कर कार्य प्रदर्शन को बेहतर तथा उत्पादक बनाना है। इसके द्वारा महिलाओं में आत्मविश्वास और आत्मनिर्भर जैसे गुणों का

0: भारत सरकार द्वारा सुरक्षा ऐप्स और साइबर सुरक्षा कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, जिनके माध्यम से महिलाओं को ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों जगह सुरक्षित रहने का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। यही नहीं, आज हमारी साइबर सुरक्षा एजेंसियों में भी कई महिला अधिकारी कार्य कर रही है। डिजिटल क्रांति देश के शहरों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि यह गांव-गांव और दूरस्थ धाड़ियों में भी फैल गई है। वहां की महिलाएं एवं बच्चियों ने इसका उपयोग कंप्यूटर्स, मोबाइल एवं लैपटॉप के माध्यम से किया है तथा वह शिक्षित हो रही हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में अनपढ़ महिला भी डिजिटल संसाधनों का उपयोग कर रही है, जैसे मोबाइल से बातचीत करना, वीडियो कॉल करना, ई मित्र से मोबाइल रिचार्ज करवाना आदि। वह स्कूल व कॉलेज के फॉर्म भी ई मित्र द्वारा भर रही है। तो यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा कि ग्रामीण परिवेश की महिलाएं शहरी महिलाओं से किसी भी क्षेत्र में पीछे हैं। महिलाओं पर उनके पिता, भाई, पति का वर्चस्व होता है, जिसके कारण कुछ क्षेत्रों में उन पर निर्भर रहना पड़ता है। परंतु वर्तमान परिप्रेक्ष्य में शिक्षा को अत्यधिक महत्व दिया जाता है। बालिकाओं को शिक्षा हेतु शहरों में भेजा जाता है, यही नहीं विदेशों में भी उच्च शिक्षण हेतु भेजा गया है, और वे अपने गांव, देश, शहर एवं अपने परिवार का नाम रोशन करती है। इन सबके पीछे डिजिटल इंडिया की महत्वपूर्ण भूमिका है। डिजिटल संसाधनों का उपयोग करते हुए सभी को सावधानी रखनी चाहिए, क्योंकि आए दिन हम सुनते हैं कि बैंक फ्रॉड, साइबर ठगी एवं डिजिटल अरेस्ट की घटनाएं हो रही है। ऐसे में भारत सरकार द्वारा समय समय पर समाचार पत्रों, आकाशवाणी केंद्रों व दूरदर्शन से साइबर क्राइम से बचने के उपाय एवं सुझाव दिए जाते हैं, उनका पालन करना चाहिए। विशेषकर आप मोबाइल पर किसी अनजान को अपने आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक खाते आदि की निजी जानकारी न दें, न ही किसी को OTP बताएं। डिजिटल क्रांति से आज हर कार्य आसान हो गया है। जहां पहले घंटा लाइनों में लगकर पानी, बिजली, टेलीफोन, टिकट, रिजर्वेशन, बैंक लेन देन आदि करते थे, वहीं आज मोबाइल, लैपटॉप, टैबलेट, कंप्यूटर आदि के द्वारा चंद सेकंडों में कार्य हो जाता है, जिससे समय के साथ पैसे की भी बचत होती है। शिक्षा के लिए उपयोग में लिए जा रहे डिजिटल संसाधनों का प्रयोग बड़ी सावधानी से करना चाहिए, क्योंकि आपकी एक असावधानी आपके बैंक खाते को शून्य कर सकती है। डिजिटल अरेस्ट की घटना सुनते हैं, जिसमें ग्रामीण ही नहीं बल्कि कई उच्च अधिकारी भी ठगे गए हैं। साइबर ठगों द्वारा वीडियो कॉल से अपने आप को क्राइम ब्रांच का अधिकारी बताते हुए धमकाते हैं, जिससे लोग उनके दबाव में आकर उनके बताए खाते में पैसे ट्रांसफर कर देते हैं। वे आपके मेल, बैंक खाता तथा अन्य निजी दस्तावेजों से आपकी जानकारी चुरा लेते हैं, KYC या अन्य प्रलोभन देकर आपको अपना शिकार बनाते हैं। ऐसे में आपको अपने बैंक जाकर जानकारी लेनी चाहिए। बैंक संबंधी कार्य हेतु किसी अनजान व्यक्ति को अपने घर या ऑफिस पर नहीं बुलाएं, किसी भी तरह के लिंक या मैसेज पर नहीं जाएं। अतः डिजिटल युग में डिजिटल उपकरणों का उपयोग पूर्ण सावधानी से करना चाहिए, ताकि महिलाएं एवं छात्राएं ठगी ना जा सके। डिजिटल क्रांति ने महिलाओं के सशक्तिकरण में अहम भूमिका निभाई है। इस क्षेत्र में और अधिक प्रयासों की आवश्यकता है, ताकि हर महिला डिजिटल संसाधनों का लाभ उठा सके। डिजिटल युग का सही उपयोग कर महिलाएं न केवल अपने जीवन को बेहतर बना सकती है, बल्कि परिवार व समाज में सकारात्मक बदलाव भी ला सकती है। नमस्कार।
1: साथियों, अभी हम सुन रहे थे डिजिटल इंडिया और महिला सशक्तिकरण ललिता गोबा की आवाज। दोस्तों, हम चर्चा कर रहे हैं दक्षिण। दोस्तों, भारतीय संस्कृति सूर्य का विशेष महत्व है। हमारे ऋषि मुनियों ने सूर्य की गति का गहन अध्ययन किया और उसके आधार पर वर्ष को दो भागों में विभाजित किया, उत्तरायण और दक्षिणायण। जब सूर्य की आवासीय गति दक्षिण दिशा की ओर मानी जाती है, तब उस काल में दक्षिणायण कहा जाता है। यह सामान्यतः कर्क संक्रांति से प्रारंभ होकर मकर संक्रांति चलता है। दक्षिणायण केवल एक खगोलीय घटना नहीं, बल्कि भारतीय परंपरा, कृषि और जीवन शैली से जुड़ा हुआ है। इस समय वर्षा ऋतु का आगमन होता है, किसान अपने खेतों में नई फसल बोते हैं, प्रकृति हरियाली से भर जाती है, नदियाँ और तालाब जल से भर जाते हैं, वातावरण शीतल और शुद्ध होता है। धार्मिक दृष्टि से भी दक्षिणायन का विशेष महत्व है। इस अवधि में गुरु पूर्णिमा, रक्षाबंधन, जन्माष्टमी, गणेश चतुर्थी, नवरात्रि, दशहरा, दीपावली और कार्तिक पूर्णिमा जैसे अनेक महत्वपूर्ण पर्व मनाए जाते हैं। यह पर्व हमें प्रेम, सेवा, सद्भाव, त्याग और संस्कृति से जुड़े रहने की प्रेरणा देते हैं।

वैज्ञानिक दृष्टिकोण से दक्षिणायन पृथ्वी की सूर्य और की और चारों ओर परिक्रमा और उसकी धुरी के झुकाव का परिणाम है। इससे दिन दिन धीरे धीरे छोटे होते हैं और रातें लंबी होने लगती है। यह परिवर्तन प्रकृति के संतुलन और ऋतु चक्र का महत्वपूर्ण भाग है। आज के समय में दक्षिणायन हमें यह संदेश देता है कि प्रकृति का सम्मान करना चाहिए। साथ ही दक्षिणायन जैसी दिवस पर प्रकृति विज्ञान भारतीय संस्कृति के अद्भुत समन्वय का संदेश देता है। यह हमें परिश्रम श्रेय पर्यावरण संरक्षण और जीवन में संतुलित बनाए रखने का प्रेरणा देता है। साथ ही अपनी चर्चा को हम इसी तरह जारी रखेंगे। उससे पहले आइए चलते हैं आपको गीत संगीत की दुनिया में और सुनवाते हैं यह गीत।

साथियों, अभी हम सुन रहे थे फिल्म आरजू से अब तेरे दिल में, जिसे जय कुमार सानू और गायक ने और संगीत दिया है अनुमित ने। दोस्तों, हम चर्चा कर रहे हैं वसुधैव कुटुंबकम का। दोस्तों, भारत की संस्कृति हमेशा से प्रेम, करुणा, अहिंसा और सेवा और अस्तित्व की रही है। भगवान बुद्ध ने करुणा का संदेश दिया, भगवान महावीर ने अहिंसा का मार्ग सिखाया, गुरु नानक देव ने समानता और भाईचारे का संदेश दिया तथा महात्मा गांधी ने सत्य और अहिंसा के माध्यम से पूरे विश्व को प्रेरित किया। इन सभी महानव विभूतियों ने वसुधैव कुटुंबकम की भावना को अपने जीवन में अपनाया। शिक्षा का उद्देश्य संरक्षण की इसी विचार से जुड़ा है। पृथ्वी हम सभी साझा कर रहे हैं, यह हमारा घर है। यदि हम जंगलों को नष्ट करेंगे, नदियों को प्रदूषित करेंगे और प्राकृतिक संसाधनों को अधिक दोहन करेंगे तो इसका नुकसान पूरी मानवता को उठाना पड़ेगा। वसुधैव कुटुंबकम केवल एक आदर्श वाक्य नहीं बल्कि मानव जीवन का

सार्थक सिद्धांत है। यह हमें सिखाता है कि जब हम पृथ्वी के निवासी हैं और हमारा सुख दुख एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, तो इसलिए हमें यह प्रेरणा लेनी चाहिए कि प्रेम, शांति, सहयोग और करुणा और मानवता के मूल्यों को पहचान कर इस पृथ्वी को एक सुंदर परिवार बनाएं। साथ ही अपनी चर्चा को हम इससे जारी रखेंगे, उससे पहले आइए सुनते हैं।

साथियों, अभी हम सुन रहे थे दिल है कि माता नहीं थी, ओ मेरे सपनों सलाहकार, जिसे गए अनुराधा पौडवाल ने। दोस्तों, हम चर्चा कर रहे हैं इंटरनेशनल जस्टिस डे पर। दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस प्रत्येक वर्ष 17 जुलाई को मनाया जाता है। यह दिन 1998 में रोम समिति यानी कि रोम स्टेटस को अपनाए जाने वाले स्मृति को देखकर बनाया गया। इसी संधि के आधार पर बाद में अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय की स्थापना हुई, जिसका उद्देश्य मानवता के विरुद्ध गंभीर अपराधों के लिए न्याय सुनिश्चित करना है। न्याय किसी भी सभ्य समाज की नींव है। यदि समाज में न्याय नहीं होगा तो शांति, समानता और विकास भी संभव नहीं होता। न्याय का अर्थ केवल अपराधी को दंड देना नहीं, बल्कि प्रत्येक व्यक्ति को उसके अधिकार दिलाना, कानून के समक्ष समानता सुनिश्चित करना और निर्दोषों की रक्षा करना भी है। हमारे देश भारत में संविधान सभी नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय का अधिकार देता है। यही हमारे लोकतंत्र की सबसे बड़ी शक्ति है। इस देश का मुख्य उद्देश्य लोगों को यह संदेश देना है कि दुनिया में कहीं भी यदि युद्ध, अपराध, नरसंहार, मानवता के विरुद्ध अपराध या बड़े पैमाने पर मानवाधिकार का उल्लंघन हो रहा है तो दोषियों को न्याय के कटघरे में लाना चाहिए। यह दिवस कानून के शासन, मानवाधिकारों और वैश्विक शांति को महत्व रखने के लिए रेखांकित करता है। साथ ही अपनी चर्चा को हम इसी तरह रखेंगे, उससे पहले ही सुनते हैं यह गीत।

साथ ही अभी हम सुन रहे थे बाजी कैसे टाइटल सॉन्ग जिसे गए कुमार सानू ने संगीत दिया है अनुज। दोस्तों हम चर्चा कर रहे हैं पर्यावरण संरक्षण पर। दोस्तों पर्यावरण हमारे चारों ओर मौजूद प्राकृतिक और सामाजिक वातावरण है। इससे वायु, जल, भूमि, वन, पर्वत, नदियाँ, समुद्र, पशु पक्षियाँ, वनस्पतियाँ तथा सभी जीव जंतु शामिल है। यह प्रकृति हमें जीवन के आवश्यक संसाधन प्रदान करती है। हम जो हवा में सांस लेते हैं, जो पानी पीते हैं, जो भोजन खाते हैं और जिस धरती पर रहते हैं, वह सब पर्यावरण का ही हिस्सा है। इसलिए पर्यावरण संरक्षण करना प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है। साथ ही अपनी चर्चा को हम इसी तरह जारी रखेंगे। उससे

साथियों अभी हम सुन रहे थे दिली चैन से अर्जी आज से गाया जाए दिली और कैलाश खेर ने उसका गीत दिया है ए आर रहमान। दोस्तों हम चर्चा कर रहे हैं पर्यावरण के संरक्षण पर। दोस्तों हमारी संस्कृति भी सदैव प्रकृति पूजा ही है, हमेशा हमारी नदियों को माता, पृथ्वी को देवी, वृक्षों को देवता और पशु पक्षियों को जीवन का साथी माना गया है। पीपल, बरगद, नीम, तुलसी जैसे वृक्षों की पूजा केवल धार्मिक परंपरा नहीं बल्कि पर्यावरण संरक्षण का संदेश भी है। ऋषि मुनियों ने प्रकृति के साथ संतुलित जीवन जीने की शिक्षा दी है, यही कारण है कि भारतीय संस्कृति में प्रकृति और मानव के बीच गहरा संबंध देखने को मिलता है। साथ ही चर्चा को यहीं जारी रखेंगे, उससे पहले ही सुनते हैं ये गीत।

अभी हम सुने थे फिल्म बॉर्डर से हमें तुमसे मोहब्बत, जिसे गाया सोनू निगम और अलका याग्निक ने और संगीत दिया है अनुमित ने। साथियों अब समय चला है, अपने युवा दोस्त पुष्पेंद्र बोहरा को आगे दीजिए। नमस्कार।

0: हाय।
1: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे हमारे युवा साथियों के लिए कार्यक्रम युवाणी। एफएम बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी जैसलमेर का ये गोल्डन सिटी चैनल है। शाम के 6 बजे हैं, प्रस्तुत है इस सभा के शेष कार्यक्रमों की रूपरेखा।

श्रोताओं, 11 बजे आप सुनेंगे हिंदी में समाचार, 11:05 पर अंग्रेजी में समाचार, 8:45 का समय रहेगा समाचार संध्या का, 9 बजे आप सुन सकते हैं न्यूज़ H9, जिसे हम आकाशवाणी दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।

जयपुर अजमेर से प्रसारित होने वाले कार्यक्रम इस प्रकार हैं। 6:30 पर आप सुनेंगे हिंदी में प्रादेशिक समाचार। 6:40 का समय रहेगा जिले की चिट्ठी और 6:45 पर आप सुन सकते हैं राजस्थानी में प्रादेशिक समाचार, जिसे हम आकाशवाणी जयपुर अजमेर केंद्र से रिले करेंगे।

हमारे स्टूडियो से प्रसारित होने वाले कार्यक्रम इस प्रकार हैं। अब से कुछ ही देर पश्चात 6:05 पर आप सुनेंगे हमारा दैनिक कार्यक्रम रामचरितमानस गान। 6:15 का समय रहेगा भक्ति संगीत के कार्यक्रम वंदना का, और 7 बजे आप सुन सकते हैं हमारे ग्रामीण भाइयों के लिए कार्यक्रम ग्राम जगत।

7:30 पर आप सुनेंगे राजस्थानी लोक संगीत। 8 बजे का समय रहेगा जैसलमेर के रेलवे स्टेशन उद्घाटन की रेडियो रिपोर्ट। 8:30 पर आप सुनेंगे सुगम संगीत। सुगम संगीत में आज हम सुनाएंगे आपको कुछ गजलें।

फिल्म संगीत का लुत्फ उठा सकते हैं 9:15 पर और रात्रि 10 बजे। तो श्रोताओं, ये थी इस सभा के शेष कार्यक्रम की रूपरेखा। FM बैंड 101.8 MHz पर आकाशवाणी जैसलमेर का ये गोल्डन सिटी चैनल है। शाम के 6:05 हुए हैं। आइए सुनते हैं हमारा दैनिक कार्यक्रम

राजा दशरथ के महलों में नववधुओं के स्वागत सत्कार तथा अन्य विधियों की समाप्ति के साथ रात्रि का आगमन होता है। सभी कुमार उनीदे हो रहे हैं, किंतु माताओं की जिज्ञासा का अंत होता नहीं दिखता। राम लक्ष्मण जैसे सुकुमार बालकों ने किस प्रकार ताड़का जैसी भयानक राक्षसी तथा मारीच और सुबाहु जैसे बलशाली राक्षसों का वध किया होगा, किस प्रकार ऋषि मुनियों के यज्ञ में डाली जाने वाली विघ्न बाधाओं का नाश करके दोनों किशोरों ने गुरु कृपा से विद्या पाई। जिज्ञासाओं का अंत नहीं। दीर्घ अवधि के बाद पुत्रों का मुख देखकर माताएं हर्ष ममता जनित उद्गार तथा तृप्ति से ओतप्रोत हो रही हैं। अपने विनय भरे वचन से माताओं के प्रश्नों के उत्तर देकर श्री राम उन्हें संतुष्ट करते हैं तथा गुरु और ब्राह्मणों के चरणों में सिर नवाकर नींद की गोद में विश्राम करने लगते हैं।

0: हनुमान विघ्न विनाशक कृपा निधान
1: जय हनुमान जय जय हनुमान
0: केतरि नंदन तुम बलवान
1: जय हनुमान जय जय हनुमान
0: सिया राम का करते ध्यान
1: जय हनुमान जय जय हनुमान
0: बालाजी सबके भगवान
1: जय हनुमान जय जय हनुमान
0: जय सिया राम जय जय हनुमान
1: जय सिया राम जय जय हनुमान
0: जय सिया राम जय जय हनुमान
1: जय सिया राम जय जय हनुमान
2: अजीत देवी गावना।

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना एफएम बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी जैसलमेर का ये गोल्डन सिटी चैनल है। 6:30 हुए हैं, आइए सुनते हैं पहले हिंदी में प्रादेशिक समाचार, उसके पश्चात जिले की चिट्ठी और राजस्थानी में प्रादेशिक समाचार, जिसे हम आकाशवाणी जयपुर अजमेर केंद्र से रिले करेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार।

0: मुख्य समाचार। भारत हाइड्रोजन से ट्रेन चलाने वाला दुनिया का पांचवा देश बना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे आत्मनिर्भर भारत और हरित ऊर्जा संकल्प की जीत बताया। आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा ने कहा, पश्चिम एशिया तनाव के बावजूद देश की अर्थव्यवस्था मजबूत। राज्य सरकार ने आरजीएचएस में वित्तीय गड़बड़ियां करने पर बीते 3 महीनों में 51 अस्पतालों को योजना से निलंबित किया। और राजस्थान पुलिस ने भिवाड़ी से साइबर अपराधियों के अंतर्राष्ट्रीय गिरोह का पर्दाफाश किया। समाचारों के साथ मैं ऋतिका गुप्ता और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जींद सोनीपत के बीच चलने वाली देश की पहली हाइड्रोजन चालित ट्रेन को आज रवाना किया। उन्होंने हरियाणा के जींद रेलवे स्टेशन से इस ट्रेन को हरी झंडी दिखाई। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने 14,000 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखी। 157 किलोमीटर लंबे दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे को राष्ट्र को समर्पित किया। इस मौके पर श्री मोदी ने कहा कि 21वीं सदी का रेल परिवहन हाइड्रोजन प्रौद्योगिकी से संचालित होगा। इसके साथ ही भारत हाइड्रोजन से ट्रेन चलाने वाला दुनिया का पांचवा देश बन गया है। अब तक जर्मनी, जापान, चीन और अमेरिका में ही ये सुविधा उपलब्ध है। 10 कोच वाली इस ट्रेन में 2600 यात्रियों के सफर करने की क्षमता है, जबकि दूसरे देशों में हाइड्रोजन ट्रेन 2 या 3 डिब्बों की होती है। इससे भारत में स्वच्छ परिवहन को बढ़ावा मिलेगा। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने स्वदेशी तकनीक से बनी 3200 हॉर्स पावर वाली इस ट्रेन को रेलवे इंजीनियरिंग की उत्कृष्ट उपलब्धि बताया। उन्होंने इसे आत्मनिर्भर भारत और हरित ऊर्जा संकल्प की जीत कहा।
1: 20वीं सदी की पहचान डीजल और बिजली से चलने वाली रेल बनी और अब 21वीं सदी की रेल हाइड्रोजन से चलने वाली है। आज भारतीय रेल ने भी 21वीं सदी की इस टेक्नोलॉजी में एक बड़ा स्टेप लिया है। आज हाइड्रोजन ट्रेन चली है। अभी ये सफर 90 किलोमीटर का है, लेकिन भविष्य में इसका विस्तार होने की बहुत संभावनाएं हैं।
0: रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने नमो ग्रीन रेल की प्रौद्योगिकी को पर्यावरण अनुकूल बताया। उन्होंने कहा कि इस ट्रेन में डीजल की जरूरत नहीं होती है।
2: ये देश के लिए गौरव की बात है, विशेषकर इंजीनियर्स के लिए गौरव की बात है कि देश में इतनी कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी को डेवलप किया गया है। न्यू एनर्जी है, न्यू फ्यूल है। इस फ्यूल का ट्रांसपोर्टेशन में कैसे यूज हो, उसकी टेक्नोलॉजी भारत में कैसे डेवलप हो, आत्मनिर्भर भारत की स्वदेशी टेक्नोलॉजी ये बनाना, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। और ये आज एक बड़ा माइलस्टोन है रेलवे के लिए कि पूरी टेक्नोलॉजी भारत में बनी, आईटी राइट्स भारत में। इसमें सेफ्टी सिस्टम्स का बहुत लंबे समय से बहुत एक कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट किया गया है।
0: प्रधानमंत्री श्री मोदी ने आज ही चंडीगढ़ में स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और सड़क क्षेत्र की करीब 4,700 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। इसके बाद श्री मोदी ने देशभर में पुनर्विकसित 75 रेलवे स्टेशनों का जालंधर कैंट से वर्चुअल उद्घाटन किया। इसमें प्रदेश के 8 रेलवे स्टेशन जैसलमेर, बाड़मेर, दौसा, डीग, गंगापुर सिटी, गोटन, खैरथल और सोमेसर शामिल है। इन स्टेशनों पर आयोजित कार्यक्रम से स्थानीय जनप्रतिनिधि, अधिकारी और बड़ी संख्या में लोग जुड़े। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा नागौर जिले के गोटन रेलवे स्टेशन पर आयोजित कार्यक्रम से पुनर्विकसित अमृत भारत रेलवे स्टेशनों के लोकार्पण समारोह से जुड़े। इस मौके पर श्री शर्मा ने कहा कि ये विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।
3: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का विकसित भारत का जो विजन है और संकल्प के साथ गति देने के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य आज हुआ है। प्रधानमंत्री जी का संकल्प है कि भारत के रेलवे स्टेशन, ट्रेनें, रेल की पटरियां और सुरक्षा की दृष्टि से हमारा ये रेलवे विभाग किस तरह से मजबूत हो सकता है और राजस्थान और देश में किस तरह से इसकी प्रगति हो रही है।
0: भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने कहा है कि पश्चिम एशिया तनाव के बावजूद देश की अर्थव्यवस्था मजबूत बनी हुई है। मुद्रास्फीति और रुपया स्थिर और सामान्य

0: बना हुआ है। डीडी न्यूज के साथ विशेष बातचीत में श्री मल्होत्रा ने भारतीय अर्थव्यवस्था और मौद्रिक नीति के बारे में विस्तार से चर्चा की। आरबीआई गवर्नर ने कहा कि भारत का सेवा निर्यात, रिकॉर्ड विदेशी निवेश, एफडीआई और नए व्यापार समझौते अर्थव्यवस्था को मजबूत कर रहे हैं। पश्चिम एशिया संकट के कारण आपूर्ति में बाधाओं से महंगाई का दबाव है। अनिश्चितता की इस स्थिति में भारत सभी क्षेत्रों में मजबूत बना हुआ है।
1: पश्चिम एशिया और विभिन्न अनिश्चितताएं जो पिछले हाल के समय में हमने देखी हैं, उसके बावजूद आपको मालूम है कई वर्षों से और पिछले वर्ष भी हमारी आर्थिक वृद्धि दर 7% से अधिक रही है। पिछले वर्ष 7.7% थी और इस वर्ष भी हमारा अनुमान है, जो हमने अपनी एमपीसी की आखिरी बैठक में हमने जब अनुमान दिया तो इस वर्ष भी हमने अनुमान लगाया है कि 6.6%। अधिक अनिश्चितता के बावजूद एक अच्छा आंकड़ा मैं मानता हूँ।
0: कौशल, रोजगार और उद्यमिता विभाग की ओर से आज जयपुर में रोजगार सहायता शिविर लगाया गया। इसमें 50 से अधिक कंपनियों ने विभिन्न पदों के लिए सैकड़ों आशार्थियों का चयन किया। उद्योग मंत्री कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ ने रोजगार सहायता शिविर को संबोधित किया। उन्होंने स्थानीय स्तर पर ही युवाओं को कौशल आधारित रोजगार देने की बात कही। श्री राठौड़ ने बताया कि सरकार अब तक 24 रोजगार मेले आयोजित कर चुकी है।
2: काम सीखेंगे तो जीवन में और आगे बढ़ेंगे, और ये आप सीढ़ी मान लीजिए कि सीढ़ी का सबसे पहला कदम है आज का रोजगार मेला। इस रोजगार मेले में पहला कदम लोगे, संभव है किसी और के लिए आज नौकरी शुरू करोगे लेकिन कल खुद का रोजगार लगाओगे और दूसरों को रोजगार देंगे।
0: राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने आज भरतपुर के भुसावर में नए कृषि महाविद्यालय भवन का लोकार्पण किया। इस दौरान श्री बागड़े ने विभिन्न विकास कार्यों की भी सौगात दी। राज्यपाल ने महाविद्यालय परिसर का भ्रमण कर विभिन्न सुविधाओं का जायजा लिया। उन्होंने किसानों से जैविक खेती को लेकर भी चर्चा की। कार्यक्रम में कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा भी शामिल हुए। संसद का मॉनसून सत्र 20 जुलाई से शुरू हो रहा है। इससे पहले आज नई दिल्ली में एनडीए के मंत्रियों के समूह की बैठक हुई। केंद्रीय मंत्री अमित शाह, राजनाथ सिंह, राजीव रंजन सिंह, केंजराबू राम मोहन नायडू और किरेन रिजिजू बैठक में मौजूद रहे। बैठक में संसदीय सत्र की रणनीति पर चर्चा की गई। मॉनसून सत्र के दौरान कई महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा और उन्हें पारित करवाने का कार्यक्रम है। सत्र से पहले 19 जुलाई को सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। राज्य सरकार ने आरजीएचएस में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए किसी भी तरह की वित्तीय और अन्य गड़बड़ियों के लिए जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई है। इसके तहत बीते 3 महीनों में 51 संबद्ध अस्पतालों को योजना से निलंबित किया गया है। चिकित्सा और स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह खेवसर ने बताया कि सरकार अनियमितता करने वालों पर सख्त कार्रवाई कर रही है। उन्होंने बताया कि पिछले 1 महीने में 24 अस्पतालों पर कार्रवाई कर करीब 3 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया है। चिकित्सा विभाग की प्रमुख शासन सचिव गायत्री राठौड़ ने बताया कि इन अस्पतालों की ऑडिट में कई गंभीर वित्तीय गड़बड़ियां सामने आई हैं। उन्होंने बताया कि ऑडिट प्रणाली को और मजबूत किया जाएगा। राजस्थान पुलिस की ओर से साइबर अपराधियों पर नकेल कसने के लिए ऑपरेशन साइबर शील्ड और म्यूल हंटर सहित कई विशेष अभियान चलाए जा रहे हैं। इनके जरिए साइबर ठगों की गतिविधियों का पता लगाने के साथ ही संदिग्ध बैंक खातों, सिम कार्ड्स और अवैध मोबाइल नंबरों को ब्लॉक किया जा रहा है। भिवाड़ी में कल डिजिटल अरेस्ट और फर्जी वारंट का डर दिखाकर लोगों से ठगी करने वाले एक अंतर्राष्ट्रीय गिरोह का पर्दाफाश किया गया। भिवाड़ी पुलिस अधीक्षक ब्रजेश उपाध्याय ने बताया कि इस गिरोह ने कई राज्यों में लोगों को अपना शिकार बनाया। ये कार्रवाई भिवाड़ी एसएचओ सचिन शर्मा की अगुवाई में की गई।
3: ये जो गिरोह है इसने जो कबूला अभी प्रथम दृष्टया $1,00,000 से ज्यादा का, मतलब 96 लाख आज की अगर करेंसी रेट देखें उससे ज्यादा का फ्रॉड तो हमें खुलासा हो चुका है। इसके पीछे और भी क्या लेयर हैं और भी कितने लोग इन्वॉल्व हैं और कितने और लोगों को ठगा जा रहा है उसका अनुसंधान जारी है।
0: कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न की रोकथाम, निषेध और निवारण अधिनियम 2013 पर आज से नई दिल्ली में राष्ट्रीय जागरूकता कार्यक्रम की शुरुआत हुई। 2 दिन का ये आयोजन राष्ट्रीय महिला आयोग की ओर से रखा गया है। इस अवसर पर केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कहा कि महिला नेतृत्व वाले विकास के संकल्प को आगे बढ़ाने के लिए कार्यस्थलों पर सुरक्षित और गरिमापूर्ण माहौल आवश्यक है। उन्होंने कहा कि प्रत्येक महिला को बिना डर के काम करने का अधिकार है। सुरक्षित कार्य वातावरण बनाना सरकार, संस्थानों और नियोक्ताओं की साझा जिम्मेदारी है। आज दहेज प्रतिषेध दिवस है। लोगों को दहेज प्रथा के खिलाफ जागरूक करने के लिए इस दिन कई कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। दहेज यानी शादी के लिए किसी भी तरह की संपत्ति या कीमती वस्तु मांगना एक सामाजिक कुरीति होने के साथ ही दंडनीय अपराध है। दहेज निषेध अधिनियम के तहत जुर्माने और सजा दोनों का प्रावधान है। दहेज प्रतिषेध दिवस के मौके पर पाली के राजकीय कन्या महाविद्यालय में जागरूकता कार्यक्रम रखा गया। इसमें छात्राओं को इस सामाजिक कुरीति के नुकसान के बारे में बताया गया और दहेज मुक्त समाज के निर्माण का संदेश दिया गया। भारत टैक्स 2026 का आज नई दिल्ली में समापन हुआ। चार दिन के इस सम्मेलन में वस्त्र निर्माण, नवाचार और निवेश को मजबूत करने के लिए मंथन किया गया। सम्मेलन में 138 देशों के 1600 से अधिक प्रदर्शकों ने हिस्सा लिया। इसमें 11000 से ज्यादा खरीददारों ने भाग लिया, जिनमें 6000 से अधिक अंतर्राष्ट्रीय थे। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत हाइड्रोजन से ट्रेन चलाने वाला दुनिया का पांचवा देश बना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे आत्मनिर्भर भारत और हरित ऊर्जा संकल्प की जीत बताया। आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा ने कहा, पश्चिम एशिया तनाव के बावजूद देश की अर्थव्यवस्था मजबूत। राज्य सरकार ने आरजीएचएस में वित्तीय गड़बड़ियां करने पर बीते 3 महीनों में 51 अस्पतालों को योजना से निलंबित किया। और राजस्थान पुलिस ने भिवाड़ी से साइबर अपराधियों के अंतर्राष्ट्रीय गिरोह का पर्दाफाश किया। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार। ये आकाशवाणी जयपुर अजमेर है। अब आप माधुरी वशिष्ठ से राजसमंद जिले की चिट्ठी सुनिए। इसका आलेख दिनेश श्रोत्रिय ने तैयार किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पचपदरा में रिफाइनरी उद्घाटन समारोह का लाइव प्रसारण राजसमंद में भी दिखाया गया। जिला स्तरीय समारोह में राज्य मंत्री ओटाराम देवासी ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। इस अवसर पर जिले में 402 नवनियुक्त कार्मिकों को नियुक्ति पत्र और वेलकम किट वितरित किए गए। जिले में पिछले दिनों अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर नौचौकी पाल पर जिला स्तरीय योगाभ्यास कार्यक्रम आयोजित किया गया। जिला प्रशासन और आयुर्वेद विभाग की ओर से आयोजित कार्यक्रम में 2390 योग साधकों ने सामूहिक योग कर स्वस्थ जीवन का संदेश दिया। कार्यक्रम में सांसद महिमा कुमारी मेवाड़, विधायक दीप्ति माहेश्वरी, जिला कलेक्टर अरुण कुमार हसीजा और पुलिस अधीक्षक हेमंत कलाल सहित बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। हल्दीघाटी की ऐतिहासिक धरती पर वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की 486वीं जयंती श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाई गई। इस अवसर पर अरण्य बाग परिसर में 3 दिवसीय मेले का आयोजन किया गया। इस दौरान महाराणा प्रताप के शौर्य, स्वाभिमान और त्याग को याद किया गया। वहीं चेतक की स्मृति में अश्व प्रतियोगिता भी हुई। महाराणा प्रताप जयंती के अवसर पर मचींद गांव में राणा पूंजा पर्यटन स्थल पर 2 दिन का मेला लगाया गया। पहाड़ चढ़ाई प्रतियोगिता के साथ मेले में भील समाज की वीरता और संस्कृति की झलक देखने को मिली। तीरंदाजी, रस्ता कशी, कबड्डी सहित प्रतियोगिताओं में लोगों ने उत्साह से भाग लिया। राज्यपाल हरिभाव किशन राव बागड़े ने विश्व धरोहर कुंभलगढ़ दुर्ग का बीते दिनों अवलोकन किया। राज्यपाल दुर्ग परिसर में बनी महाराणा प्रताप की जन्मस्थली पहुंचे। इस दौरान उन्होंने दुर्ग का पैदल ही अवलोकन करते हुए ऐतिहासिक धरोहर की भव्यता और स्थापत्य कला को नजदीक से देखा। राज्यपाल ने दुर्ग की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्ता के संबंध में जानकारी प्राप्त की, इसके संरक्षण तथा संवर्धन के लिए किए जा रहे प्रयासों की सराहना की। राजसमंद पुलिस की ओर से देवगढ़ में साइबर जागरूकता कार्यशाला आयोजित की गई। पुलिस अधिकारियों ने सोशल मीडिया, मजबूत पासवर्ड, 2-फैक्टर ऑथेंटिकेशन और ऑनलाइन ठगी से बचने के उपाय बताए। राजसमंद के भीम उपखंड में डिजिटल प्रहरी प्रशिक्षण भी आयोजित किया गया। साइबर पुलिस ने युवाओं को फर्जी ऐप, एपीके फाइल और ऑनलाइन ठगी से बचने के उपाय बताए। नाथद्वारा में प्रज्ञानम टेक्नोफेस्ट 2026 के तहत शिक्षा क्षेत्र में बड़ी पहल की गई। सांसद महिमा कुमारी मेवाड़

0: और विधायक विश्वराज सिंह मेवाड़ की संयुक्त पहल से जिले के 100 सरकारी स्कूलों में प्रगति और स्टीम लैब स्थापित होंगी। इन लैबों में विद्यार्थियों को AI, रोबोटिक्स, कोडिंग, ड्रोन टेक्नोलॉजी और 3D प्रिंटिंग जैसी आधुनिक तकनीकों का व्यवहारिक प्रशिक्षण दिया जाएगा। पिछले दिनों नाथद्वारा में आयोजित शहरी सेवा शिविर का जिला प्रभारी सचिव आरती डोगरा ने निरीक्षण किया। उन्होंने शिविर की व्यवस्थाओं का जायजा लेते हुए अधिकारियों को आमजन के कामों को तुरंत निस्तारित करने के निर्देश दिए। राजसमंद में रिजर्व पुलिस लाइन में पुलिस संपर्क सभा का आयोजन किया गया। सभा में पुलिस जवानों ने अपनी सेवा संबंधी आवास, स्वास्थ्य और ड्यूटी प्रबंधन से जुड़ी समस्याएं रखी। पुलिस अधीक्षक ने समस्याओं को गंभीरता से सुनते हुए कई मामलों का मौके पर समाधान किया और अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। श्रीनाथ जी मंदिर नाथद्वारा में श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए नए प्रवेश द्वार का निर्माण किया जाएगा। लक्ष्मी विलास धर्मशाला के पास बनने वाले इस द्वार का भूमि पूजन वैदिक मंत्रोच्चार के साथ किया गया। जिले में निर्जला एकादशी पर्व श्रद्धा और आस्था के साथ मनाया गया। इस अवसर पर मेवाड़ के प्रसिद्ध धाम चारभुजानाथ मंदिर में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने दर्शन किए। व्रतधारी महिलाओं ने मंगल गीत गाते हुए जल कलश अर्पित किए और परिवार की सुख समृद्धि की कामना की। इसी के साथ राजसमंद जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।
1: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर हूँ। पेश है प्रादेशिक समाचार। खास समाचार, भारत हाइड्रोजन रेल चलावन वालों दुनिया रो पांचवो देश बनियो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन खुद रेपाण उबो भारत बनावन और हरित ऊर्जा संकल्प री जीत बतायो। RBI रा गवर्नर संजय मल्होत्रा कहो, पश्चिम एशिया में तनातनी रा हालात रे बावजूद देश री माली व्यवस्था मजबूत। राज्य सरकार RGHS में माली गड़बड़िया करण रा आरोप में लाडला 3 महीना में 51 अस्पताल ने योजनाओं हटाया। और राजस्थान पुलिस भिवाड़ी साइबर अपराधियों रा अंतर्राष्ट्रीय गिरोह रो भंडाफोड़ किन्नो। समाचार सागे मैं सुदर्शन नाहर। अरब समाचार विगतवार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हाइड्रोजन चालन वाली देश की पहली रेलगाड़ी ने आज हरियाणा में जींद रवाना की। आ गाड़ी जींद सोनीपत बीच चलाई जा रही है। ये मौके श्री मोदी 12,470 करोड़ रुपयों बत्ता खर्च वाली नेशनल हाईवे परियोजनावां री शुरुआत की और पूरा भया काम जनता ने सौंपया। प्रधानमंत्री कहो कि लाडला 12 साल में रेलवे में खास बदलाव करी चिया। श्री मोदी कहो कि 21वीं सदी री रेल व्यवस्था हाइड्रोजन प्रौद्योगिकी ऊंचा लेला। प्रधानमंत्री कहो कि मौजूदा दौर में दुनिया रा केवल 3-4 देशा के नहीं हाइड्रोजन ट्रेन चलावन रो बूतो है। इस आगे भारत हाइड्रोजन रेल चलावन वालो पांचवो देश बन गयो है। हाल तक जर्मनी, जापान, चीन और अमरीका में ही ओ सुबितो है। 10 डिब्बा वाली ई रेलगाड़ी में 2600 मुसाफिर सफर कर सके है। दूजा देशों में हाइड्रोजन चलाई जावन वाली रेलगाड़ियां में 2 या 3 डिब्बा फे है। प्रधानमंत्री कहो के 3200 हॉर्स पावर बूता वाली भारत री हाइड्रोजन ट्रेन दुनिया री सब ताकतवर और हाइड्रोजन चालन वाली लंबी रेलगाड़ियां में शामिल है।
2: 20वीं सदी की पहचान डीजल और बिजली से चलने वाली रेल बनी और अब 21वीं सदी की रेल हाइड्रोजन से चलने वाली है। आज भारतीय रेल ने भी 21वीं सदी की इस टेक्नोलॉजी में एक बड़ा स्टेप लिया है। आज हाइड्रोजन ट्रेन चली है। अभी ये सफर 90 किलोमीटर का है, लेकिन भविष्य में इसका विस्तार होने की बहुत संभावनाएं हैं।
1: ये मौके रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव हाइड्रोजन और चालन वाले नमो ग्रीन रेलगाड़ी री शुरुआत ने देश री तकनीकी बरकत में ऐतिहासिक उपलब्धि बतायो। श्री वैष्णव कहो कि आ गाड़ी पूरी तरह पर्यावरण अनुकूल है और इनमें डीजल री जरूरत नहीं है।
3: ये देश के लिए गौरव की बात है, विशेषकर इंजीनियर्स के लिए गौरव की बात है कि देश में इतनी कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी को डेवलप किया गया है। न्यू एनर्जी है, न्यू फ्यूल है, इस फ्यूल का ट्रांसपोर्टेशन में कैसे यूज हो, उसकी टेक्नोलॉजी भारत में कैसे डेवलप हो, आत्मनिर्भर भारत की स्वदेशी टेक्नोलॉजी ये बनाना, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। और ये आज एक बड़ा माइलस्टोन है रेलवे के लिए कि पूरी टेक्नोलॉजी भारत में बनी, आईपी राइट्स भारत में। इसमें सेफ्टी सिस्टम्स का बहुत लंबे समय से बहुत एक कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट किया गया है।
1: प्रधानमंत्री आज चंडीगढ़ में स्वास्थ्य, भणाई लिखाई और सड़क हलकाओं जुड़ी विकास रे करीब 4,700 करोड़ रुपए की परियोजनाओं रे शुरुआत की। इन पाछे श्री मोदी देश भर में और बेहतर बनाई जा 75 रेलवे स्टेशन रो पंजाब राज जालंधर कैंटू वर्चुअल तरीका उद्घाटन किन्नो। आ माए राज्य रा जैसलमेर, बाड़मेर, दौसा, डीग, गंगापुर सिटी, गोटन, खैरथल और सोमेसरी शामिल है। आ स्टेशन माथे राखी जा कार्यक्रम माई वचेरा जनता रा नुमाइंदा, अहलकार और मोटी तादाद माई लोग भेड़ा थिया। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्माई नागौर जिला रा गोटन रेलवे स्टेशन माथे राखी जा कार्यक्रम माई शामिल थिया। ई मौके श्री शर्मा कहो के ओ विकसित भारत बनावन रो संकल्प साचो करण री दिशा माई खास कदम है।
4: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का विकसित भारत का जो विजन है उस संकल्प के साथ गति देने के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य आज हुआ है। प्रधानमंत्री जी का संकल्प है कि भारत के रेलवे स्टेशन, ट्रेनें, रेल की पटरियां और सुरक्षा की दृष्टि से हमारा ये रेलवे विभाग किस तरह से मजबूत हो सकता है और राजस्थान और देश में किस तरह से इसकी प्रगति हो रही है।
1: भारतीय रिजर्व बैंक रा गवर्नर संजय मल्होत्रा कहो है कि मध्य पूर्व में उपजी तनातनी रह बावजूद भारत री माली व्यवस्था मजबूत बनी है। डीडी न्यूज चैनल सागे बातचीत करता था का श्री मल्होत्रा कहो कि भारत कानियों दिशावर माए भांत भांत री सेवा मुहैया करावणो, रिकॉर्ड प्रत्यक्ष विदेशी निवेश FDI और नुआ कारोबारी करार माली व्यवस्था ने मजबूत बना रहा है। वह कहो कि अनिश्चितता रा हालात माई भारत सगड़ा हलका माई मजबूत बनियोड़ो है।
5: पश्चिम एशिया और विभिन्न अनिश्चितताएं जो पिछले हाल के समय में हमने देखी हैं, उसके बावजूद आपको मालूम है कई वर्षों से और पिछले वर्ष भी हमारी आर्थिक वृद्धि दर 7% से अधिक रही है। पिछले वर्ष 7.7% थी और इस वर्ष भी हमारा अनुमान है जो हमने अपनी MPC की आखिरी बैठक में हमने जब अनुमान दिया तो इस वर्ष भी हमने अनुमान लगाया है कि 6.6%। अधिक अनिश्चितता के बावजूद एक अच्छा आंकड़ा मैं मानता हूँ।
1: कौशल, रोजगार और उद्यमिता विभाग की ओर आज जयपुर में रोजगार सहायता शिविर लगाई चियो। इनमें 50-32 कंपनियां न्यारा न्यारा ओहदा सारू उम्मीदवारा ने नौकरी रा प्रस्ताव दीना। ई मौके उद्योग मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ स्थानीय स्तर माथे ही नौजवाना ने कौशल आधारित रोजगार देवण री अरज कीनी। कर्नल राठौड़ बतायो कि सरकार हाल ताई 24 रोजगार मेला लगा चुकी है।
6: काम सीखेंगे तो जीवन में और आगे बढ़ेंगे और ये आप सीढ़ी मान लीजिए कि सीढ़ी का सबसे पहला कदम है आज का रोजगार मेला। इस रोजगार मेले में पहला कदम लोगे, संभव है किसी और के लिए आज नौकरी शुरू करोगे लेकिन कल खुद का रोजगार लगाओगे और दूसरों को रोजगार देंगे।
1: राज्यपाल हरिभाव बागड़े आज भरतपुर जिला रा भुसावर माए एग्रीकल्चर कॉलेज रो नुवो भवन जनता ने सौंपियो। ई मौके राज्यपाल कॉलेज परिसर रो दौरो कर वचे मुहैया कराया जा रहा न्यारा न्यारा सुबिता रो जायजो लीनो। वह किसाना सागर जैविक खेती रे बारा माए चर्चा कीनी। कार्यक्रम माए कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणाई मौजूद रहा। संसद रो पावस सत्र 20 जुलाई शुरू फैला अनु पहले आज नई दिल्ली माए NDA रा मंत्रियां रा समूह री मीटिंग रखी जी। केंद्रीय मंत्री अमित शाह, राजनाथ सिंह, राजीव रंजन सिंह, किंजरापुर राम मोहन नायडू और किरेन रिजिजू मीटिंग में शामिल थिया। मीटिंग में संसदीय सत्र री रणनीति रे बारा में चर्चा करी ची। सत्रों पहली 19 जुलाई ने सगली पार्टियां ने मीटिंग बुलाई ची है। समाचार आप आकाशवाणी जयपुर अजमेर सुन रहा हो। राज्य सरकार राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम RGHS माय साफ कोई जवाबदेही तय करण सारू अपनाई जी जीरो टॉलरेंस नीति रहते

0: लाडला तीन महीना माए 51 संबद्ध अस्पतालों ने योजनाओं हटा दी ना। चिकित्सा और स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर बतायो कि लाडला महीना 24 अस्पतालों माथे गड़बड़ियां रा आरोप माए करीब 3 करोड़ रुपया रो जुर्मानो लगाईचियो। चिकित्सा विभाग री प्रमुख शासन सचिव गायत्री राठौड़ बतायो कि आ अस्पतालों री ऑडिट माए कई माली गड़बड़ियां सामी आई। साइबर अपराधियां माथे काबू करण सारू राजस्थान पुलिस री ओर ऑपरेशन साइबर शील्ड और म्यूल हंटर समेत कई खास अभियान चलाया जा रहा है। इरे जरिए साइबर ठगा री करतूता री ठा करण सा गई शंका वाला बैंक खाता मोबाइल सिम कार्ड्स और गैर कानूनी तरीकों चलाया जा रहा मोबाइल नंबर ब्लॉक करया जा रहा है। दुनियारा न्यारा न्यारा हलका माए डिजिटल अरेस्ट और फर्जी वारंट रो डर बतार ठगी करण वाला एक गिरोह रो भिवाड़ी रा एसएचओ सचिन शर्मा री अगुवाई माए भांडाफोड़ करीचियो। भिवाड़ी रा एसपी ब्रजेश उपाध्याय बतायो कि ओ गिरोह कई राज्य माए ठगी री वारदातां कीनी।
1: ये जो गिरोह है इसने अभी तक इसने जो कबूला अभी प्रथम दृष्टया $1,00,000 से ज्यादा का मतलब 96 लाख आज की अगर करेंसी रेट देखें उससे ज्यादा का फ्रॉड तो हमें खुलासा हो चुका है। इसके पीछे और भी क्या लेयर हैं और भी कितने लोग इन्वॉल्व हैं और कितने और लोगों को ठगा जा रहा है उसका अनुसंधान जारी है।
0: कार्यस्थल पर महिलाओं के खिलाफ यौन उत्पीड़न की रोकथाम निषेध और निवारण कानून 2013 रे बारा माए आज नई दिल्ली माए राष्ट्रीय जागरूकता कार्यक्रम शुरू हुयो। 2 दिन रो ओ कार्यक्रम राष्ट्रीय महिला आयोग री ओर राख्यो जा रियो है। ई मौके केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी कहो के महिलाओं री अगुवाई माए विकास रा संकल्प ने आगे बढ़ावन सारू काम रिथॉर्ड सुरक्षित और मान वालो माहौल जरूरी है। वह कहो कि हर महिला ने बिना डर काम करण रो हक है और काम रो सुरक्षित वातावरण बनावनो सरकार संस्थाना और नौकरी देवन वाला री भेली जिम्मेदारी है। केंद्र सरकार खिलाड़ियां कानियो रोक लगायोड़ी दवाइयां काम लेवन ने रोकण सारू राष्ट्रीय डोपिंग रोधी कानून 2022 और राष्ट्रीय डोपिंग रोधी संशोधन कानून 2025 लागू करण रो ऐलान कीनो है। वो कानून देश रा डोपिंग रोधी ढांचा ने वैश्विक मानका ने मुजब मजबूत बनावे है और नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी नाडा ने जांच रो हक देवे है। कपड़ा हलकाओं जुड़ियो भारत टैक्स 2026 सम्मेलन आज नई दिल्ली माए पूरो भेग्यो। 4 दिन रा ई सम्मेलन माए कपड़ा बनावण ई हलका माए नुआ काम करण और निवेश न मजबूत करण रे बारा माए चर्चा करी जी। सम्मेलन माए 1,600 प्रदर्शक शामिल थिया। इन माए 11,000 खरीददार ई शामिल थिया जा माए 6,000 दूजा देशा रहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 26 जुलाई दीतवार ने आकाशवाणी प्रसारित करिया जावन वाला खास कार्यक्रम मन की बात माए विचार बतावेला। हाँ हर महीना प्रसारित करिया जावन वाला इन कार्यक्रम री 136वीं कड़ी फैला। इसारू आप ही सुझाव 24 जुलाई ताई मुफ्त नंबर 1800117800 माथे भेज सको हो। नरेंद्र मोदी ऐप और माई GOV ओपन फोरम रे जरिए ही विचार भेजा जा सके है। आखिर माए खास समाचार एक कर फिर सुन ले रहो। भारत हाइड्रोजन नो रेल चलावन वालो दुनिया रो 5वो देश बनियो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इनने कुदरे पान उबो भारत बनावन और हरित ऊर्जा संकल्प री जीत बतायो। RBI रा गवर्नर संजय मल्होत्रा कहो पश्चिम एशिया माए तनातनी रा हालात रे बावजूद देश री माली व्यवस्था मजबूत। राज्य सरकार RGHS माए माली गड़बड़ियां करण रा आरोप माए लाडला 3 महीना माए 51 अस्पतालों ने योजनाओं हटाया और राजस्थान पुलिस भिवाड़ी उ साइबर अपराधियां रा अंतरराष्ट्रीय गिरोह रो भंडाफोड़ कीनो। इसागी प्रादेशिक समाचार बुलेटिन पूरो भयो। मानो अगलो समाचार बुलेटिन काल सवेरे 9 बजे हिंदी माए प्रसारित करियो जावेला। नमस्कार।
2: FM बैंड 101.8 MHz पर आकाशवाणी जैसलमेर का ये गोल्डन सिटी चैनल है। शाम के 7 बजे हैं। आइए सुनते हैं हमारे ग्रामीण भाइयों के लिए कार्यक्रम ग्राम जगत।

राम जगत कार्यक्रम सुन रहा सिंह ग्रामीण भाइयों ना खेला भाईरा गाना राम राम भाइयों के कार्यक्रम अपने खेती किसानी से संबंधित जरूर है पर ये साथ साथ मैं जो को हमारी आम जिंदगी से जोड़ा विषय है और इधर मैं आज रोज को दिन है वो अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस के रूप में मनाया जावे तो प्रत्येक वर्ष जो 17 जुलाई है ये दिन दिवस मनाया जावे और यह दिन जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर मत है न्याय मानवाधिकार और रक्षा और गंभीर अपराधों जो युद्ध अपराध और नरसंहार के खिलाफ जवाबदेही सुनिश्चित करने का संदेश दिया करे। ये सु जोड़ी जो को मुख्य बात है वो है कि भाई 17 जुलाई 1998 रोम संधि जो थी समझी वे अपनाए गए तो और ये आधार मत अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय ICC जी जो है इंटरनेशनल क्राइम कोर्ट की स्थापना हुई थी और ये उद्देश्य है दुनिया भर में पीड़ितों के अधिकारों को बढ़ावा देना मानवता के खिलाफ होने वाले अपराधों को रोकना और कानून शासन मजबूत करना। ये मैं अगर आप ये कार्य प्रणाली और विस्तार से आप समझो तो ये मुख्य उद्देश्य यही है कि हर व्यक्ति जो है लारे आप जो कह सकें कि भाई आर्थिक और आप ही जो है समाज री एक स्तरता अनुसार तो मजबूत होने हो सके कि भाई वो पूरे कानून और जानकारी रखे या वो मतलब जो है हर चीज़ वास्ते आगे आए और आप ही लड़ाई लड़ सके तो यहाँ सब चीज़ों ना जो को है देखते हुए मद्देनजर रखते हुए जो भी लोग शोषित लोग है या जो खिलाफ कोई भी प्रकार हमारे मानवाधिकारों का हनन हो रही है या जो है अंतर्राष्ट्रीय जो को युद्ध अपराध भी होया करे वेरा वो पीड़ित है वेरे साथ साथ में मानवता के खिलाफ तो आप जो बात करें मानवाधिकार का हनन है लेकिन जो को ये तरीके की है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर में थे कहना न्याय नहीं मिले तो वो सब चीज़ों ना देखते हुए अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस में मनाने रो एक अपनाए गए निर्णय लियो गयो और ये मैं जो को है ये दिन अलग अलग जो को है आप कह सको कार्यशालाएं होया करे लोगों ने जागरूकता वास्ते जो को है कई तरीके से प्रशिक्षित किया जावे तो वे प्रदर्शनियाँ लगे और ये दिन जो को है संदेश ये तरीके प्रसारित किया जावे तो लोग आप रे जो को है अगर पीड़ित है तो आप रे अधिकारों रे प्रति सजग हो सके और कई तरीके से न्याय पा सके वो बारे में वो जागरूक हुए ये तरीके की जागरूकता फैलाने वास्ते जो को है न्याय दिवस भी मनाया जाए और ये तरीके का तमाम जो को दिवस है वो विशेष तौर से जो को है वे दिन विशेष न वो चीज़ों वास्ते लोगों में जागरूकता और लोगों ने मतलब वे प्रति जो को है संवेदनशील करे कि लोगों का आपका अधिकार और लोग आपका दायित्व समझ सके ये वास्ते अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस और बाकी दिवस मनाया जाए और जो को लोगों ने भी कुछ इधर करी अगर दिक्कतों हुए समस्याएं हुए कोई पीड़ित हुए

उमर वास्ते जो है जिला स्तर मथे भी जो है न्याय सहायता फोरम रो भी गठन किया गया। वो तो जाहिर मतलब आप री समस्याएं बताए और एक न्याय प्राप्ति के वास्ते आगे बढ़ सके। और आप कार्यक्रम रेम आप एक और चीज़ आज निश्चित वहाँ पर सामाजिक रूप से जो है जरूरी है और निश्चित रूप से आज भी वो प्रथा चल रही है, तो एक वो आप वास्ते शर्मिंदगी की बात है। आज जो है दहेज प्रतिषेध दिवस भी है, तो दहेज जो है जब शुरुआत हुई थी तो निश्चित रूप से वे मतलब एक उद्देश्य या वो जो मकसद तो वो दिखाओ करनो या जो है कहना प्रताड़ित कर और जबरदस्ती कुछ चीज़ों की मांग करनी या दहेज निश्चित रूप से को नहीं। तो एक नवविवाहित जोड़ो दंपति आप नई जिंदगी शुरुआत करे और एक ने एक मूलभूत आवश्यकता की चीज़ों है तो आपकी शुरुआत आसानी से कर सके। ये चीज़ न ध्यान में रखते हुए कुछ चीज़ों शादी के समय में माता पिता द्वारा जो है लड़की न देवनी प्रथा चली थी, लेकिन बाद में कालांतर में धीरे धीरे जो है ये प्रथा एक विकृत रूप ले लियो और दहेज एक प्रकार से जो है दूल्हे रो या वर रो मूल्य हुई जो वह बोली लगानी चालू हुई ये तरीके की प्रथा बनी और लड़की माता पिता से जो है जबरन और कई मामलों में तो जो है शादी रे बाद में भी या बारात पहुँचने के बाद में उनसे एकदम से जो है मांग की गई और बहुत बड़ी बड़ी मांग की गई और अन्यथा मतलब बारात लौटा भी आप समाचार माध्यम से आप सुनाए। हालांकि ये में जागरूकता आई है और जो है कई लड़कियों या आप जैसे नव वधू जो बनने वाली थे वो ये चीज़ रो प्रतिकार कियो और वो बारात में खुद वहाँ लौटा जी कह दिया कि भाई मोना यार साथ में शादी करनी भी होनी, पर ये आगे बढ़ के भी शादी के बाद में भी प्रताड़ना हुई लड़कियाँ रही और वहाँ रही जो है हत्याएँ तक किया गया। तो ये वास्ते कानून तो बहुत बढ़िया है और वे वजह से जो अपराधों में ये तरीके अपराधों दहेज अपराधों में कमी तो आई है, पर आज भी जो है यदा कदा ये तरीके मतलब अपना समाचार सुनने मिले कि दहेज वास्ते प्रताड़ित हो गए या दहेज की मांग रे वजह से दहेज के कारण से बाद में हत्या कर दी गई। हालांकि हर सिक्के का दो पहलू है, कई बार जो है कुछ लड़कियाँ गलत कारणों से बीजे कारणों से भी तरीके का आरोप लगाया करे, पर निश्चित रूप से जो है आज भी दहेज प्रथा का दुष्प्रभाव आज भी जारी है। दहेज प्रथा री लोगों की जो लालच री सोच है वो निश्चित रूप से कुछ लोगों में आज भी कायम है और ये रोकथाम वास्ते ये जागरूकता बढ़ाने वास्ते दहेज प्रतिषेध दिवस रूप में इन्हें मनाया जाए कि लोग ये दुष्प्रभावों के बारे में ये जो है गलतियों के बारे में लोग समझ सके समझ सके। तो आप सब लोग आज एक शपथ लो आप एक मन में मतलब जो कोई बात करो कि आप कोई हालत में न दहेज ले सो न दहेज दे सो और आगे भी आप बढ़िया बातचीत कर सो। प्रभु से पहले एक बढ़िया लोकगीत जो बोल है रेणमल और ये न गायो है मुल्तान खां पार्टी तो है बढ़िया गीत सुना आप।

हानि रहित उत्पाद उत्पादन आप करजे और वही आप कीमत भी जो अधिकतम मिले। खेत की जो मृदा है उन्हें जो नुकसान है वो सने सने कम भी पूरा उपजाऊपण धीरे बढ़िया करे। और वे साथ में मल्टी लेयर फार्मिंग कहना आप कहे कि भाई पारंपरिक फसलों रे साथ साथ में एक खेत में सब्जियों और कुछ फलों री जो है आधुनिक बेलों लगाए जमीन रे मत जो है वो पहले खेती हो रही है अनाज या धान री और वे ऊपर जो है बांस या जो बीजा अन्य बंबू खड़ा कर और वे मत बेलों लगाए और वो वजह वे सो जो है कुछ कद्दू वर्गीय फसलों या मतलब फलों री भी खेती कर और महिलाएं जो शिक्षित महिला किसान आपकी आय न कई गुना बढ़ाए रहे हैं। यार शिक्षित महिला उनके प्रभाव पड़ेगा और डिजिटल कृषि उपकरण मिट्टी परीक्षण रिपोर्ट और मौसम पूर्वानुमान है जो ऐप्स है जिन्हें आसानी से समझ सके और स्वयं सहायता समूह से जुड़न आसानी से जो है कृषि ऋण वगैरह ले और आप कृषि क्षेत्र में जो आप कौम और विकास कर सके विस्तार कर सके जिसमें कृषि सखी योजना या महिला किसान योजना भी है और जो केवी के कृषि विज्ञान केंद्र है वो महिलाओं ने जो है सरकारी प्रशिक्षण भी दिया करे विशेष रूप से तो वो में भी जो है पढ़ी लिखी महिलाएं किसान जो है सम्मिलित हुए और आप रे खेती न आधुनिक कई तरीके से करें ये बारे में जानकारी प्राप्त कर सके। तो और साथ ही साथ जो फसल हुई तो वो संरक्षण कई तरीके से करना वो फसल न कई मंडी में अधिकतम जो है भाव मिल रहा है ये बारे में भी है जो है आधुनिक संचार माध्यमों डिजिटल रूप से पता कर सके। तो कुल मिला है जो है यहाँ फायदा ही फायदा है और जाते जाते एक बढ़िया लोक भजन सुनो बंदूकों पार्टी आवाज़ में जरा बोल है राधा रानी।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे हमारे ग्रामीण भाइयों के लिए कार्यक्रम ग्राम जगत। FM बैंड 101.8 MHz पर आकाशवाणी जैसलमेर का ये गोल्डन सिटी चैनल है। 7:30 हुए हैं, आइए सुनते हैं राजस्थानी लोक संगीत। राजस्थानी लोक संगीत में आज आप सुनेंगे सीमा मिश्रा के गाए कुछ लोकगीत।

0: 26 को माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने जैसलमेर के पुनर्निर्मित रेलवे स्टेशन का वर्चुअल माध्यम से उद्घाटन किया। इस अवसर पर जैसलमेर रेलवे स्टेशन पर एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में केंद्रीय पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री श्री गजेंद्र सिंह शेखावत, जैसलमेर के विधायक श्री छोटू सिंह भाटी, पोकरण विधायक श्री प्रतापपुरी महाराज व जैसलमेर के गणमान्य नागरिक और स्कूली बच्चे उपस्थित रहे।
1: दोस्तों, इस समय मैं हूं जैसलमेर के नव निर्मित रेलवे स्टेशन पर और मैं आज यहां से देख पा रहा हूं कि बहुत ही खूबसूरत ये रेलवे स्टेशन बनाया गया है और आज जैसलमेर वासियों के लिए बहुत ही शुभ दिन है। और वो शुभ दिन इसलिए कि आज इसका लोकार्पण होने जा रहा है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी इसका लोकार्पण करेंगे और मेरे साथ हैं इस समय प्रार्थना जी। प्रार्थना जी, आज हम इस रेलवे स्टेशन को देखते हैं और एक वो पुराना हमारा रेलवे स्टेशन था, बहुत अंतर आ गया है। एक ऐसा लग रहा है कि हम किसी महानगर में खड़े हुए हों। बहुत ही खूबसूरत रेलवे स्टेशन बना हुआ है ये।
2: बिल्कुल सही कह रहे हैं श्याम जी, सच में बड़ी ही गौरव की अनुभूति हो रही है। इस ऐतिहासिक पल का हम एक गवाह कह लें, एक हिस्सा बनने जा रहे हैं कि इस दृश्य को आज हम अपनी आंखों से देखेंगे। लोकार्पण आज होने जा रहा है हमारे स्वर्ण नगरी के इस रेलवे स्टेशन का। और सच बताऊं तो अंदर आते ही आपको भी शायद ऐसी फीलिंग आई होगी जैसे हम किसी रेलवे स्टेशन पर नहीं बल्कि एयरपोर्ट पे आ गए। तो जो एयरपोर्ट वाली फीलिंग होती है वो, और इतना सुंदर, इतना भव्य, और हर चारों तरफ देखिए कितनी साफ सफाई, और सच बड़ा ही गौरव का अनुभव हो रहा है आज मुझे।
1: और हमने जैसे ही गेट के अंदर एंट्री की, शुरुआत में जो गेट है भव्य, गेट के अलावा जो वेटिंग हॉल है बहुत बड़ा शानदार, और इसके अलावा टिकट काउंटर बड़ा ही खूबसूरत, जो जैसलमेर की कला यूँ सांस्कृतिक विरासत हमको चित्रों के रूप में नजर आ रही है। बड़ी खूबसूरत पेंटिंग की गई है, आपने वो नज़र डाली हो तो। उसके बाद जब हम प्लेटफॉर्म के ऊपर यहाँ पर आए तो यहाँ पर देखिए ये जो हाई क्वालिटी का ग्रेनाइट इस प्लेटफॉर्म पर लगाया गया है, और आप देख रहे होंगे कि जो, क्योंकि ये गर्म इलाका है यहाँ पर गर्मी बहुत पड़ती है तो छाया की यहाँ पर बहुत ही खूबसूरत व्यवस्था की।
2: हाँ बिल्कुल बिल्कुल, देखिए ना कितना सुंदर बना है, जैसे कोई रिसोर्ट हो या ऐसी कोई जगह, ऐसी अनुभूति हमें हो रही है। और बहुत ही सौभाग्य की बात है कि स्वर्ण नगरी की जनता को और पर्यटकों को ये अत्याधुनिक और पुनर्निर्मित रेलवे स्टेशन मिलने जा रहा है। और जो इसका सौंदर्यकरण हुआ है, पुनर्निर्माण तो हुआ ही है, इसका सौंदर्यकरण भी हुआ है। और इसमें जो सुविधाएं हैं तो वो है, इसमें देखिए 10 लिफ्ट लगी हैं, 10 एस्केलेटर लगे हैं, और 2 आधुनिक फुट ओवरब्रिज लोगों के आने जाने के लिए, और एक विशाल कॉन्कोर्स है, एसी वेटिंग रूम, आधुनिक प्रतीक्षालय, और यही नहीं दिव्यांगजन अनुकूल सुविधाएं भी यहाँ पे हैं, विस्तृत पार्किंग है, और 480 वर्ग मीटर का वाणिज्य क्षेत्र विकसित किया गया है। 3 प्लेटफॉर्म है, और सबसे अच्छी बात यह कि तीनों ही प्लेटफॉर्म पर 10,000 वर्ग मीटर से अधिक क्षेत्र में एंड टू एंड प्लेटफॉर्म शेल्टर लगाए गए हैं जिससे यात्रियों को बेहतर से बेहतर सुविधा मिल सके।
1: और साथ ही हम बात करें कि जैसलमेर से जो लंबी दूरी की जो ट्रेनों की मांग हमेशा उठती रही है, और वो इसलिए यहाँ से शुरू नहीं हो पा रही क्योंकि यहाँ पर मेंटेनेंस डिपो नहीं था, और अब यहाँ पर मेंटेनेंस डिपो बन चुका है। तो हम उम्मीद कर रहे हैं कि जैसलमेर का ये अत्याधुनिक रेलवे स्टेशन सभी सुविधाओं से लैस है, और जैसलमेर की जो स्वर्ण नगरी है, पर्यटन नगरी है, यहाँ पर यहाँ के स्थानीय निवासियों को, पर्यटकों को, और यहाँ पर क्योंकि ये सरहदी इलाका है, बहुत सारे यहाँ पर हमारे आर्मी बीएसएफ के लोग भी हैं, तो इन सबको बहुत बड़ा फायदा इस रेलवे स्टेशन के द्वारा होने वाला है। उनके जहाँ पर उनके घर जाते हैं लंबी दूरी की ट्रेन, वहाँ तक उनको ट्रेनें उपलब्ध हो सकेंगी। और आज इसका यहाँ पर लोकार्पण होने जा रहा है माननीय प्रधानमंत्री जी। एक साथ देश में बहुत सारे रेलवे स्टेशन का एक साथ यूँ कह लोकार्पण करने जा रहे हैं, तो प्रार्थना जी क्यों ना हम जो यहाँ के बहुत सारे स्थानीय निवासी हैं उनसे बात करें, इस रेलवे स्टेशन के बाद बनने के बाद में क्या कुछ यहाँ बदलाव होने वाले हैं।
2: बिल्कुल श्याम जी, यहाँ जो लोग हैं, स्थानीय निवासी हैं, और जो भी आने जाने वाले और जो प्रवासी हैं, जो हमें यहाँ आसपास दिखाई दे रहे हैं, जो अपनी यात्रा शुरू करने वाले हैं कुछ ही पलों में रेलों से, तो उनका अनुभव लेना तो बनता ही है। क्योंकि देखिए हम मानते हैं कि यात्रा की शुरुआत होती है उससे हम स्टेशन आते हैं, और जब भी जैसे कोई पर्यटक हैं तो जब वो किसी नए स्टेशन पे या अगर हम भी अगर किसी नई जगह जाएं तो सबसे पहला कदम हम रखते हैं जब ट्रेन से जाते हैं तो वो होता है वहाँ का रेलवे स्टेशन, वहाँ का प्लेटफॉर्म। तो वो अगर स्वच्छ हो, साफ सुथरा हो, और वो अगर सुंदर अच्छा बना हुआ हो, तो उसी पल मन गदगद हो उठता है, मतलब ऐसा लगता है कि हमारी यात्रा सफल रहने की कगार पर है। अब तो शुरुआत ही बहुत अच्छी हो जाती है।
1: जब शुरुआत अच्छी होगी तो अंत जो कहें कि बहुत अच्छा होना निश्चित है। तो करते हैं, बात करते हैं, बहुत सारे यहाँ स्थानीय लोग हैं और हम इनसे बात करेंगे कि जैसलमेर की ये जो रेलवे स्टेशन की सौगात आज मिलने जा रही है, इससे क्या कुछ विकास में नए पल आने वाले हैं।
2: श्रोताओं आइए अब हम बात करेंगे, स्टेशन पर अपना ही एक स्टॉल लगाते हैं, एक स्टेशन एक उत्पाद के तहत, जहाँ पे हैंडीक्राफ्ट का सामान हमें देखने को मिल रहा है, बड़ा ही सुंदर है ये। तो हम चर्चा इसी बारे में करेंगे और जानकारी लेंगे और अनुभव लेंगे हम ये भैया का। सर प्लीज आप अपना नाम बताएंगे हमें।
3: नमस्कार, मेरा नाम दीपक व्यास है, मैं जैसलमेर किले के अंदर रहता हूँ, एक पर्यटन व्यवसायी हूँ। आज रेलवे स्टेशन के ऊपर 140 करोड़ रुपए निर्मित से जो एयरपोर्ट की तरह रेलवे स्टेशन बना है, उसके अंदर एक स्टॉल ली गई है और सारे हस्त निर्मित सामान जो जिनका जो आज रेलवे स्टेशन का उद्घाटन करेंगे पर्यटन मंत्री शेखावत जी, उन्होंने एक सामान एक दुकान के अकॉर्डिंग जो है ये सारा हस्त निर्मित सामान हमने यहाँ पे लगवाया।
2: अच्छा चल, बहुत सुंदर सामान आपका यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है। अच्छा ये

0: बताइए व्यास जी कि आपको कैसा फील हो रहा है, मतलब अपना स्टेशन जो इतना सुंदर बन गया है, इतना भव्य इसका पुनर्निर्माण हुआ है, तो आपको क्या लगता है कि जैसलमेर में पर्यटन व्यवसाय को इससे कुछ फायदा होगा, कुछ लाभ होगा?
1: जैसलमेर में पर्यटन को बहुत ज्यादा बढ़ावा होगा। मेडिकल इमरजेंसी के अंदर जो लंबी दूरी की जो ट्रेनें थी, अब यहाँ पे जो मेंटेनेंस का काम स्टार्ट हो रहा है तो काफी ट्रेनें यहाँ पे आएंगी, तो उससे लोगों को राहत महसूस होगी।
0: चलिए, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, बहुत बहुत धन्यवाद। भाई साहब अपना नाम बताएंगे?
2: अच्छा,
0: आप कहाँ के लिए यात्रा कर रहे हैं? अच्छा, आप जैसलमेर पहले भी आ चुके हैं, यही रहते हैं या आते जाते रहते हैं? अच्छा अच्छा, तो आपने जैसलमेर का स्टेशन पहले भी देखा होगा और अभी भी देखा, तो आपको अब कैसा लग रहा है?
2: बहुत बदलाव हो चुका है, अब तो मतलब नदी में जाए जैसलमेर है, बहुत अच्छा बना दिया है, अब तो बहुत तगड़ा लग रहा है जैसलमेर का, मतलब वही बात है जैसलमेर वाली वो येलो पत्ता है, पूरा ऐसे स्टेशन एस्थेटिक बना दिया,
0: एस्थेटिक बना दिया, तो आपको भी गर्व फील हो रहा है कि यहाँ का स्टेशन इतना अच्छा बन गया, और अब उम्मीद करते हैं कि आप यहाँ पे अभी एक दो बार ही आए तो बार बार आना चाहेंगे?
2: बार बार आने का मन करेगा। और ये रेलवे, इंडियन रेलवे बहुत अच्छा काम कर रहा है, तो हमारा जो बन रहा है आपने देखा, स्टेशन में तो बहुत अच्छा हो चुका है, जरूर आएंगे वापस।
0: तो अभी सभी जगहों पर स्टेशन जो अलग अलग हैं उनका रिनोवेशन का काम चल रहा है और पुनर्निर्माण सभी जगह हो रहा है, तो उम्मीद करते हैं कि हमारे भारत का हर रेलवे स्टेशन इतना ही सुंदर हो।
2: बहुत अच्छा लग रहा है, विकास हो रहा है, इसलिए आना सबको फैमिली वाइज आती है, ऐसे स्टेशन देखते क्लीन स्टेशन बहुत सुधार होती है।
0: सही बात है, तो आपको लगता है कि हम नागरिकों की भी कुछ जिम्मेदारी हो जाती है इसको स्वच्छ बनाए रखने में?
2: जरूर, सबसे जरूरी नागरिक ही होते हैं, उन्हें स्वच्छ रखेंगे तभी आगे योगदान होगा, सहयोग देंगे कभी कम चाहिए अपना काम करेंगे, सबको योगदान साथ सबका साथ सबका विकास।
0: बिल्कुल, तो हम आशा करते हैं कि आपका ये जज्बा बरकरार रहे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका रेडियो से बात करने के लिए।
2: धन्यवाद मैडम, बहुत बहुत धन्यवाद।
3: तो प्रार्थना जी, आज मैं देख पा रहा हूँ यहाँ जो यात्री है ना, यहाँ की सुविधाओं को देखकर बड़े खुश नजर आ रहे हैं। और मैं, हम एक देखिए यात्री और भी बैठे हैं, उनसे बात करते हैं। क्या नाम भैया आपका?
4: जयेश कुमार।
3: आप कहाँ से हैं?
4: गुजरात से।
3: गुजरात अहमदाबाद?
4: हाँ, गुजरात अहमदाबाद।
3: अच्छा, आज ये जैसलमेर का जो स्टेशन है ना वापस बनाया गया है, तो आज यहाँ उद्घाटन है और आप एक यात्री हैं, आज के उद्घाटन वाले दिन पहले दिन आप यहाँ से यात्रा करने वाले हैं, अभी कौन सी ट्रेन में जाओगे?
4: साबरमती एक्सप्रेस।
3: कितने बजे?
4: 3:30 बजे की।
3: 3:30 बजे?
4: हाँ।
3: तो आज यहाँ का स्टेशन देखकर आपको कैसा लगा?
4: हाँ, सरकार ने बहुत अच्छा स्टेशन बनाया है और जो भी स्टेशन में सर्विसेज है बहुत अच्छी है, इधर मतलब कि क्लियरिटी, और सबसे बड़ा स्टेशन माना जाता है गुजरात में, तो दूसरा सबसे बड़ा स्टेशन इधर है।
3: ऐसा लग रहा है जैसे हम किसी बड़े महानगर में।
4: हाँ, महानगर में।
3: वाकई में ये बड़ा खूबसूरत है, यात्री भी कह रहे हैं कि हमको ये फील नहीं हो रहा कि हम जैसलमेर जैसी छोटी जगह पर, लग रहा कि हम बड़े स्टेशन।
0: सही, और देखिए मैं देख पा रही हूँ कि महिलाएं भी कितना सुरक्षित फील कर रही हैं, मतलब महिला यात्री जो हैं उनकी सुरक्षा को लेकर भी कोई सवाल नहीं खड़े कर सकते हैं, तो आज बहुत सच्ची बहुत अच्छा लग रहा है।
5: इस अवसर पर जैसलमेर के विधायक श्री छोटू सिंह भाटी ने कहा,
6: केवल जैसलमेर ही नहीं बल्कि पूरे देश के लिए गर्व और गौरव का दिन है, विशेषकर भारत की पश्चिमी सीमा स्थित हमारा जैसलमेर आज केवल देश की सुरक्षा का ही पहरी नहीं है बल्कि एक विकसित भारत की नई विकास की यात्रा का एक सशक्त सहभागी है। आज स्वर्ण नगरी जैसलमेर का रेलवे स्टेशन केवल नया स्वरूप ही नहीं रहा बल्कि यह बदलते हुए भारत को आत्मविश्वास, आधुनिक सोच और विकसित भारत का एक संपर्क का प्रतीक बन रहा है। माननीय सज्जनों, हम सभी को बहुत बड़े सभी सौभाग्यशाली हैं कि आदरणीय यशस्वी प्रधानमंत्री

0: श्री नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों द्वारा अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत देश भर में आज 75 पुनर्विकसित रेलवे स्टेशनों का लोकार्पण किया जा रहा है, जिनमें हमारा विशेष जैसलमेर रेलवे स्टेशन शामिल है। जैसलमेर समस्त जनता की ओर से आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, आदरणीय रेलवे मंत्री अश्विनी जी का और विशेषकर हमारे जैसलमेर को दिलों में रखने वाले आदरणीय गजेंद्र सिंह जी का हम बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं, बहुत बहुत स्वागत करते हैं। साथियों, किसी भी शहर में आने वाले व्यक्ति का पहला परिचय उसका रेलवे स्टेशन होता है और हम सौभाग्यशाली हैं कि कोई भी हमारा एक अंतिम छोर में जिला है और आने वाला चाहे पर्यटक हो चाहे हमारा विशेष मेहमान हो वो पूरब दिशा में जैसलमेर की ओर आता है और पूरब दिशा वो दिशा है जिससे पहला सीधा स्वागत रेलवे स्टेशन से होता है। रेलवे स्टेशन यात्रियों के आने जाने का स्थान नहीं है बल्कि इस शहर की संस्कृति, इस शहर की पहचान और इस शहर का विशेष दर्पण देखा जाता है। माननीय विश्व प्रसिद्ध हमारा सोनार किला, आज थार रेगिस्तान, हमारी समृद्ध लोक संस्कृति और सीमा पे तैनात हमारे वीर जवानों का शौर्य विश्व भर में जाने वाले लाखों पर्यटकों का स्वागत और आधुनिक रेलवे स्टेशन को अधिक से अधिक गरिमा के साथ करेगा। माननीय सज्जनों, आज हमें बहुत बड़ी खुशी है कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने रेलवे स्टेशन को केवल यात्रा का पड़ाव नहीं बल्कि स्थानीय संस्कृति, आधुनिक भारत की पहचान और विकसित करने की जो विजन लिया है, आज जैसलमेर उसका संजीव उदाहरण है। इस स्टेशन का पुनर्विकास केवल एक भवन का निर्माण ही नहीं है बल्कि पर्यटन, व्यापार, रोजगार और स्थानीय अर्थव्यवस्था का को नई गति देने वाला महत्वपूर्ण कदम है।
1: केंद्रीय पर्यटन और संस्कृत मंत्री श्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने अपने उद्बोधन में कहा,
2: इस नव निर्मित भव्य दिव्य विश्व स्तरीय रेलवे स्टेशन के पुनर्विकसित स्वरूप के लोकार्पण के अवसर पर जब आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री और विकसित भारत के शिल्पकार, दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी पंजाब के जलंधर से देश के 75 इसी तरह के नए बने हुए विश्व स्तरीय स्टेशनों का लोकार्पण करने वाले हैं, इस सुदूर रेगिस्तान की धरती पर, देश के पश्चिमी छोर पर, पाकिस्तान के साथ हमारे सटे सीमावर्ती क्षेत्र के जिला मुख्यालय पर, और इन सब से भी विशिष्ट मैं अपने आप को और भी अधिक सौभाग्यशाली इसलिए मानता हूं कि जो जैसलमेर मेरी जन्मभूमि है, जो जैसलमेर जिसमें मुझे लगातार 20 साल तक सीमावर्ती क्षेत्र पर काम करने वाले कार्यकर्ता के नाते काम करने का सौभाग्य मिला, उस जैसलमेर के विश्व स्तरीय स्टेशन का लोकार्पण भी माननीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से होने वाला है। मित्रों, 2014 में जब माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एक सरकार बनी थी तब अनेक तरह की चुनौतियां, अनेक तरह के संकट, अनेक तरह की आशंकाएं देश के सामने खड़ी थी। एक तरफ उस समय पूरा विश्व भयानक

0: एक भरोसे के साथ में एक आस लेकर के एक परिवर्तन के प्रयोग के निमित्त भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद देकर के माननीय नरेंद्र मोदी जी को देश का प्रधानमंत्री बनने का सौभाग्य दिया। जब नरेंद्र मोदी जी ने देश के प्रधानमंत्री पद का पदभार ग्रहण किया, उससे पहले देश भर के सभी लोग और बाहर दुनिया भर में भारत की राजनीति की समीक्षा करने वाले लोग इस बात पर आशंका कर रहे थे, विचार कर रहे थे कि नई चुनी हुई सरकार की प्राथमिकता क्या हो, नई चुनी जाने वाली सरकार किस विषय को प्राथमिकता देकर के काम करेगी। गरीब प्राथमिकता होगा या देश का धनाढ्य धनाढ्य वर्ग प्राथमिकता होगा, गांव को प्राथमिकता मिलेगी या शहरों को प्राथमिकता मिलेगी, मजदूर को प्राथमिकता मिलेगी या मिल मालिकों को प्राथमिकता मिलेगी, देश में विकास के कार्य को प्राथमिकता मिलेगी या देश की अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए सरकार जन कल्याणकारी योजनाओं में कटौती करेगी। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हम देश के चहुंमुखी विकास के लिए गांव, गरीब, मजदूर, पीड़ित, शोषित, वंचित, दलित इन सबको जीवन में प्राथमिकता देते हुए हम आने वाले वर्षों में काम करें। और उन्होंने एक स्पष्ट संदेश उस समय दिया, उन्होंने कहा था कि जनता ने हमें सरकार चलाने का अवसर नहीं दिया, सरकार जनता ने हमें देश में बदलाव करके देश बनाने का, देश बदलने का अवसर दिया। आज जब 12 साल बीत जाने के बाद जैसलमेर के इस नए रेलवे स्टेशन के लोकार्पण के अवसर पर जब मैं खड़ा होकर के आपसे चर्चा कर रहा हूं और मैं पीछे घूम करके 12 साल की इस यात्रा को देखता हूं, तो मैं पाता हूं कि इस 12 साल में देश बदल गया है। ऐसा केवल मैं नहीं, पूरी दुनिया इस बात को स्वीकार कर रही है। एक तरफ ये परिवर्तन की गति को देख करके पूरा विश्व चमकते थे, पूरा विश्व एक आशा और विश्वास की दृष्टि से भारत की तरफ देख रहा है।
1: इस अवसर पर माननीय रेल सूचना एवं प्रसारण इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री भारत सरकार श्री अश्विनी वैष्णव ने कहा,
2: रेलवे को मॉडर्नाइज करने में इन स्टेशन की बड़ी भूमिका रहेगी और आने वाले समय में जिस तरह से माननीय प्रधानमंत्री जी ने रेलवे का आधुनिकीकरण हाथ में लिया है, उससे रेलवे का एक नया स्वरूप सबके सामने आएगा। साथियों, जब तक कांग्रेस की सरकार थी तब आप देखते थे पंजाब में रेलवे का बजट मात्र 225 करोड़ रुपए होता था। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने इसको डबल किया, 3 गुना किया, 4 गुना किया और अब 25 गुना बढ़ाकर 5,500 करोड़ रुपए स्टेशन बजट किया है पंजाब का। आज पंजाब में करीब करीब 30,000 करोड़ रुपए के रेलवे के काम चल रहे हैं। 1,800 करोड़ रुपए की लागत से 30 स्टेशनों का नव निर्माण हो रहा है अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत। अब तक जालंधर कैंट, आनंदपुर साहिब, मुक्तसर और मोहाली स्टेशन का उद्घाटन हो चुका है, कंप्लीट हो चुके हैं। पंजाब में 12 वंदे भारत सर्विसेज चल रही है, 4 अमृत भारत सर्विसेज चल रही है और पंजाब में पूरा 100% इलेक्ट्रिफाई कर दिया है, रेलवे के नेटवर्क को विद्युतीकरण कर दिया है। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर भी लुधियाना से लेके मुंबई में JNPT तक कंप्लीट पंजाब को, हरियाणा को, राजस्थान को, गुजरात को, महाराष्ट्र को जोड़ता है और इस तरफ उत्तर प्रदेश को जोड़ता है। पंजाब में अपार संभावना है साथियों, लुधियाना मैन्युफैक्चरिंग का हब बन सकता है, जालंधर खेल उद्योग का वैश्विक केंद्र बन सकता है, मोहाली टेक्नोलॉजी और स्टार्टअप्स का बड़ा हब बन सकता है। हम माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में पंजाब के हर नागरिक तक अच्छी रेल सुविधाएं पहुंचाने के लिए और आप सबका जीवन आसान बनाने के लिए कमिटेड है। मैं आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, बहुत हार्दिक धन्यवाद करता हूँ। आप सब इस विकास की यात्रा में जुड़िए, मेरे साथ बोलिए।

0: लिए भारत माता की, भारत माता की। और बहुत अभिनंदन।
1: जैसलमेर के साथ देश भर के 75 रेलवे स्टेशनों को वर्चुअल माध्यम से पंजाब के जालंधर कैंट से उद्घाटन करते हुए प्रधानमंत्री जी ने कहा,
2: साथियों, विकास कार्यों को गति देते हुए अब यहां जालंधर से कई नई से रेल सेवाएं शुरू की गई है। आज अमृतसर से काशी के बीच रेल सेवा भी शुरू हुई है। इससे गुरु रविदास जी के भक्तों के लिए पंजाब से काशी जाना और अधिक आसान हो जाएगा। आज दौलतपुर चौक और करतौली के बीच नई लाइन भी शुरू हुई है। करतौली से अंबाला के बीच नई रेल सेवा को भी हरी झंडी दिखाई गई है। साथियों, आज ही लुधियाना बाईपास का शिलान्यास, दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे के एक और सेक्शन का लोकार्पण हुआ है। मैं ऐसे हर प्रोजेक्ट के लिए देशवासियों को और खास तौर पर पंजाब के मेरे भाई बहनों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। आज भारत सरकार कनेक्टिविटी के, इंफ्रास्ट्रक्चर के अनेक ऐसे प्रोजेक्ट पर पंजाब में काम कर रही है। पंजाब में भाजपा सरकार रही है, लेकिन हमारा पंजाब विकसित हो इसके लिए केंद्र की भाजपा एनडीए सरकार कोई कसर बाकी नहीं छोड़ रही है। साथियों, आज मैं विशेष रूप से जालंधर के लोगों की भी सराहना करूंगा, जिन्होंने स्वच्छता से स्वागत पहल के माध्यम से इस कार्यक्रम को और सार्थक बना दिया है। श्री गुरु रविदास जी ने समरसता और सामूहिक प्रयासों का जो संदेश दिया था, उसे आप सभी ने अपने व्यवहार में जीवंत किया है। ये अभियान कर्तव्य भावना का भी उत्तम उदाहरण बन रहा है। साथियों, आज के दिन मैं इस मंच से पंजाब के महान सपूत सरदार तेजासी समुंदरी जी को भी अपनी श्रद्धांजलि देता हूं। आज उनका 100वां शहादत दिवस है। उन्होंने अंग्रेजी शासन काल में सिख हितों की रक्षा के लिए अनेक आंदोलन किए। सरदार तेजासी जी ने अपना पूरा जीवन मातृभूमि की सेवा में समर्पित कर दिया। आज से शुरू हो रहे उनके शहादत वर्ष से जुड़े कार्यक्रमों से हम सभी को प्रेरणा मिलेगी। साथियों, केंद्र की भाजपा सरकार की भी प्राथमिकता है भारत के हर नागरिक की सेवा, भारत के हर नागरिक का जीवन आसान बनाना और उसे आगे बढ़ने के लिए नए नए अवसर उपलब्ध कराना। और इसलिए हम नागरिक देवो भव इस मंत्र पर चल रहे हैं।

0: गरीब हो, मिडिल क्लास हो, ऐसे हर परिवार को बेस्ट से बेस्ट सुविधा मिले, ये हमारा प्रयास है। और नागरिक देवो भव का ये भाव हमारे काम में दिखता है। साथियों, जो भारतीय रेल है, एक गरीब परिवारों की, मिडिल क्लास परिवारों की सवारी है। लेकिन 2014 से पहले तक रेलवे की क्या स्थिति थी, ये आप अच्छे से जानते हैं। कांग्रेस सरकार नई ट्रेनों की झूठी घोषणा करके आराम से बैठ जाती थी। हमारे जो रेलवे स्टेशन है, इनको तो कांग्रेस ने अपने हाल पर छोड़ दिया था। यहां तक कि अंग्रेजों के जमाने में जो स्टेशन बने थे, उनकी सूद लेने वाला भी कोई नहीं था। साथियों, भारतीय रेल का नेटवर्क इतना विशाल है कि रोज उसमें जितने यात्री सफर करते हैं, उतनी तो कई देशों की आबादी भी नहीं है। रेलवे के विकास के जो काम आज हो रहे हैं, ये 30-40 वर्ष पहले हो जाने चाहिए थे, लेकिन पहले की सरकारों की प्राथमिकता में ये काम था ही नहीं। गरीब और मिडिल क्लास को भी सुविधा चाहिए, इनको भी साफ सफाई चाहिए, इनके समय की भी एक वैल्यू है। ये पहले की सरकारें चर्चा तक नहीं करती थी। साथियों, ऐसी सोच से विकसित भारत नहीं बन सकता था। इसलिए बीते वर्षों में भाजपा सरकार ने स्थितियों को बदलना शुरू किया। आज पूरे देश में रेलवे स्टेशनों का कायाकल्प किया जा रहा है।
1: अभी आप सुन रहे थे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा जैसलमेर के पुनर्निर्मित रेलवे स्टेशन का वर्चुअल माध्यम से उद्घाटन समारोह की रेडियो रिपोर्ट। वाचक स्वर श्यामवीर सिंह और प्रार्थना व्यास, प्रस्तुतकर्ता थे रामजी लाल मीणा।
2: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे जैसलमेर रेलवे स्टेशन के प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी का वर्चुअल माध्यम से उद्घाटन समारोह की रेडियो रिपोर्ट। वाचक थे श्यामवीर सिंह और प्रार्थना व्यास, और प्रस्तुतकर्ता थे रामलाल जी मीणा। एफएम बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी जैसलमेर का ये गोल्डन सिटी चैनल है। 8:30 हुए हैं, आइए सुनते हैं सुगम संगीत।

0: प्रधानमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार नागरिक देवोभव की भावना के साथ सभी के जीवन को आसान बनाने और नए अवसरों के लिए प्रतिबद्ध है। श्री मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार पंजाब के विकास के लिए लगातार काम कर रही है।
1: आज भारत सरकार कनेक्टिविटी के, इंफ्रास्ट्रक्चर के अनेक ऐसे प्रोजेक्ट पर पंजाब में काम कर रही है। पंजाब में भाजपा सरकार रही है, लेकिन हमारा पंजाब विकसित हो इसके लिए केंद्र की भाजपा एनडीए सरकार कोई कसर बाकी नहीं छोड़ रही है।
0: प्रधानमंत्री ने आरोप लगाया कि पंजाब सरकार केंद्र सरकार की निधियों का प्रभावी ढंग से उपयोग करने में विफल रही है और केंद्र सरकार की योजनाओं को अपनी बताकर पेश कर रही है।
1: साथियों, केंद्र सरकार अपनी तरफ से हर संभव प्रयास कर रही है कि पंजाब की जनता को केंद्र की हर स्कीम का लाभ मिले, लेकिन कट्टर बेईमान पार्टी की सरकार में यहाँ लूट का खुला खेल चल रहा है। बीते 12 वर्षों में केंद्र से पंजाब को लाखों करोड़ रुपए भेजे गए। इस पैसे से गांव के रास्ते बनते, नहरें बनती, मंडियां बनती, लेकिन पंजाब सरकार ने उस पैसे को सही जगह खर्च नहीं किया।
0: श्री मोदी ने पंजाब के युवाओं से खेलों से जुड़ने की अपील की।
1: मैं पूरे पंजाब के युवा साथियों से कहना चाहता हूँ, ये आपके लिए अवसरों का समय है। खेलो इंडिया स्पोर्ट पॉलिसी आपके लिए लाई गई है। आज भारत में नई स्पोर्ट इकोनॉमी विकसित की जा रही है। इस नई इकोनॉमी के केंद्र में जालंधर का स्पोर्ट्स मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम है। मैं सभी युवाओं से कहूंगा, आप स्पोर्ट्स से जुड़िए, स्पोर्ट्स की दुनिया में अपना परचम लहराइए। हमारी सरकार हर तरह से आपके साथ है।
0: रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि केंद्र सरकार पंजाब में रेलवे की कई बड़ी परियोजनाओं पर काम कर रही है।
2: आज पंजाब में करीब करीब 30,000 करोड़ रुपए के रेलवे के काम चल रहे हैं। 1,800 करोड़ रुपए की लागत से 30 स्टेशनों का नव निर्माण हो रहा है अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत। अब तक जालंधर कैंट, आनंदपुर साहिब, मुक्तसर और मोहाली स्टेशन का उद्घाटन हो चुका है। 12 वंदे भारत सर्विसेज चल रही है, 4 अमृत भारत सर्विसेज चल रही है और पंजाब में पूरा 100% इलेक्ट्रीफाई कर दिया है रेलवे के नेटवर्क को।
0: इससे पहले चंडीगढ़ में श्री मोदी ने स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और सड़क अवसंरचना जैसे प्रमुख क्षेत्रों में लगभग 4,700 करोड़ रुपए की कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री ने 500 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से निर्मित अत्याधुनिक मातृ और शिशु देखभाल केंद्र तथा 440 करोड़ रुपए की लागत से तैयार उन्नत तंत्रिका विज्ञान केंद्र राष्ट्र को समर्पित किया। उन्होंने पीजीआई चंडीगढ़ में पीएम आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन के अंतर्गत 259 बिस्तरों वाले गहन चिकित्सा कक्ष की आधारशिला भी रखी। प्रधानमंत्री ने कहा कि चंडीगढ़ के विकास का लाभ हरियाणा, पंजाब और हिमाचल प्रदेश के लोगों तक भी पहुंच रहा है। प्रधानमंत्री ने चंडीगढ़ को नियोजित शहरी विकास का एक मानक बताया।
1: चंडीगढ़ एक ऐसा शहर है जहाँ एजुकेशन, इंजीनियरिंग, मेडिकल साइंस और रिसर्च से जुड़े बड़े संस्थान एक साथ मौजूद है। बहुत कम शहरों के पास ऐसा सामर्थ्य होता है। आने वाले समय में यही संस्थान नई टेक्नोलॉजी, हेल्थ केयर, स्टार्टअप और इनोवेशन के बड़े केंद्र बन सकते हैं। आज एजुकेशन से जुड़ी कई महत्वपूर्ण परियोजनाएं भी इस यात्रा को नई गति दे रही है।
0: हरियाणा में प्रधानमंत्री ने जींद रेलवे स्टेशन से सोनीपत के बीच चलने वाली भारत की पहली हाइड्रोजन रेलगाड़ी को रवाना किया। श्री मोदी ने हरियाणा में 12,470 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। उन्होंने 157 किलोमीटर लंबा दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे राष्ट्र को समर्पित किया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। सरकार ने संसद के मॉनसून सत्र से पहले रविवार को सर्वदलीय बैठक बुलाई है। इससे पहले आज मंत्रियों के समूह की बैठक नई दिल्ली में हुई। केंद्रीय मंत्री अमित शाह, राजनाथ सिंह, राजीव रंजन सिंह, के राममोहन नायडू और किरेन रिजिजू बैठक में उपस्थित थे। इस दौरान आगामी संसदीय सत्र के लिए रणनीति पर चर्चा हुई। संसद का मॉनसून सत्र 20 जुलाई से शुरू होकर अगले महीने 13 अगस्त तक चलेगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 19 से 25 जुलाई तक मोल्दोवा, उत्तरी मैसेडोनिया और रोमानिया की राजकीय यात्रा पर रहेंगी। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय में सचिव सीबी जॉर्ज ने कहा कि यात्रा मध्य और पूर्वी यूरोप के साथ भारत की बढ़ती भागीदारी को दर्शाती है।
3: ये राजकीय यात्राएं मोल्दोवा गणराज्य, उत्तरी मैसेडोनिया गणराज्य और रोमानिया के राष्ट्रपतियों के निमंत्रण पर की जा रही हैं। तीन देशों की ये यात्रा ऐतिहासिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये किसी भारतीय राष्ट्रपति की मोल्दोवा गणराज्य और उत्तरी मैसेडोनिया गणराज्य की पहली द्विपक्षीय यात्रा होगी। रोमानिया की यात्रा 3 दशकों से भी ज्यादा समय में किसी भारतीय राष्ट्रपति की पहली राजकीय यात्रा होगी।
0: वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लक्ष्य प्रत्येक गांव और हर पात्र नागरिक तक बैंकिंग सेवाएं पहुंचाना है। आंध्र प्रदेश के पलनाडु जिले के नरसाराव पेटा में श्रीमती सीतारामन ने कहा कि प्रधानमंत्री वर्ष 2014 से ही हर गांव तक बैंकिंग सेवाएं पहुंचाने के लक्ष्य के साथ काम कर रहे हैं, ताकि किसानों, कृषि और हथकरघा श्रमिकों तथा अन्य व्यवसाय से जुड़े लोगों को संस्थागत बैंकिंग सुविधाएं मिल सकें। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने आज कहा कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का सफर संगठित स्वैच्छिक कार्यों की शक्ति और निस्वार्थ सेवा के चिरस्थायी मूल्यों का प्रमाण है। नई दिल्ली में श्याम जाजू और अनुपम त्रिवेदी की पुस्तक RSS 800 सेवा एकता और बलिदान की एक शताब्दी का विमोचन करते हुए उपराष्ट्रपति ने कहा कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने निस्वार्थ सेवा और राष्ट्र निर्माण के माध्यम से एकता और राष्ट्रीय चेतना के आदर्शों को मजबूत किया है। इस अवसर पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि RSS ने हर प्रतिकूल परिस्थिति में राष्ट्रीय हितों, सेवा और लोकतंत्र की रक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। स्वास्थ्य राज्य मंत्री प्रताप राव जाधव ने कहा है कि आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना बन गई है। इस योजना के अंतर्गत देश भर में 1,90,000 करोड़ रुपए से अधिक के कैशलेस उपचार की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। पश्चिम बंगाल के कर्ण सुबर्ण रेलवे स्टेशन के पास आज स्कूल वैन और यात्री रेलगाड़ी की टक्कर में 2 स्कूली बच्चों सहित 3 लोगों की मौत हो गई। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने दुर्घटना पर गहरा शोक व्यक्त किया है। उन्होंने मृतकों के परिजनों को 10-10 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। पूर्वी रेलवे ने इस मामले में उच्च स्तरीय जाँच समिति गठित करने का आदेश दिया है। कार्यस्थल पर महिला यौन उत्पीड़न की रोकथाम, निषेध और निवारण अधिनियम 2013 पर राष्ट्रीय महिला आयोग का 2 दिन का राष्ट्रीय जागरूकता कार्यक्रम आज नई दिल्ली में शुरू हुआ। इस अवसर पर महिला और बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कहा कि महिला नेतृत्व वाले विकास के दृष्टिकोण को साकार करने के लिए सुरक्षित, गरिमापूर्ण और समावेशी कार्यस्थल सुनिश्चित करना आवश्यक है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। गुजरात निवेश अनुकूलता सूचकांक 2026 में देश के शीर्ष प्रदर्शन करने वाले राज्य के रूप में उभरा है। इसके बाद महाराष्ट्र, तमिलनाडु, गोवा और ओडिशा भी शीर्ष प्रदर्शन करने वाले राज्यों में शामिल हैं। नीति आयोग ने आज नई दिल्ली में निवेश अनुकूलता सूचकांक 2026 जारी किया। इसमें वर्ष 2047 तक विकसित भारत का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए निवेश आकर्षित करने की दृष्टि से सबसे अच्छी स्थिति वाले राज्यों का उल्लेख है। समुद्री प्रशासन महानिदेशालय ने निर्देश दिया है कि अगले आदेश तक हॉर्मुज जलडमरू मध्य से होकर गुजरने

0: वाले जहाजों पर भारतीय नाविकों की तैनाती न की जाए। इस संबंध में जहाज मालिकों, जहाज प्रबंधकों और भर्ती तथा नियुक्ति सेवा लाइसेंस प्राप्त कंपनियों के लिए नया परामर्श जारी किया गया है। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं निखिल कुमार।
1: घरेलू शेयर बाजार के मुख्य सूचकांकों में आज 1% से अधिक की बढ़त देखी गई। सेंसेक्स 965 अंक ऊपर चढ़कर 78,151 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 262 अंक के उछाल के साथ 24,334 पर पहुंच गया। और अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया आज 1 डॉलर की तुलना में 7 पैसे ऊपर आकर 96.28 रुपए पर बंद हुआ।
0: सरकार ने देश में खेलों के लिए कानूनी और संस्थागत ढांचे को मजबूत करने के उद्देश्य से राष्ट्रीय डोपिंग रोधी अधिनियम 2022 और राष्ट्रीय डोपिंग रोधी संशोधन अधिनियम 2025 को लागू करने की अधिसूचना जारी की है। ये अधिनियम खेलों में डोपिंग को रोकने, खिलाड़ियों के अधिकारों की रक्षा करने और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्वीकृत डोपिंग रोधी मानकों के अनुसार खेल प्रतियोगिताओं की निष्पक्षता बनाए रखने के लिए एक व्यापक वैधानिक आधार प्रदान करता है। वेस्टइंडीज के महान क्रिकेट ऑलराउंडर गैरी सोबार्स का आज निधन हो गया। प्रथम श्रेणी क्रिकेट में उन्होंने एक ओवर में 6 छक्के लगाने का भी कारनामा अपने नाम किया। सर गारफील्ड सोबर्स ने वेस्टइंडीज के लिए 93 टेस्ट मैच में 8,032 रन और 235 विकेट लिए। हॉकी इंडिया ने आगामी महिला हॉकी विश्व कप के लिए 20 सदस्यीय भारतीय टीम की घोषणा कर दी है। सलीमा टेटे टीम की कप्तान होंगी। ये प्रतियोगिता 15 से 30 अगस्त तक बेल्जियम और नीदरलैंड्स की संयुक्त मेजबानी में खेली जाएगी। पीवी सिंधु जापान ओपन बैडमिंटन के सेमीफाइनल में पहुंच गई हैं। सिंधु को जापान की पूर्व विश्व चैंपियन नोजोमी ओकुहारा के क्वार्टर फाइनल से हटने के बाद वॉकओवर मिला। सेमीफाइनल में सिंधु का मुकाबला विश्व की चौथे नंबर की चीन के खिलाड़ी चेन युफई से होगा। मौसम विभाग ने अगले 2 दिन के लिए पश्चिम बंगाल के गंगई क्षेत्र और सिक्किम में मूसलाधार वर्षा की चेतावनी जारी की है। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड में रविवार तक तेज बारिश की संभावना है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरियाणा, पंजाब और चंडीगढ़ से लगभग 25,000 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया। जींद से हाइड्रोजन से चलने वाली भारत की पहली रेलगाड़ी को रवाना किया। प्रधानमंत्री ने कहा, केंद्र सरकार नागरिक देवो भव की भावना के साथ सभी के जीवन को आसान बनाने और नए अवसरों के लिए प्रतिबद्ध। सरकार ने संसद के मॉनसून सत्र से पहले रविवार को सर्वदलीय बैठक बुलाई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू रविवार से मोल्दोवा, उत्तरी मैसेडोनिया और रोमानिया की 3 देशों की यात्रा पर होंगी। वेस्टइंडीज के महान क्रिकेट गैरी सोबर्स का निधन। और FIH महिला हॉकी विश्व कप के लिए सलीमा टेटे के नेतृत्व में भारतीय टीम की घोषणा। इसके साथ ही समाचार संध्या का यंग समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: ये विविध भारती है, देश की सुरीली धड़कन। कार्यक्रम आपके लिए में सभी सुनने वालों को सलमा का प्यार भरा नमस्कार। साथियों, कार्यक्रम का पहला गीत हम लाए हैं आपके लिए कानन देवी की आवाज में। गीतकार हैं पंडित मधुर, संगीतकार हैं कमल दास गुप्ता और फिल्म का नाम है जवाब।

नहीं मरना गवारा प्यार में, तुमसे ये कहना है, तुम्हें भी जिंदा रहना है, मुझे भी जिंदा रहना है।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कुणाल गोडियाल की आवाज में फिल्म आहिस्ता आहिस्ता से होगी। इस गीत के साथ ही हमारा फिल्म संगीत का कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। FM बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी जैसलमेर का ये गोल्डन सिटी चैनल है। 9:30 हुए हैं, आइए सुनते हैं राजस्थानी लोक संगीत।

श्रोता हूँ, अभी आप सुन रहे थे राजस्थानी लोक संगीत FM बैंड 101.8 MHz पर आकाशवाणी जैसलमेर का ये गोल्डन सिटी चैनल है। रात के 10 बजे हैं, आइए सुनते हैं फिल्म संगीत। फिल्म संगीत में हमारी पहली पेशकश है फिल्म बॉर्डर से।

0: हो गया है प्यार क्या करे, बोलो तो जिए बोलो तो मर जाए।
1: हमको तुमसे हो गया है प्यार क्या करे, बोलो तो जिए।

0: छुपाए रखा शोला दबाए रखा,
1: छुपाए रखा शोला दबाए रखा,
0: राज्य हमने अब खोला है, गॉड प्रॉमिस हम सच बोला है, वो हमको तुमसे हो गया है प्यार, क्या करें
1: बोलो तो जिए बोलो, मर जाए हमको तुमसे।

0: अब तक छुपाए रखा, चोला दबाए रखा,
1: अब तक छुपाए रखा, चोला दबाए रखा।
0: हुस्न हमेशा रूठा रहता है, खुदा गवाह हम सच कहता है।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे अमर अकबर एंथनी फिल्म से ये गीत। फिल्म संगीत की अगली पेशकश है फिल्म अंधा कानून से।

बड़ी खुशियां है छोटी छोटी बातों में, बड़ी बड़ी खुशियां है छोटी छोटी बातों में, नन्हे मुन्ने तारे जैसे लंबी रातों में, बड़ी बड़ी खुशियां है छोटी छोटी बातों में।

दीपक संग पतंगा नाचे, दीपक संग पतंगा नाचे, कोई मेरे संग ना। आन मिलो सजना, आन मिलो।

जीने से मैं आ जाऊं तंग ना। अब आन मिलो सजना, आन मिलो सजना।

0: पहले बंद गली थी,
1: पहली भी बरखा थी ऐसी ना भली थी।
0: अरे फूल बनी है अब तू, पहले बंद गली।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाज में ये मदरसा गीत। फिल्म संगीत की अगली पेशकश है फिल्म आम्रपाली से।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे मोहम्मद रफी की आवाज में फिल्म आदमी से ये गीत। फिल्म संगीत की अगली पेशकश है फिल्म अभिलाषा से, जिसे आवाजें दी हैं लता मंगेशकर ने।

श्रोताओं, आप सुन रहे थे अभिलाषा फिल्म से ये गीत, जिसे आवाजें दी थी लता मंगेशकर ने। एफएम बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी जैसलमेर का ये गोल्डन सिटी चैनल है। रात्रि के 11 बजने वाले हैं। अब आप पहले सुनेंगे हिंदी में समाचार और उसके पश्चात अंग्रेजी में, जिसे हम आकाशवाणी दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। कृपया प्रतीक्षा करें।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मोहम्मद जुबैर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरियाणा, पंजाब और चंडीगढ़ में लगभग 25,000 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया। श्री मोदी ने जलंधर में 5,470 करोड़ रुपए से अधिक लागत की विभिन्न रेल और सड़क अवसंरचना परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। श्री मोदी ने अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत जलंधर कैंट सहित 75 पुनर्विकसित रेलवे स्टेशनों का शुभारंभ किया। उन्होंने 20 राज्यों में स्थित पुनर्विकसित रेलवे स्टेशनों का वर्चुअल रूप से लोकार्पण भी किया। इनमें SAS नगर मोहाली रेलवे स्टेशन, श्री मुक्तसर साहिब रेलवे स्टेशन और श्री आनंदपुर साहिब रेलवे स्टेशन शामिल हैं। श्री मोदी ने संत रविदास एक्सप्रेस रेलगाड़ी को रवाना किया। ये अमृतसर और वाराणसी को जोड़ने वाली पहली सीधी रेल सेवा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार नागरिक देवो भव की भावना के साथ सभी के जीवन को आसान बनाने और नए अवसरों के लिए प्रतिबद्ध है। श्री मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार पंजाब के विकास के लिए लगातार काम कर रही है।
1: आज भारत सरकार कनेक्टिविटी के, इंफ्रास्ट्रक्चर के अनेक ऐसे प्रोजेक्ट पर पंजाब में काम कर रही है। पंजाब में भाजपा सरकार रही है, लेकिन हमारा पंजाब विकसित हो इसके लिए केंद्र की भाजपा NDA सरकार कोई कसर बाकी नहीं छोड़ रही है।
0: प्रधानमंत्री ने आरोप लगाया कि पंजाब सरकार केंद्र सरकार की निधियों का प्रभावी ढंग से उपयोग करने में नाकाम रही है और केंद्र सरकार की योजनाओं को अपनी बताकर पेश कर रही है। श्री मोदी ने पंजाब के युवाओं से खेलों से जुड़ने की अपील की।
1: मैं पूरे पंजाब के युवा साथियों से कहना चाहता हूँ, ये आपके लिए अवसरों का समय है। खेलो इंडिया स्पोर्ट्स पॉलिसी आपके लिए लाई गई है। आज भारत में नई स्पोर्ट्स इकोनॉमी विकसित की जा रही है। इस नई इकोनॉमी के केंद्र में जालंधर का स्पोर्ट्स मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम है। मैं सभी युवाओं से कहूंगा, आप स्पोर्ट्स से जुड़िए, स्पोर्ट्स की दुनिया में अपना परचम लहराइए। हमारी सरकार हर तरह से आपके साथ है।
0: इससे पहले चंडीगढ़ में श्री मोदी ने स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और सड़क अवसंरचना जैसे प्रमुख क्षेत्रों में लगभग 4,700 करोड़ रुपए की कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री ने 500 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से निर्मित अत्याधुनिक मातृ और शिशु देखभाल केंद्र तथा 440 करोड़ रुपए की लागत से तैयार उन्नत तंत्रिका विज्ञान केंद्र राष्ट्र को समर्पित किया। उन्होंने PGI चंडीगढ़ में PM आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन के अंतर्गत 259 बिस्तरों वाले गहन चिकित्सा कक्ष की आधारशिला भी रखी। हरियाणा में प्रधानमंत्री ने जींद रेलवे स्टेशन से सोनीपत के बीच चलने वाली भारत की पहली हाइड्रोजन रेलगाड़ी को रवाना किया। श्री मोदी ने हरियाणा में 12,470 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। उन्होंने 157 किलोमीटर लंबा दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे राष्ट्र को समर्पित किया। सरकार ने संसद के मॉनसून सत्र से पहले रविवार को सर्वदलीय बैठक बुलाई है। संसद का मॉनसून सत्र 20 जुलाई से शुरू होकर अगले महीने 13 अगस्त तक चलेगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 19 से 25 जुलाई तक 3 देशों मोल्दोवा, उत्तरी मैसेडोनिया और रोमानिया की राजकीय यात्रा पर रहेंगी। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय में सचिव CB जॉर्ज ने कहा कि ये यात्रा मध्य और पूर्वी यूरोप के साथ भारत की बढ़ती भागीदारी को दर्शाती है। गुजरात निवेश अनुकूलता सूचकांक 2026 में देश के शीर्ष प्रदर्शन करने वाले राज्य के रूप में उभरा है। नीति आयोग ने आज नई दिल्ली में निवेश अनुकूलता सूचकांक 2026 जारी किया। हॉकी इंडिया ने आगामी महिला हॉकी विश्व कप के लिए 20 सदस्यीय भारतीय टीम की घोषणा कर दी है। सलीमा टेटे टीम की कप्तान होंगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।